सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए करें योग रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप

सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को यानी कि 2 और 2 4 दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे
खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है
तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें आंख में दिक्कत है तो हम आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से हर समय और अपनी सुविधा अनुसार जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से वसंत ऋतु, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें, ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का
गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका, जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर, वक्रसुंड, सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना। इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती, प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखार बिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना। तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी, यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है, बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है, यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीज़ों को स्वस्थ रखती हैं। माँ शारदे, सरस्वती महाभागे, विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है, और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: Thank you.

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रास्ता मिले। हाय क्या बात है, रास्ता मिलेगा और चलेंगे ऐसे रास्ते पे जहां फासले कम होंगे, सुकून ज्यादा होगा और जिंदगी का मजा होगा। वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का वेलकम करते हैं संडे स्पेशल शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। यस, दिन संडे का है, मूड मस्ती वाला है, रिलैक्स्ड वाला है और सॉन्ग्स भाई साहब वाइब दे रहे हैं संडे की। सो चलिए इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद आते हैं और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है जो संडे स्पेशल है और आपके डे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है आज के इस थॉट में, ये हम जानेंगे इस सॉन्ग के उस पार।

0: हाँ जी, सो आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई साहब, आज देखते ही देखते 14th ऑफ जून हो गया है, यानी 14 जून, आधा महीना बीतने को है। और अगर अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कि फील ना आए कि यार ये आधे महीने की छुट्टी का हुआ क्या, तो मज़ा नहीं आने वाला। या तो फुल टू मज़ा होने वाला है, या तो भाई उसमें हम कुछ ऐसा लेकर जाएं जाते हुए महीने से कि हमने कुछ एक्स्ट्रा जो टाइम हमारे पास बचा था उससे हमने कुछ बेहतर किया है, या कुछ ऐसा जो कहीं घूम के या कुछ करके होने वाला है। सो कुछ भी ऐसा, बट ये जाता हुआ मंथ जो है वो यूं ही ना जाए, कुछ दे के जाए, ऐसी हमारी कोशिश होने वाली है। सो फिलहाल आपको बताने वाले हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है, क्योंकि आज का जो थॉट है वो संडे स्पेशल थॉट है और संडे स्पेशल थॉट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो बताने वाले आपको आज का थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है। दरअसल संडे स्पेशल थॉट कह रहा है कि अगर रास्ते में चट्टाने ना होती तो पानी की आवाज इतनी मधुर ना होती। अगर रास्ते में चट्टाने ना होती तो पानी की आवाज इतनी मधुर ना होती। अगर आपकी लाइफ बहुत सिंपली चली होती तो आपकी लाइफ में ना एक्साइटमेंट दिखता, ना आपकी वो खुशी दिखती और ना वो गम दिखता। और ये सब जिंदगी के रंग हैं, और ये रंग तभी नजर आते हैं जब रास्तों में परेशानियां होती हैं, जब रास्तों में हर्डल्स होती है। सो जो ये सिचुएशंस आती हैं, इनको टैकल करते हुए जो हमारा सेंस डेवलप होता है, जिस तरह से हम किसी भी चीज़ से जूझते हुए, आप हमेशा गौर करेंगे कि जब लगता है कि रास्ता नहीं है और वो सिचुएशन आन पड़ती है, तो उसके बाद कुछ ऐसा रास्ता निकलता है जो आज तक हमने किया ही नहीं था। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी तक जो हमारा तरीका था वो एक अलग तरह से था, और परेशानी या सिचुएशन उस तरह से तो आएगी ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। सो वो दूसरी तरह से आई, तो जब परेशानी और सिचुएशन बदली तो हमको उससे टैकल करना ही था, हमको उससे आगे निकलना ही था। तो हमने भी कुछ ऐसा रास्ता चुना जिससे कि उससे हम बाहर आ सकें। तो हमको इसी तरह ज़िंदगी का कुछ नया हिस्सा मिला, यानी नई चीज़ ट्राई की, नई कोशिशें की, तो हमको लगा अच्छा लाइफ में ये भी हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा सुकून, मतलब आप अगर सुकून तो होना ही चाहिए हमेशा, मन का सुकून, लेकिन अगर हम आराम पसंद हो जाएंगे, हम करना नहीं चाहेंगे, तो फिर शायद लाइफ का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा। हमें मिल तो जाएगा, हम बैठे रह सकते हैं, हम लेटे रह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं करते रह सकते, लेकिन हमारी चीज़ें जो है हमको मिल नहीं पाएंगी। कहते ना, जितना ज़्यादा आप इधर उधर जाते हो उतना ज़्यादा फिर आप जान पाते हो। जितनी नई जगहों पे विज़िट करते हो, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का खाना, वहाँ पे क्या फेमस है, कौन सी शॉप्स है, मार्केट कैसी है, लोग कैसे हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं उनके, ये सब कुछ हमको पता चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ विज़िट करते हैं, हम जाते हैं। जितनी नई जगह जाते हैं, जितने नए लोगों से मिलते हैं, उतना नयापन हमारे अंदर भी रहता है। और जब यही हम बिल्कुल छोड़ के बैठ जाए कि यार लाइफ में बस कुछ करना ना पड़े, बस यूं ही चले, तो इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी एक वक्त को, हमें शायद ये फील होने लग जाएगा कि यार लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ना कभी फील हो कि लाइफ में कुछ है नहीं, लाइफ में हमेशा बहुत कुछ रहता है, बस ज़रूरत होती है कि हम उन चीज़ों के नएपन को महसूस कर सकें। राइट, सो यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। आई होप कि आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आज का वैसे भी ये संडे स्पेशल थॉट है। और अब आप आंखें खोल रहे हैं, उठ रहे हैं और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा से। और चलिए फटाफट से आप उठ जाइए, क्योंकि 9:20 हो चुके हैं आपके 89.6 FM के स्टूडियो में, और वैसे भी 10 से 11 स्पेशल कॉल इन प्रोग्राम होने वाला है। उससे पहले फटाफट से तैयार हो जाइए, कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि आज संडे है। सो अगर हेल्दी वेल्दी करेंगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है। सो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं एक हेल्दी वेल्दी सॉन्ग की तरफ, जो कि सुनने के बाद आप कहने वाले क्या बात है, अगर इतना सादा सा और इतना अच्छा सा सॉन्ग मॉर्निंग में मिल जाए तो पूरा मॉर्निंग मूड ही चेंज हो जाता है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: वाह क्या बात है भाई, और थॉट पे जिस तरह का रिएक्शन आया है मैं बिल्कुल लेने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चूंकि इसको फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करते हैं ज्ञानस्थली फैमिली में। सो आइए, फिलहाल वक्त हो गया है आपके भेजे गए कुछ मैसेजेस जो लोग सुनते हैं हमको 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, उसी पर चैट का ऑप्शन मिलता है और उसी चैट में आए हुए हैं कुछ मैसेजेस डायरेक्ट लाइव शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास। सो फट से देखते हैं क्या है मैसेजेस में, आपने क्या क्या पैगाम छिपा रखे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लफ्जों के पीछे फीलिंग्स होती है जनाब।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: हाँ जी, तो सबसे पहले जो मैसेज आया है वो दीपांशी तिवारी का आया है। लिखा है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में दीपांशी। एंड सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। हरखापुर गोंडा से सुन रही हैं सविता दुबे जी। अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और साथ ही साथ आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग टू यू, और मैं बड़ा ही मस्त हूँ, चंगा हूँ जी। संडे का दिन, चाहे आप कहीं पे भी रहो, कोई भी काम करते रहो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहो, लेकिन न जाने क्यों जो वाइब आती है संडे वाली, बड़ा ही रिलैक्सिंग होती, मतलब बहुत सुकून देती है। एंड सविता दुबे जी ने कहा कि आज का सुविचार बहुत ही प्यारा लगा, मेरे जीवन से मेल खाता है सर, थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों ने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव और हर्डल्स देखे हैं, उनको उनकी लाइफ के बारे में पता है। अच्छा, ऐसे लोगों को ये भी पता है कि उन्होंने जो चीज़ें महसूस किया है, या आप कुछ भी मिलने पर जिस तरह वो खुश होते हैं, वो बहुत सिंपल सी लाइफ में शायद ना कर पाते, मतलब बहुत सीधी चल रही लाइफ में नहीं कर पाते। लाइफ को क्रिटिकल तो खैर हम खुद ही बना लेते हैं इतना ज़्यादा सोच सोच करके, और जितना सिंप्लिसिटी के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम रहते हैं, उतनी ही बेहतर हमारी लाइफ होती चली जाती है। क्योंकि लाइफ जो है वो किसी और के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के लिए होती है। और इस बात को हम कहते तो हैं, लेकिन शायद हम महसूस करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। और मुझे लगता है आज संडे का दिन वही है कि इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा महसूस किया जाए कि लाइफ होती तो है सभी के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए होती है। और जब आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर आप सभी के लिए अच्छे हो ही जाते हैं।
1: हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी।
0: क्या बात है, संडे मूड है, मॉर्निंग वाला शो है, मॉर्निंग जॉक अर्जुन साथ है, और गाने का पारा चढ़ चुका है।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो क्यों ना आपको एक ऐसी स्टोरी बताए जिसमें एक कटहल के लिए देने पड़े 90,750 रुपए। अब भाई लोग मजाक में तो यही यहाँ कहते हैं, क्या बनाए कटहल, मतलब मजाक मजाक में कि इसका क्या ही कटहल करोगे, ये कटहल ही बना है। लेकिन ये कटहल भाई अगर इतनी बड़ी रकम दी जाए जिसमें 90,750 रुपए हैं, तो उस कटहल को क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप ये सोच रहे हैं अल्फांसो जैसा कोई महंगा आम की ये फसल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, लेकिन है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर वो कहानी क्या है जो इस कटहल के दाम को 90,750 रुपए तक पहुंचा दिया। Let's go.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई केरल के किसान हैं, उनका नाम है अब्दुल अजीज, और अगस्त 2025 का ये केस है, यानी ये जस्ट एक साल पहले का है। अगस्त 2025 में दरअसल एक बहुत ही दुर्लभ हाइब्रिड कटहल का पौधा खरीदने इंडोनेशिया ये गए थे, यानी वो जो पौधा होता है कटहल का वो इंडोनेशिया में होता है। अब मैदान से कुआलालंपुर की जो एयर एशिया की फ्लाइट है उसको दरअसल पहुंचने में देरी हो गई, अब जिससे इनकी कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट जो है वो छूट गई, अगली फ्लाइट जो है वो 3 दिन बाद मिली जा करके। सो किसान के हिसाब से वक्त पर वैकल्पिक उड़ान नहीं मिलने से भारत लौटने में देरी हुई, और दुर्लभ हाइब्रिड कटहल का पौधा जो है जाहिर सी बात है कि इतने वक्त में ख़राब हो गया। फिर क्या था, फिर भाई पलक्कड़ ज़िला उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस की सेवा में कमी मानते हुए क्या क्या किया 30,750 रुपये टिकट का किराया वापसी कराई, इसके अलावा 25,000 अतिरिक्त यात्रा और ठहरने का खर्च भी दिलाया, इसके अलावा 25,000 रुपये सेवा में कमी के लिए मुआवजा दिलाया, और 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च भी दिलाया, यानी कुल 90,750 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। फोरम ने कहा कि एयरलाइन की लापरवाही से किसान को आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा दोनों झेलनी पड़ी। सो भाई, इस तरह का केस क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है, आपने कभी सुना है ऐसे केसेस के बारे में जहां पे इतनी लड़ाइयों के बाद इंसान को जो है वो ऐसा फैसला सुनने को मिला है? हालांकि बात वो सिर्फ एक छोटे से कटहल की लग तो रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हो गई थी। भाई कोई किसान आदमी है जो वक्त निकाल करके पूंजी जोड़ करके गया हो विदेश से एक दुर्लभ पौधे की बीज लाने के लिए, पौधा लाने के लिए, उसके बाद लापरवाही हो, जिस भी आप कन्विंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एयरलाइन से आ रहे हो या कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी देरी की वजह से आपकी अगर चीज़ें ख़राब होती है तो जाहिर सी बात है भाई कि आप पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। और इसी को देखते हुए फोरम ने एयरलाइन की लापरवाही से किसान को जो नुकसान हुआ था उसको दिलाया, यानी टोटल 90,750 रुपये मुआवजा मिले एक कटहल के पौधे की वजह से। सो कई बार ऐसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लाइफ में भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें बहुत ही छोटी सी नज़र तो आ जाती हैं लेकिन उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। सो कुछ भी जो आज हम देखते हैं उसके पीछे की एक कहानी अपनी होती है, जो उसकी एक पूरी यात्रा का वृतांत होती है, एक पूरी उसकी यात्रा बता रही होती है, जैसे आज हमने इस छोटे से कटहल के पीछे 90,750 वाली कहानी को जाना। अगर आपके पास भी, आपके पहचान में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आज

कॉल इन प्रोग्राम भी करेंगे, सो आप कॉल इन प्रोग्राम में भी बता सकते हैं। बट अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ, जो कि संडे वाला स्पेशल सॉन्ग है।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड।

0: कोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

किचन में संडे स्पेशल जो पराठे बनते हैं या फिर जो चाय उबलती है उसकी खुशबू तो लाजवाब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष की महक कैसी है? सोचा है कभी अगर कोई स्पेस या अंतरिक्ष में जाता है तो वहां कैसी महक आती है? यहां तो आपको बहुत तरह की महक मिलती है। सो अगर नहीं पता तो चलिए इस गाने को सुनिए, वापस जाइए, हम बताते हैं कि आपको आखिर अंतरिक्ष में कैसी महक मिलती है। स्टे ट्यून्ड।

0: आधा तो है इश्क, लेकिन हम जो जवाब देंगे वो दरअसल आधा नहीं देंगे, पूरा देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। सवाल ये था कि भाई किचन में संडे स्पेशल जब पराठे की खुशबू आती है या जब चाय छानी जाती है तो उसकी खुशबू तो लाजवाब होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में महक कैसी आती है? यानी आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में कोई जाता है तो आखिर वहाँ पर कैसी महक आने वाली है? अगर नहीं सोचा तो चलिए हम बताते हैं वहाँ की महक कैसी होती है, या यूं कहे कि सीधे अंतरिक्ष में ही ले चलते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, चलिए हम ले चलते हैं आपको। सो आपने इससे पहले शायद कभी सोचा हो, जहन में ये ख्याल आया हो कि यार अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में कैसी महक आती होगी। बच्चे होते हैं, बच्चे तो ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, और हमारे अंदर भी तो एक बच्चा है ही है यार। अगर ये सवाल नहीं भी आया होगा तो आज सुनने के बाद आप कहेंगे हाँ यार, ये बात तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। चलिए, सो स्पेस में जो अभी तक एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं, एस्ट्रोनॉट्स मतलब वो लोग जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं, जो जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स, उनके मुताबिक अंतरिक्ष की अपनी एक अलग खुशबू होती है। वाह क्या बात है, धरती की नहीं होती है, अंतरिक्ष की होती है, ये अलग ही चल रहा है। खैर, वहाँ से लौटने पर उनके सूट और जो टूल्स थे वो जले हुए स्टेक और गर्म मेटल जो है यानी पिघला हुआ लोहा, जैसे पिघले हुए लोहे की आती है, और वेल्डिंग का जो धुआं होता है वैसी महक पाई गई। यानी जो अंतरिक्ष यात्री धरती पर जब आए तो उनके जो टूल्स थे, उनका जो सामान था उसमें से, या उनका जो सूट था, जो सूट को पहन के जाते हैं, ऐसे लगा कि पिघला हुआ लोहा, उसकी खुशबू या वेल्डिंग का जो धुआं निकलता है उस तरह की स्मेल पाई गई। और तभी ये बताया गया कि अंतरिक्ष की अपनी एक अलग ही स्मेल होती है। अब आपको समझ में आया कि धरती पे इस तरह की स्मेल क्यों नहीं? देखिए, धरती पर हमको कितनी अच्छी तरह की स्मेल्स मिलती हैं। अगर हम खेतों की तरफ जाते हैं तो एक अलग स्मेल, मिट्टी की तरफ जाओ तो अलग स्मेल, और फूलों की तरफ जाओ तो अलग स्मेल, जंगल की तरफ जाओ तो उसकी एक अलग स्मेल, और खुले की तरफ जाओ तो उसकी अपना एक अलग स्मेल, और कोई परफ्यूम बढ़िया से लगाया तो उसकी अपनी एक अलग स्मेल। सो स्मेल्स तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस मामले में तो भाई धरती बहुत खुश नसीब है कि बड़ी ही अच्छी अच्छी स्मेल्स हैं और कई तरह की स्मेल्स हैं। सो अभी तक शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई अंतरिक्ष पे अगर कभी आप, चूँकि हमेशा से सोचते थे ना कि हम भी एक दिन जाएंगे, जाइएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि फिर जो स्मेल मिलने वाली है वो पिघले हुए लोहे की तरह मिलने वाली है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपना फेवरेट परफ्यूम लेकर जाएंगे तो फिर शायद कुछ अलग हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको आज की ये बात जान करके कैसा लगा? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपने भी इस बारे में कभी सोचा नहीं था। आपके लिए भी ये नई बात है कि हाँ यार, अगर ये ऐसा है तो फर्स्ट टाइम आपने जाना है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे भी नहीं, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था कि हाँ अंतरिक्ष में सच में इतना ज़्यादा लफड़ा है, मतलब स्मेल को लेकर के, कि और तो कुछ नहीं मिला, पिघला हुआ लोहा ही मिल रहा है। अब ऊपर लोहा कौन पिघला रहा है ये तो खैर जा करके ही पता करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप इस बात को सुन लेने के बाद क्या सोच रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस म्यूजिकल ब्रेक के जस्ट उस पार वापस से आएंगे तो आपका कॉल इन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, गायगा गुंडा विद आरजे अदनान। सो आज का सवाल जो है वो भी ज़रा सुन लीजिए कि आज का सवाल क्या है। आज का जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या है। सो सवाल ये कि अगर आज आपको मोबाइल और टीवी छीन करके 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो आप कौन सा खेल दोबारा खेलना चाहेंगे? जी हाँ, सो ये अगर आपके लिए सवाल है कि अगर आज आपसे मोबाइल और टीवी छीन करके 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया जाए, घर के बाहर, तो आप कौन सा खेल दोबारा से खेलना चाहेंगे? बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है सवाल है। अब देखते हैं भाई आप क्या, गिल्ली डंडा, गोली, या फिर इक्कल दुक्कल, या टायर चलाना, या फिर पोर्चुलिस। यस ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप बहुत एक्साइटेड है बताने के लिए। तो फटाफट से आप कॉल करके बताइएगा जस्ट इस सॉन्ग के उस पार।

0: हाँ जी, सो फिलहाल जी लिया है भाई, जिया जिया। और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक जी अदनान। सो फिलहाल अब आइए देखिए भाई, जस्ट एक कॉल आई है और किसकी कॉल है इसकी तरफ हम चलते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा ही अच्छा था कि अगर आपसे 2 घंटे के लिए टीवी और मोबाइल छीन लिया जाए और आपको बाहर कर दिया जाए घर के, तो आखिर कौन सा गेम आप खेलना चाहेंगे। वैसे एक बात और है जो मुझे याद आ रही है इस सवाल से, वो सवाल ये है कि भाई आप अपने घर में बच्चों के लिए ऐसी कौन सी जादुई ट्रिक अपनाते हैं जिससे कि बच्चे आपके मोबाइल से दूर रहते हैं। तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं पहले वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अपने कॉलर की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

0: हाँ जी, तो चलिए अपने पहले कॉलर से बात करते, देखते हैं कौन है कॉल पे। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, मैं सविता दुबे बोल रही हूँ।
0: सविता दुबे जी, कैसी हैं आप? स्वागत करते हैं आपका मॉर्निंग शो में।
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे सर?
0: बढ़िया बढ़िया। आप तो आपके घर में हम ताला लगाने वाले हैं 2 घंटे के लिए, आपको बाहर करने वाले। आप बताइए कौन सा गेम खेलने वाली हैं?
1: लगा दीजिए, मैं तो खेलूंगी गोटी। वो जो गोटी आता ना, जो घर बनता है जिसे गिट्टी बोला जाता है, वो लेके 5 गोटी लेके खेलूंगी।
0: वो जो गुट्टक बोलते थे पहले, जो ऐसे हाथ में उछालते थे,
1: वही खेलूंगी अकेले।
0: अच्छा,
1: अकेले खेलना है ना?
0: हाँ,
1: तो वही खेलूंगी।
0: अच्छा, बाकियों के साथ अगर खेलने का मौका मिले तो?
1: बाकियों के साथ खेलने का मौका मिला तो रुमाल चोरी जो बोलते हैं ना, चोर, वो खेलूंगी। नहीं तो छुपन छुपाई खेलूंगी, नहीं तो इक्का दुक्का खेलूंगी,
0: इक्कल दुक्कल और छुपन छुपाई तो समझ में आया। ये रुमाल चोरी क्या है?
1: जैसे कि गोल होके बैठते हैं ना सब कोई, और एक के हाथ में रहता है रुमाल, वो जो पीछे पीछे घूमते रहता है।
0: अच्छा, हाँ हाँ,
1: तो कोई किसी के पीछे, एक जन को पीछे रख दिया जाता, वो अगर उठ के रुमाल नहीं लगा तो फिर उसको चोर घोषित किया जाता है कि तू, तेरे को खेल से बात किया जाता है।
0: ये जो आप रुमाल बता रहे हो, दरअसल हम लोग अपने बचपन में जब ये खेलते थे तो तौलिए से खेलते थे।
1: तौलिए से नहीं, हम लोग रुमाल चोरी करते
0: थे। नहीं, क्योंकि हम
1: नाम है रुमाल चोरी।
0: तौलिए का इस्तेमाल अच्छे से करते थे, सिर्फ पीछे रखने का नहीं होता था बल्कि पीछे मारने का भी होता था।
1: अच्छा।
0: पीठ पे पता नहीं क्या, मुझे बहुत अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन कुछ पीठ पे मारते थे, उसके बाद कुछ एक ऐसी गाना जैसा गाते थे, मतलब अलग ही प्रकार के खेल हुआ करते थे। सो फिलहाल आपने कहा गुट्टक खेलेंगे। गुट्टक मैंने देखा बहुत है कई सारी लड़कियों को खेलते हुए, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि ये खेला कैसे जाते, इसमें होता क्या है, जरा आप बताइए मुझे।
1: 5 गोटी रहता है।
0: 5 गोटी
1: में पहले एक एक करके एक गोटी को उछालता है, तब एक गोटी को उठा देता है पहले राउंड में।
0: अच्छा।
1: फिर दूसरी पड़ाव में 2 गोटी, फिर तीसरी पड़ाव में 3 ऐसे करके पॉइंट होता है कि एक पॉइंट पे हमने पूरा को कर लिया है, ऐसे करके खेला जाता है।
0: तो ये लगातार करते रहना पड़ता है क्या जल्दी जल्दी?
1: आज कभी कभी तो गिर भी जाता है, 3 आता नहीं हाथ में, कभी 4 आता नहीं, कभी 2 में से गिर जाता है। फिर उंगली के हथेली पे 5 गोटी रख के एक को उसको भी उछाल के अपने मुट्ठी में भरना पड़ता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: हाँ,
0: वाह क्या बात है, गिट्टी वाला खेल जिसको लंगड़ी बोलते हैं, कहते हैं घर बसाएंगे। धर्मेंद्र जी बता रहे हैं।
1: अच्छा, क्या पता पता नहीं इधर क्या बोलता है, हम लोग तो उधर तो बोलते थे गोटी।
0: हाँ, वैसे एक गोटिया कल्टी मार, एक मूवी में भी सुना है। बहुत बढ़िया बताया आपने कि अगर आपको अकेले खेलने को मिले तो आप गोटिया वाला खेलेंगे, और अगर सबके संग करने को तो वो रुमाल चोर और छिपन छिपाई है ना, और इक्कल दुक्कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ये गेम्स अगर आप खेलेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो कब खेल रहे हैं इसको आप?
1: खुश भी रहेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, दिमाग का भी, पूरा बॉडी का भी एक्सरसाइज भी हो जाएगा ना ये सब खेल में।
0: और क्या, तो कब खेल रहे हैं?
1: अरे मैं तो कभी अब तक नहीं खेलूंगी, पर अब खेलूंगी कभी कभी, टाइम मेरे पास कुछ नहीं रहेगा करने को, वैसे रेडियो चला लूंगी, खेला करूंगी, गाना भी सुनूंगी, खेलूंगी।
0: ये हुई ना बात कि रेडियो भी चल रहा है और खेल भी रहे हैं आप, दोनों चीज चल रहा है। वाह, चलिए हम इधर से टीम भेज रहे हैं आपके पास आ रही, ठीक है?
1: टीम ना भेजने से भी अकेले भी खेल सकूंगी, खुश रहूंगी।
0: वाह क्या बात है,
1: रेडियो का चलेगा ना, रेडियो पे गाना चलेगा।
0: बिल्कुल सही बात है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करके हमको बताया कि आप आखिर कौन से गेम खेलेंगे अगर आपको 2 घंटे के लिए मोबाइल और टीवी छोड़ करके बाहर कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: सभी को नमस्ते।
0: आपको भी शुक्रिया और आपको भी नमस्ते। तो ये थी भाई हमारे साथ में हमारी सविता दुबे जी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से भाई ये गेम खेलने वाली हैं अगर उनको 2 घंटे के लिए बाहर कर दिया जाए। तो फिर वो आखिर कौन से गेम्स खेलेंगे। इसी कड़ी में हम चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं अगली कॉल किसकी है। हाँ जी हेलो।
2: सूरज की किरणें पैगाम लेकर आई हैं, सूरज की किरणें पैगाम लेकर आई हैं, फूलों ने भी साहब आपको सलाम किया है।
0: अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। किसने किया है, कौन वाले सूरज ने, उसका जो नाम भी तो लेना पड़ेगा।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, किस वाले सूरज ने किया है भाई, ये तो बताइए पहले।
2: जी सर।
0: चलिए खैर उसको छोड़ देते हैं, ये बताइए कि सवाल सुना ना आपने।
2: हाँ, सवाल तो सुना।
0: सवाल क्या है पहले तो हमको ये बताइए।
2: 2 घंटे के लिए अगर घर से बाहर कर दिया जाए और रेडियो टीवी फोन सब कुछ छीन लिया जाए, मतलब आपने नहीं कहा रेडियो, रेडियो तो हमने जोड़ दिया है।
0: नहीं, रेडियो क्यों जोड़ दिया, क्यों रेडियो छोड़ देंगे आप। रेडियो तो भैया डिस्टर्ब नहीं करता, आप सारा काम कर लो, रेडियो सुनते रहो, रेडियो के बीच में
2: डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आपने मोबाइल टीवी की बात की थी तो हम तो रेडियो की लती है।
0: हाँ तो लती तो है, तो इससे दिक्कत नहीं होती। देखिए अब मोबाइल क्या लेके इंसान बैठा हुआ है, टीवी भी वहां से हट नहीं सकता अगर देख रहा है, लेकिन रेडियो में तो आदमी अपना काम कर रहा, मस्ती कर रहा और सुन रहा है, रेडियो के बीच में क्यों ले आए। यही तो खासियत है रेडियो की, रेडियो डिस्टर्ब नहीं करता है, रेडियो सिर्फ वैल्यू ऐड करता है। ऑफ कोर्स
2: डिस्टर्ब तो रेडियो नहीं करता है, लेकिन जब कुछ काम करते रहे तो थोड़ी बहुत बात करो तो नहीं डिस्टर्ब करता। अगर हम गेम खेल रहे तो हमारा ध्यान उस पर रेडियो पे जाएगा ही नहीं, तो हमारी बैटरी क्यों जाए।
0: चलिए तो फिर फिलहाल रेडियो घर वालों के लिए रख दीजिए घर में, ठीक है, घर वाले सुन रहे हैं। अब आपको बाहर कर दिया गया, अब आप क्या खेल रहे हैं।
2: मैं ना क्रिकेट खेलूंगी।
0: क्रिकेट खेलेंगे।
2: हाँ
0: अच्छा, क्रिकेट ही क्यों।
2: क्रिकेट मुझको क्रिकेट बहुत पसंद है।
0: क्रिकेट में आपको बॉलिंग करना बहुत पसंद है या बैटिंग करना बहुत पसंद है या कीपिंग पिच में या फील्डिंग करना पसंद है क्या, या अंपायरिंग।
2: मैं ना, हाँ मैं तो ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग सब कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और अंपायरिंग भी कर लेते हैं कि चीटिंग करते हैं।
2: अंपायरिंग भी कर लेती हूँ पर करने का मौका नहीं मिलता,
0: क्योंकि चीटर्स को अंपायरिंग जैसे बहुत महत्वपूर्ण ईमानदारी वाले पद नहीं देने चाहिए। ये चीटिंग करते थे।
2: नहीं सर, मैं चीटिंग नहीं करती, पर बड़े बड़े मैचों के बीच में मुझे ना अंपायरिंग करने का मौका नहीं मिलता।
0: बड़े बड़े गेम्स में
2: हाँ। बड़े बड़े लोग जो भैया लोग है ना, वो लोग जब खेलते हैं तो वो मुझको अंपायर थोड़ी ना बनाते, और चीटिंग कौन करता है, बड़े वाले भैया करते हैं
0: भाई। तो वो तो उनकी कला है ना, हर कोई चीटिंग भी नहीं कर पाता है,
2: उनको कई बार आउट करना पड़ता है।
0: अच्छा देखिए,
2: वो एक बार भी नहीं मानते।
0: चीटिंग तो वही होती है जो पता ही ना चल पाए और आप कर ले जाओ आराम से, है ना।
2: हाँ तो उनके उनके समझ से लगता है कि हम लोगों को नहीं पता चला है और हम लोगों को लगता है अरे तो आउट है। लेकिन मार खाने से बचना है तो हाँ। या नहीं आउट हो, खेलते रहो खेलते रहो।
0: अच्छा, मार बड़ा हिंसक कार्य हो जाता है। खैर इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर अकेले खेलना हो, बाहर खेलना हो तो क्या खेलेंगे, ये तो खैर एक साथ में ग्रुप वाली बात हो गई।
2: अकेले खेलना हो तो फुटबॉल खेलेंगे।
0: अकेले अकेले फुटबॉल खेलेंगे।
2: हाँ, ये कब
0: से होने लगा, ये कब से होने लगा,
2: ये तो हमेशा करती हूँ, जब अकेले है तो क्या करेंगे, अच्छा, तो फुटबॉल ही खेल लेंगे।
0: चलिए बहुत बढ़िया, वैसे आपने बताया है कि अकेले होंगे तो फुटबॉल खेलेंगे और कई लोगों के साथ होंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। That's very good.
2: अभी जो सप्ताह में बात कर रही थी
0: जी जी,
2: उसको ना हम लोग क्या बोलते थे, कोहरा बादाम,
0: कच्चा बादाम,
2: उस गेम को कोहरा बादाम,
0: कोहरा बादाम,
2: कोहरा बादाम खाओ पीछे ताको मार खाओ
0: पीछे। देखा, मार खाने वाला था ना उसमें, हमने कहा था उसमें कुछ था जिससे मारा जाता था।
2: सर उसमें मारा जाता था, यही बोलते थे कोहरा बादाम खाओ पीछे ताको मार खाओ, जो पीछे ताक देता था उसको पिटाई होती थी,
0: उसको जड़ देते थे हम लोग तौलिए से, वही मैंने कहा था कुछ तो था। हाँ। देखिए याद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
2: होता था।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छा याद दिलाया, ये कई बार हमने भी खाया हुआ इसलिए मुझे याद है अच्छे से।
2: सर मैंने भी खाया है
0: मार। सही है, खैर आप
2: कुछ लोग तो थोड़ा दयालु होते थे तो आराम से ऐसे ही छुआ देते थे, कुछ लोग थे तो पिटाई ही कर देते थे।
0: हाँ हाँ हाँ, नहीं खैर देखिए आप तो उसको डिजर्व करते हैं तो खैर वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना।
2: क्या है
0: मतलब, है ना, ठीक है ना।
2: नहीं आपको, तो नहीं है।
0: आपको बस हाँ बोलना है ना, ठीक है।
2: हाँ
0: हाँ, बस बहुत बढ़िया। यानी मैं कह रहा था मैं ये कह रहा था कि आप मार खाना आप जो है आप डिजर्व करते हो, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: तो खैर अब आप हाँ बोल दिया, अब तो खैर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि ये परमानेंट मार्कर से लिखा गया
2: है।
0: नहीं वो तो बोल दिया ना आपने, पहले ही हाँ बोला था ऑफिशियली हमने हाँ बोल दिया। थैंक यू सो मच अनु कि आपने हमको बताया कि आखिर आपको कौन कौन से गेम्स पसंद है।
2: जी। अभी एक बात और, आपने जो कटहल वाली बात की थी ना,
0: हाँ।
2: तो ऐसी जुड़ी हुई बात तो मेरे पास नहीं है, आसपास नहीं है, पर हाँ एक बात ये है कि मेरे यहाँ जो कटहल लगा है उसमें बहुत फल आए थे सर, इतने फल आए थे कि क्या बताऊँ, लगा था पेड़ ही गिर जाएगा, पर उसने कुछ लोगों की दया दृष्टि कुछ ज्यादा ही रही कि उसको ज्यादा बढ़ाई होने नहीं दिया, हटाने लगे फल को, थोड़ा थोड़ा कम करने लगे।
0: ठीक है, हमें लगा इतना ज्यादा आ गया कि बांध पे जो पत्थर लगाए जाते थे आपके यहाँ से कटहल ले जाले जाके पानी रोकने की व्यवस्था की जा रही थी।
2: लगा सकते हैं, कोई बात नहीं सर, इतने कटहल अभी भी लगे हैं कि मैं ना स्टूडियो में भेज सकती हूँ, तो जितने लोग आएंगे सब लोग आराम से खा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, अभी इतना लगा।
0: चलिए अपने घर का एड्रेस बता दिए, जिनको लेना होगा खुद ही आके ले लेंगे वहाँ पे।
2: ये तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं सोच रही थी किसी से मैंने वादा किया था, वादा तो नहीं कटहल भेजने का किया था,
0: हाँ।
2: पर हाँ किसी ने मुझसे, जो मेरा अपना बहुत खास है, उसने मुझसे बोला था कि अनु जब आना तो मेरे लिए कटहल की पत्ती लाना।
0: बहुत बढ़िया,
2: तो मैं सोच रही थी इस बार कटहल ही भेज दूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर अभी तक भेजा नहीं।
0: कोई नहीं बिल्कुल भेजिएगा, एंड थैंक यू सो मच अनु ये बताने के लिए कि कटहल बहुत ज्यादा हुआ था इस बार आपके यहाँ। थैंक यू,
2: ओके सर, बाय
0: बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु जिन्होंने हमसे बातचीत किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, और अगली कॉल पे हम ले रहे हैं अगले कॉलर को, और देखते हैं कि इस बार कॉल पर कौन है, और अगर इनको छोड़ दिया गया भाई साहब 2 घंटे के लिए तो कौन बवाल मचाने वाले। हेलो
3: हेलो नमस्कार,
0: आहा कौन है आप?
3: जी मैं बहुत दूर से कॉलर हूँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से पहुँच चुका हूँ गोंडा पे।
0: आहा नॉर्थ ईस्ट से आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम तो बता दें।
3: जी मेरा नाम है अविनाश अली।
0: अविनाश अली?
3: जी अविनाश अली नहीं, अविनाश अली।
0: अच्छा अच्छा, सो अविनाश जी कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया है, और आपसे कार्यक्रम सुन रहा हूँ, आज जो टॉपिक आपने लेके आए हैं 2 घंटे के लिए, मोबाइल और घर से निकाल दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे तो मुझे बहुत ही पसंद आया।
0: सबसे पहले तो देखिए आपका हम स्पेशल स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें मुझे लगता है अभी इस वक्त सबसे ज्यादा दूर से आप ही सुन रहे हैं।
3: जी जी, क्योंकि कल ही मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि आपसे इधर जो कार्यक्रम आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, 89.6 FM जो वहाँ से आता है, तो मैंने सोचा चलिए कल का जो डॉक्टर साहब बैठे थे वो उनका भी कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत बेहतरीन कॉमेडी कर रहे थे, आपकी मजाक बहुत अच्छा लग रहा था उनके कार्यक्रम में।
0: जी जी, डॉक्टर लव।
3: जी जी जी, 7 बजे आया था शाम को, 7 से 8।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो अविनाश जी, अगर आपको 2 घंटे के लिए बाहर किया जाए तो आप कौन सा खेल खेलने वाले हैं?
3: जी मुझे तो देखिए बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक है, क्योंकि मैं जब पहली बार रेडियो से जुड़ा था तो क्रिकेट की वजह से जुड़ा था, क्योंकि उस समय देखिए जिनका बहुत दिक्कत पड़ता था, तो उस समय मैंने मेरे दोस्त की सलाह से मैंने पहली बार रेडियो खरीदा था 250 रुपये, उसके बाद से लगातार कॉमेडी सुनता हूँ और कार्यक्रम भी सुनता रहता हूँ, उसी से मेरा जुड़ा हुआ है रेडियो के प्रति, इतना बेहतरीन अनुभव हुआ है, और इससे जो शिक्षा मिलती है हम सभी को, तो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलना ही मुझे पसंद है।
0: अरे वाह क्या बात है, तो मतलब अगर आपको 2 घंटे के लिए। जी
3: जी, और कॉमेडी करना भी मुझे पसंद है, तो कभी अगर लोकल टूर्नामेंट होता तो कॉमेडी।
0: अरे वाह, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तो डेमो दे ही दे आप कॉमेंट्री का, इस वक्त सब आपको सुन रहे हैं लाइव।
3: अच्छा तो ठीक है, तो आज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कॉमन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैच है, तो इसका ही मैं अब मतलब कि जो होने वाला है, मतलब कि हो सकता नहीं भी हो, लेकिन कुछ उसका भी हिस्सा मैं सुना देता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल
3: जी, तो दोस्तों आज हमारे सबसे बड़ा मैच क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान, चिर प्रतिद्वंदी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, वो चाहे महिला क्रिकेट हो या फिर पुरुष क्रिकेट टीम हो, दोनों ही बल्कि बहुत ही लाजवाब तरीके से खेलते हैं, और इसका जो एक एक पल तो हमारे जो दर्शक है वो देखने के लिए उत्साहवर्धक रहते हैं और जो रेडियो में कमेंट्री आता है तो सुनने के लिए बेहद इंतजार करते रहते हैं। तो चलिए टॉस का वक्त होने जा रहा है और हमारे भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर पहुंच चुके हैं मैदान पर और उन्होंने इस बार सिक्का उछाला और देखिए और पाकिस्तान के कप्तान ने इस बार टेल का जो अपने तरफ से कहा है और लेकिन भारत तो जीत चुका है, हेड आ चुका है और भारतीय कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर ने इस बार पहली बैटिंग करने का फैसला किया है और हमारे तरफ से जो दो दिग्गज ओपनर है सफारी वर्मा और स्मृति मानधना उन दोनों भी मैदान पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और धूम धड़क के साथ ही हम सभी चाहते हैं कि शुरुआत हो भारतीय टीम की जी। तो इसी प्रकार से कमेंट्री करते हैं
0: और ये हमारे अविनाश जी ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री की और इनके लिए सिक्स
3: और रेडियो में देखिए जब कमेंट आता है कि जैसे कि कोई चौका छक्का पड़ता तो ऐसे पहले जब विनीत गर्ग जी बोलते थे इस बार एक कदम बाहर निकाल के बल्लेबाज ने गेंद को उछाल दिया है और बॉल सीमा रेखा पार कर दी 4 रन के लिए ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया
0: BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। हाँ आपको याद है जब ये बहुत पहले आता था कमेंट्री होती थी तो स्पॉन्सर्ड बाय BSNL होता था और उसको ऐसे ही बोलते थे वाओ क्या बात
3: जी, जी, जी।
0: अच्छा आउट हो जाने पे कैसे बोलते हैं
3: जी जैसे इंग्लिश कमेंट्री अगर करते हैं तो ऐसे बोलते बैट्समैन रेडी फेस द बॉल अंपायर कॉल द अंपायर एंड बॉलिंग बैट्समैन एरियल रूट एंड टेक्स द एरियल रूट एंड गिविंग द फील्डर टेक्स द कैच एंड गिव आउट ये हमारे उनका नाम क्या वो जो कमेटी करते थे जयंत जयंत लाबानिया ऐसे कुछ है नाम था उनका वो ऐसे कमेटी करते थे जी। और अगर विनीत गर्ग की अगर भाषा में बोले तो उन्होंने ऐसे बोलते भाई इस बार बल्लेबाज थोड़े एक कदम बाहर निकल के खेलने की कोशिश किया लेकिन बॉल हवाई रास्ते पार करते हुए देखते हैं छक्के के लिए जाता है या फिर लेकिन बीच में ही से रोक दिया है फील्डर ने और बहुत ही बेहतरीन कैच कर लिया है और इस तरह से सचिन तेंदुलकर जी आउट होते पवेलियन धीरे धीरे जा रहे हैं। मतलब कि वो ऐसे उत्साह से कॉमेडी करते थे कि लगता था कि ये रोमांच बना हुआ है हो सकता है छक्का हो गया लेकिन बाद में देखा जाता था कि जी कि फील्डर ने कैच पकड़ लिया होगा और आउट हो गए। बल्कि उनका कॉमेडी सुनने का बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। एक है विनीत गर्ग और एक है सुशील दोषी जी।
0: बहुत खूब बहुत बढ़िया आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कर लेते हैं ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है जहाँ पे आप हैं इस वक्त?
3: जी हमारा तो लोकल लैंग्वेज वो है भोजपुरी लेकिन हम जो त्रिपुरा में रहते हैं त्रिपुरा का जो लैंग्वेज वो है बंगाली में तो बंगाली में भी कॉमेडी करते हैं और यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है बंगाली वो भी बहुत खूब आता है और यहाँ पर जो पहाड़ी भाषा है वो भी मुझे आता है और भोजपुरी भी तो मेरा मातृभाषा है और हिंदी और अंग्रेजी तो आता ही है।
0: कुछ छोड़ा है आपने या सब? कुछ भी नहीं बचा आपसे इसीलिए हम लोग के लिए बचा ही नहीं है।
3: नहीं आपने आपने यहाँ पर 89.6 रस्ते में बचा हुआ था तो वो भी आज इसके दिल की मोड़ा चलती है वो पूरी हो गई है।
0: क्या बात है बहुत टैलेंटेड है आप अविनाश जी और बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। हम चाहेंगे कि ऐसे ही कमेंट्री भी करते रहें और ऐसे ही आप खुश रहा करें और जब भी आपको मौका मिले तो आप संडे में ऑफ कोर्स कॉल इन प्रोग्राम में जरूर जुड़ा करिएगा। एंड बहुत बहुत
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने मेरे लिए इतने टाइम मेरे साथ आपने जिस प्रकार से मेरी सब कमेंट सुना और जिस प्रकार से मेरे साथ वक्त गुजारा मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में और मुझे उस दोस्त को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन दोस्त ने मुझे कल जोड़ा था कल ही मुझे नंबर दिया था उन्होंने।
0: अच्छा क्या नाम बता सकते हो उन दोस्त का?
3: जी उनका नाम है जो गोंडा से ही जुड़ती है अनु पांडे जी।
0: अच्छा ओके थैंक यू सो मच अविनाश जी आपको और थैंक्स टू अनु पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का।
3: जी
0: थैंक यू सो मच
3: धन्यवाद जी थैंक यू।
0: सो भाई ये तो थे अविनाश जी देखिए और कहाँ से जुड़े थे मतलब कहाँ गोंडा और कहाँ नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा मतलब एक इधर नेपाल के पास तो एक उधर देश की दूसरी सीमा पर राइट। सो ये जो है इसी को कहते हैं ये फैमिली है ये एक ऐसा मंच है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें बहुत खूबसूरत है यानी यहाँ पे कोई सीमाएं नहीं रहती यहाँ कोई भाषा आपके लिए हर्डल नहीं बनती यहाँ पर हम सब मिलकर के एक हो जाते हैं और एक परिवार बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ज्ञान स्त्री फैमिली फिलहाल मस्ती में झूमने वाले हैं। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं। मटर गश्ती कहां 89.6 FM पर।

0: चिरकुट जिंदगी भाई, ये क्या होता है। फिलहाल जो भी होता हो, खैर हम आपको अब ले चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद, और अगर इनको दो घंटे के लिए छोड़ दिया जाए बाहर बिना टीवी और मोबाइल के तो आखिर ये क्या करने वाले हैं। हाँ जी हेलो,
1: टीवी मोबाइल दूर कैसे, तो रेडियो तो है ही ना हमारे पास।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, क्या लॉजिक लगाया आपने। चलिए हम घर से बाहर कर दिए हैं और आपका रेडियो अंदर है, तो बाहर क्या करेंगे आप, सवाल ही। मतलब रेडियो ना छोड़बो। बहुत बढ़िया, लेकिन हम अगर गेम्स की बात करें आपसे, अपना नाम तो बता दिए। हाँ हाय सृष्टि, सो अगर हम गेम्स की ओके बात करें तो गेम्स में आप बाहर कर दिया जाए तो क्या खेलने वाले हैं।
1: पहले तो रेडियो ऑन कर देंगे स्कूल, उसके बाद फ्रेंड्स को बुलाएंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे।
0: छुपन छुपाई खेलेंगे,
1: हाइड एंड सीक।
0: ऐसी कौन सी जगह थी जब आप छुपन छुपाई खेलते थे जिसमें आप छुप जाते थे तो कोई माइकालाल ढूंढ ही नहीं पाता था उसको।
1: वो छत है।
0: छत पे कैसे छुप सकता है इंसान,
1: क्योंकि मेरे घर पे सीढ़ी है नहीं, मैं चढ़ जाती हूँ फुटफुट।
0: हैं, क्या बात कर रहे हैं, सीढ़ी नहीं और छत पे आप चढ़ जाते हैं।
1: हम चढ़ जाते हैं क्योंकि मेरे घर सीढ़ी नहीं है और कोई छत पे आ ही नहीं पाएगा।
0: स्पाइडर वुमन सीढ़ी चढ़ जाती हैं आप। ओहो,
1: स्पाइडर समझ गए।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बचपन में ही चढ़ पाते थे कि अभी भी वही हाल है।
1: अभी भी वही हाल है।
0: अच्छा, अभी भी सीढ़ी नहीं है। और अभी भी
1: मम्मी भी आके पहुंच पाती है, अगर गुस्सा होता है। एक बार यूं हुआ, मैं पंखे का गुस्सा हो गई होली के बाद, तो मैं गई छत पे बैठ गई। अब मम्मी ने मुझे रात में 10 बजे तक ढूंढा, बाद में पता चला कि मैं छत पे बैठी हूँ।
0: शहर में ढिंडोरा, छत पे छोरा। ये वाली कहावत हो गई। तो वाह वाह वाह, मतलब यार ये बढ़िया कॉन्सेप्ट भाई। बाकी लोग हमें लगता है सुन रहे हैं, जो लोग अपने घर में ज्यादा मार खाते रहते हैं, बच्चों आप लोग सुन रहे हो ना, तो जीना इना हो तो हटवा दो घर से और सीधे चढ़ने की ट्रेनिंग ले लो। कभी भी मार खाओ सीधे सत पे जो है चढ़ जाओ। सो ये बढ़िया है। अच्छा, मतलब आपने बताया कि छत ऐसी जगह है जहाँ पे आप छुप जाते थे, तो वहाँ कोई आपको ढूंढ नहीं पाता था।
1: यहाँ तक मम्मी नहीं ढूंढ पाती थी, सबकी बात तो छोड़ दीजिए।
0: तो कौन टाइम चढ़ते थे आप जो देख नहीं पाता था कोई?
1: अरे मम्मी काम पे चली जाती, मैं छत पे जाके चढ़ जाती। अब बाहर से पहले ताला डाल देती, दूसरे तरफ से घुस जाती मैं घर में, और उसके बाद इधर ताला पड़ जाता, मम्मी सोचती मैं कहीं गई हूं।
0: अच्छा, सृष्टि के अलावा ऐसा कौन सा जीव है जो मतलब ऊंची ऊंची जगहों पे आराम से चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है और नीचे उतर आता है तेजी से?
1: बंदर, बंदर, बंदर।
0: हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे हमने नहीं कहा, देखिए आप खुद ही कह रहे हो।
1: आपने पूछा, हमने बताया,
0: तो आप समझ गए ना हमने क्यों पूछा था।
1: हाँ समझ गए।
0: लेकिन सही शब्द जो है वो बंदर नहीं होगा, सही शब्द क्या होगा?
1: बंदरिया।
0: चलिए देखिए, आपने खुद से कह दिया, उसके लिए मैं कहूंगा भाई जोरदार तालियां। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब मुझे तो ये वाली बात है ना कि क्या कहते हैं, लाठी
1: चढ़ जाती है, ये कह सकते हैं आप।
0: अब मुझे सफाई नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के आप चढ़ जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने शब्द बोला, जैसे वो लोग चढ़ते हैं। मैं खुद से नहीं बोलूंगा, ठीक है, ताकि कल कल आप मुझे इल्जाम न लगाओ कि मैंने आपको ये बोला है।
1: आपने बोला था, मैंने बताया।
0: हाँ, तो मैंने तो ये पूछा ना था कि भाई कि ऐसे कौन से जीव होते हैं जो चढ़ जाते हैं बहुत तेजी से, चाहे वो पेड़ हो या छत।
1: जानवर बोलिए तो समझ भी जाए।
0: तो अब बोलने की जरूरत क्या है जब आप वही चीज कर ही रहे हैं।
1: आपने उल्टा पूछा है, सीधा बताया।
0: तो हम उल्टा ही पूछेंगे, हम सीधा काहे पूछेंगे, सीधा तो दुनिया पूछती ही है।
1: हम उल्टा पूछे क्या?
0: चलिए आप उल्टा पूछिए।
1: उल्टा?
0: हाँ।
1: ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है?
0: ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है? हाथी।
1: हाँ।
0: सही है।
1: कौन?
0: हाथी।
1: हाथी।
0: हाँ, उल्टा बता।
1: गर्मी तो पानी में कौन सा जानवर बैठता होगा?
0: कहाँ पर?
1: कहीं पर भी, पानी जहाँ मिल जाए।
0: पानी जहाँ मिल जाए वहाँ कौन सा जानवर बैठता होगा?
1: अभी प्रेजेंट में गर्मी के हिसाब से।
0: आपके घर में शीशा है?
1: बिल्कुल।
0: जरा झांक के देखिए कौन सा जानवर दिख रहा है।
1: वो तो मेरा कुत्ता दिख रहा है फिलहाल के लिए।
0: नहीं नहीं, आप शीशे में झांक के देखिए आपको क्या दिख रहा है।
1: शीशे में हम देख रहे हैं आउटसाइड में डॉग दिख रहा है क्योंकि वो पानी में बैठा हुआ है।
0: आपको आपका जवाब मिल गया।
1: पर आपने आंसर नहीं दिया, ये तो गलत था सर।
0: मैंने कहा तो जो वो जानवर मिलता है जो आप अगर शीशे में झांक के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, झांकते ही दिखेगा, जैसी हटेंगे वैसे वो भी हट जाएगा।
1: अरे नहीं सर, मैं हटी निकल वो दिख गया मुझे क्योंकि पानी में वो बैठा है जाके तब में।
0: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, ये भी जरूरी है।
1: नहीं जरूरी है, मुझे बताने की जरूरी नहीं है, मैं फोटो ही सेंड करूंगा। कमल
0: कमल नयन जी ने भैंस बता दिया है, ठीक है। कमल नयन जी देखिए बहुत ही प्यारे इंसान है और जब वो बताते हैं तो बिल्कुल सच बताते हैं। जज साहब कहते हैं, जज साहब दुनिया भर से गीता पे हाथ रख करके कसम खिलवाते हैं, लेकिन जब कमल नयन जी आसपास कचहरी के होते हैं तो उन पर हाथ रखवा के कहा जाता है लोगों से कि भाई इनकी कसम खा के कहो सच कहोगे। तो बहुत प्यारी बात कही है, भैंस बोल दिया उन्होंने। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
1: फिलहाल के लिए तो मुझे जवाब नहीं मिला क्योंकि आपने जवाब दिया ही नहीं है।
0: कोई बात नहीं, मेंढक बता दिया प्रीति जी ने बस।
1: अभी भी नहीं, आप देंगे कब मानेंगे, सब लोग दे रहे हो तो ठीक है।
0: हमने बता दिया था जो आपको शीशे में दिखाई पड़ा होगा झांकते बस वही था।
1: हमारे घर में पहली बार तो शीशा ही नहीं है।
0: बस देखिए अभी भाई झूठ पकड़ा गया, अभी कहा आपने हाँ दिख रहा है झांक रहे हैं, यही दिक्कत होती है।
1: जानवर की आंखों में झांक रहे हैं,
0: ये इंसान इतना झूठा हो गया है, अब क्या बताया।
1: अरे हम सुधर जाएंगे तो दुनिया क्या करेगी।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपको आपका जवाब हमारे श्रोताओं ने दे दिया एंड बहुत अच्छा आपने पूछा था प्रश्न एंड बहुत ही अच्छा आपने रिप्लाई भी दिया हमारे सवाल का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये सृष्टि थी जिन्होंने हमसे बातचीत किया। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद दो घंटे के लिए बाहर जाने के लिए। हाँ जी हेलो,
2: नमस्ते सर, मोहिनी तिवारी बोल रहे हैं गोंडा से।
0: नमस्ते मोहिनी तिवारी।
2: यस सर।
0: हाय मोहिनी, गोंडा में कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: सर हम गोंडा में गोंडरी प्रवासी बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, तो ये आप कब से सुनना शुरू करे हैं गोंडा एफएम को?
2: सर काफी दिन हो गए, जब से शुरू हुआ है।
0: जब से शुरू हुआ है? अच्छा।
2: यस सर, 2023 से शुरू हुआ है ना।
0: 22 दो महीना चूक गया। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। सो ये बताइए पहले अपना हालचाल कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, बहुत मस्त हैं। प्रश्न आपने सुना मैंने क्या पूछा था सवाल?
2: यस सर, यस सर। अगर दो घंटे के लिए घर से बाहर का दे रहे हैं फोन और टीवी सबसे, तो क्या खेलेंगे हम?
0: हाँ बताइए।
2: हम तो अगर अकेले खेलेंगे तो जो पहले पापा के साथ में घर बनाते थे मतलब मिट्टी में,
0: अरे वाह,
2: वो बनाएंगे। और अगर फ्रेंड्स के साथ में खेलेंगे तो फिर क्रिकेट या कबड्डी।
0: कबड्डी सीधे पटकी पटकान?
2: यस सर। नहीं स्कूल में वही खेलते थे ना।
0: अरे वाह, तो कभी
2: स्कूल की याद भी ताजा हो जाएगी।
0: नहीं स्कूल की याद तो ताजा होगी, कभी ऐसे तो नहीं कि किसी सीनियर को पटका हो उसके जख्म भी ताजे हो जाए?
2: नहीं सर, वैसे सीनियर आएगा तो उसके जख्म जरूर ताजा होगा, और अगर नहीं आएंगे तो सर देखेंगे सर ताजा कहाँ से होगा।
0: तो कभी आपने धमकी नहीं दी किसी को, अगर ज्यादा बोलोगी तुम या ज्यादा बोलोगे तुम तो अभी हम तुम्हें पटकनी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कभी धमकी दी आपने?
2: नहीं, छोटे भाई बहन को देते हैं।
0: अच्छा, ये बड़ी जुल्मी पहल है भाई। छोटे भाई बहन
2: उन्हीं को दे सकते हैं, अगर बड़े को देंगे तो हमें पटकनी देने दिया।
0: जब तक आप बोलोगे बोलोगे तब तक पटकनी आपको दे दी जाएगी।
2: यस सर।
0: फिर दो घंटे के लिए, दो दिन के लिए बाहर किया जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त हो जाएगा।
2: हाँ सर, तो क्या घर से तो बाहर जाएंगे, छत पे चले जाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये आपने जो घर बनाने वाला बताया, मुझे अभी अचानक से याद आया कि जैसे मोहल्ले में किसी का कुछ कहा कोई कंस्ट्रक्शन होता था तो बालू मंगाते थे लोग, डलवा देते थे
2: उसी बालू से।
0: करेक्ट करेक्ट, उसमें हम लोग बहुत लंबी सुरंग खोद देते, तो जरा सा कोई हिला देता था या गड़बड़ मार देता था पूरा का पूरा उसमें गिर जाता था। मतलब
2: हाँ सर ऐसा ही होता है, बनाते बनाते घर गिर जाता है,
0: है ना।
2: हाँ सर।
0: तो मतलब आपने एक ऐसी चीज याद दिलाई जो बहुत ही अंडररेटेड है, अगर आज आप याद ना दिलाते तो शायद अभी याद भी ना आता वो, लेकिन बहुत टाइम दिया उस पे, ये बात सही है। मतलब हम सब लोग उसको खुद से जोड़ करके देख

0: मानते क्योंकि हम बहुत छोटे थे।
1: ओके ओके, सो ये हमको बताइए कि अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, ऑब्वियस सी बातें हैं ही, उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं?
0: उनके साथ खेलने बैठ जाते हैं।
1: और क्या खेलते हैं?
0: वही खेलेंगे, फिर कॉपी किताब उठा के पढ़ाएंगे, उसके साथ में खेलेंगे भी, पहेलियां वगैरह सुना के सब बैठे रहेंगे आराम से।
1: वाह क्या बात है, मतलब आपके पास तरीके हैं जिससे कि अपने भाई बहन के साथ आप खेलते भी हैं और उनको मोबाइल से भी दूर रख पाते हैं।
0: यस सर।
1: बहुत प्यारी बात बताई आपने और आपके भविष्य को लेकर के हम लोग ढेरों सारे आपको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपके पास कॉल किया, बहुत कोशिश किया था, एक बार नहीं लगा था, आज लगा।
1: आज कोशिश किया तो आज लगा।
0: आज बहुत एक्साइटेड थे आपसे बात करने के।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लिए और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप कोशिश करेंगे और वो कोशिश पूरी होगी।
0: यस सर।
1: ओके थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर।
1: तो भाई इस तरह से बचपन का जो वक्त है वो बालू में भी गया है, आपको भी याद होगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग में से ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है जैसे ही किसी का घर बनता था और ऑफ कोर्स आता था, बालू का खेप आती थी, इवन वो जो ट्रैक्टर से उतारते थे उसको देखने में बड़ा मज़ा आता था कि फाड़वे से किस तरह से मेन गेट से उतारा जा रहा है पीछे वाले तरफ से, या साइड से एक छोटा सा बना होता है ट्रैक्टर पर जिस पर चढ़ के उतारते हैं, और बड़ी से जो कील होती थी या जो कह सकते थे कुंडी होती थी उसको जब वो निकालते थे हल्का मार करके फावड़े से, वो भी देखने में बहुत मज़ा आता था। मतलब ये सब मज़ा था। आज लोग जेसीबी देखते हैं, हमारे ज़माने में तो जेसीबी उस टाइम हमने बहुत रेयर रही थी और ये सब देखने में बहुत मज़ा आता था। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं उनको दो घंटा बाहर करने पर वो क्या करने वाले हैं। हाँ जी हेलो।
2: सुप्रभात सर जी।
1: सुप्रभात सुप्रभात, अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
2: अंबर बोल रहे हैं।
1: जी अंबर जी, कैसे हैं आप?
2: बताइए।
1: बहुत बढ़िया, आज तो मतलब इतने इंटरेस्टिंग से सबके जवाब सुन सुन करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। सवाल कैसा लगा पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे।
2: क्या
1: सवाल कैसा लगा आपको?
2: सवाल से अच्छे तो आंसर लग रहे हैं।
1: सवाल से अच्छे आंसर लग रहे, लेकिन अगर सवाल ही ना होता तो आंसर कैसे आते, ये सोचा है?
2: नहीं, वो तो आपके अंदर खूबियां हैं, आप
1: बस भाई इतना इतना बहुत है, इतना कर दिया, अब आप आगे की बात कर सकते हैं। तो
2: अगर क्वेश्चन तो यूनिक रहते हैं, पता नहीं किस खदान से खोद के लाते हैं।
1: आज बालू वाला था।
2: नहीं बालू तो हम भी खेले हैं, बालू मोरंग, बालू तो बह जाती है, सब रुकती नहीं है, वो मोरंग गीली रहती है, मोरंग रुकती थी।
1: मोरंग में भी सही कहा आपने, लेकिन हम टैलेंटेड थोड़ा ज्यादा थे तो बालू रोक लेते थे ना, इसलिए कह रहे हैं।
2: नहीं बालू तो सर, बालू तो रुकती नहीं थी, बालू में पैर डाल के घर बनता ही नहीं था।
1: क्या बात कर रहे हैं,
2: नहीं हम तो रोक ही नहीं पाए बालू, आज तक बालू सूख जाती है तुरंत, मोरंग गीली रहती है, मोरंग में रुक जाता है।
1: अब जहाँ भी मोहल्ले में कभी बालू आए तो हमको आप कॉल करिएगा, हम आके सामने से डेमो।
2: अब बालू कहाँ आती है सर जी, अब तो वो लाल मोरंग सब आने लगी है, अब कहाँ बालू आती है।
1: तो यानी अब तो कभी नहीं करके दिखा पाएंगे आपको?
2: हाँ बालू तो बहुत रेयर ही मिलेगी, किसी के यहाँ मिल जाएगी तो
1: कोई बात नहीं। ये वाला कैंसर
2: तो हम काफी कर रखे हैं, मोरंग में कर रखे हैं, ईंटे से घर बना रखे हैं।
1: हाँ ईंटे से, हाँ
2: हाँ, हम तो यूनिक यूनिक गेम खेलते थे अकेले।
1: जैसे?
2: और जैसे हम ऊंची कूद,
1: ऊंची
2: लंबी कूद
1: है,
2: अकेले में जैसे साइकिल रख लेते, साइकिल कूद जाओ, खटिया रखी रहती थी चारपाई से, इधर से क्रॉस कर दो कूद के।
1: ये बहुत बहुत प्यारी बात कही, वाओ।
2: हम तो यही सब खेले हैं सर, रस्सी कूद लेते थे हम, वो अकेले में गोटी, वो कंचा कंचा खेले हुए हैं।
1: अरे बहुत बढ़िया, वो तो बहुत खेला हमने भी वो। हाँ। अच्छा उसका उसका एक शब्द होता था, कहते थे इस पे निशाने लगाने को क्या बोलते थे उसको?
2: अब इतना याद नहीं है सर, बहुत साल हो गया, 30-32-35 साल हो गया सर, बातों को भूल
1: गया। अच्छा नहीं, सो बोलते थे आंटी लगाओ।
2: नहीं सर, ये सब हम 95-94 की बात कर रहे हैं।
1: अरे उस टाइम तो देश आजादी हुआ था बस।
2: क्या?
1: नहीं सॉरी।
2: क्या कहा?
1: हमने कहा उस टाइम तो बस देश आजादी हुआ था।
2: नहीं नहीं, देश आजाद नहीं हुआ,

0: हम आजाद हो गए थे, अच्छा।
1: वाह, अच्छा अगर अभी, जैसा कि हमारा सवाल है कि अगर अभी आपको 2 घंटे के लिए कर दिया जाए मोबाइल और टीवी से दूर, तो आप कौन सा गेम आप प्रेफर करेंगे?
0: सर कुछ नहीं, खटिया डालते हैं सो जाते हैं, सबसे पहली बात तो यही होता है।
1: नहीं गेम बोला है भाई, ये कराटे गेम थोड़ा ना बोला है।
0: नहीं इससे बढ़िया कौन सा गेम है सर जी, सो बढ़िया खटिया डाल के और बाहर का मनोरंजन का वातावरण का आनंद लो, घर के बाहर का बढ़िया पेड़ वगैरह लगे हुए हैं आम के, नीचे पैर डाल लो सो जाओ।
1: यानी आप जो है वो फ्लाइट मोड पे अपना फोन चलाते हैं, जैसे पता है एक तो होता है नेटवर्क आ रहा है देखिए खेल रहे हैं, दूसरा फ्लाइट मोड पे है कि आप सोते सोते ख्वाब में जो गेम खेल रहे हैं वो उसकी आप बात कर रहे हैं।
0: ठीक है लेकिन अब जो है वो हाथ पर इतने काम नहीं करते हैं, खुले हुए नहीं है, बंद गए हैं,
1: इसीलिए तो गेम की बात कर रहे हैं हम।
0: हाँ जो पहले हाथ पर खुले हुए थे हम लोग, मतलब हम 8-10 फुट मतलब छत पे चढ़ जाते थे, छत से नीचे कूद जाते थे, कंटिन्यू 2-4-5-10 बार हम कर लेते, मतलब 8-10 फुट छत पे, ऊंची छत पे हम नीचे कूद जाते थे।
1: तो मुझे लगता है
0: आपको सुभाग चढ़ने में हालत खराब हो जाती है।
1: आपको सुभागपुर का सुपरमैन तो नहीं कहा जाता था?
0: नहीं सब पहले की बातें हैं सर जी, अब तो पहले बच्चे कर लेते थे सर जी, अब नहीं कर पाते हैं।
1: हाँ वो तो बात सही है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर आज करना पड़े तो आज कौन सा गेम आप खेलना चाहेंगे?
0: सर हमें नहीं लगता कि हम खेल पाएंगे, हम यही कर पाएंगे, कार्ड ले लेंगे और बैठ जाएंगे उसी को अकेले खेल लेंगे।
1: ये देखा, ये बहुत काहली वाली बात है, अपने घर के बाहर इसीलिए किया है ताकि कार्ड वर्ड ना खेले लेकिन आप छोड़ नहीं रहे आप बाज नहीं आ रहे
0: और हमें नहीं लगता सर जी आज मतलब हम पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं, हम कोई गेम खेल पाएंगे ना, इतने हाथ खुले हुए ना, इतने पैर खुले हुए हैं, और कोई मतलब अब दौड़ भाग वाला गेम हम नहीं हो पाएगा।
1: अरे आपके विचार तो खुले हुए हैं
0: जी,
1: विचार तो खुले हुए हैं ना?
0: नहीं विचार खुले हुए हैं लेकिन हाथ पैर नहीं खुले हुए ना, गेम तो हाथ पैर से खेलना है।
1: नहीं आप विचारों से शुरुआत करिए, अपने आप हाथ पैर खुल जाएंगे।
0: हाँ। तो बाकी गेम तो बहुत खेले हुए हैं, वो पत्थर उसपे जमीन पे बना लो खाना तो ती ती थप होता था एक तो गेम।
1: हाँ, बुतकुलिया बताते थे, बनाते थे खाना ना।
0: हाँ मतलब फर्स्ट खाना फिर सेकंड फिर थर्ड फिर बगल में 4-5 फिर 6 फिर 7-8-1 में ऐसे होता था ना।
1: होता था।
0: हाँ गिट्टी भी खेले हुए हैं हम, इमली का बिया होता है ना चिया कहते
1: हैं,
0: हम वो भी खेले हुए हैं।
1: क्या बात है,
0: अकेले अकेले खेले हुए हैं सब।
1: और कोका कोला का ढक्कन जो आता था उसमें लगा करके?
0: नहीं सर जी खेला हुआ लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है।
1: अच्छा, उसका हमको भी ध्यान नहीं आ रहा।
0: हम रस्सी कूदे हुए हैं अकेले, कुछ नहीं पाते थे, रस्सी हो गया, तार हो गया, पाइप हो गया, कुछ भी हो जाए कूदो,
1: कुछ भी हो कूद जाओ खाली, मतलब कूदा बहुत है आपने
0: जी,
1: कूदा बहुत है आपने।
0: हाँ तो जी कूदा बहुत है
1: इसीलिए आपके में कुछ अलग शॉकर लगाया गया है
0: इसीलिए तो जी इतनी बढ़िया हेल्थ है कि एकदम दुबले पतले हैं आज के दिन भी।
1: ये कमेंट कर रहे हैं क्या खुद पे?
0: नहीं नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं।
1: अच्छा सीरियसली बता रहे हैं?
0: मतलब क्या
1: आप सीरियसली बता रहे हैं?
0: हाँ सीरियसली तो जी मैं ऐसे ही मतलब कांस्टेंट मेरा वेट जो है लगातार 15-16 साल से 62-63 किलो रहता है।
1: अच्छा वाह।
0: आज भी मैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत करता हूँ
1: जी,
0: लेकिन उस हिसाब से पहले हिसाब से नहीं कर पाता हूँ लेकिन करता जरूर हूँ।
1: वैसे एक बहुत बड़ा एक अलग बात भी है, पूछिए क्या?
0: क्या
1: आज माता जी का जन्मदिन है?
0: हाँ तो जी है
1: सो माता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है, अगर वो आस पास हो तो आप बात करिए।
0: माता जी से आप कहिए, माता जी
1: वही मैं कह रहा हूँ। क्या बात है।
0: हेलो
1: जी,
0: एक मिनट दे रहे हैं।
1: बिल्कुल भाई, फिलहाल चूंकि मुझे अचानक से याद आया, पिछले ही साल की बात थी और मुझे आज ही के दिन पता चला था, और चलिए अच्छी बात है कि आज माता जी को भी हम उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दे दें और उनसे बात कर लें, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है।
2: नमस्ते,
1: आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद।
2: थैंक धन्यवाद आपको मुझे कहने के लिए, विश करने के लिए।
1: कैसी है आपका स्वास्थ्य, कैसा है?
2: बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
1: पक्का ना?
2: बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज का दिन आपका कैसा आप भाई बिताने वाले, हम भी जानना चाहेंगे। देखिए, हम सबसे पूछते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भी दिन ये कुछ खास हो, अलग हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं।
2: मेरा दिन हर दिन अच्छा होता है।
1: आज का ज्यादा होना चाहिए।
2: हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये सही कह रहे हैं आप। जब बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप तो अपने आप ही खुश रहते हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल प्यारी बात, सही बात कही आपने। और बच्चे बहुत खुश हैं और हम आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और आशीर्वाद है बहुत सारा कि आप स्वस्थ रहिए और आपका साया घर पे हमेशा यूं ही सबको मिलता रहे।
2: धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
2: आपको विश करने के लिए। कम से कम आपको किसी ने बताया तो
1: नहीं, मुझे याद आ गया था पिछले साल वाला। हाँ सच में, मेरे फ्रेंड का दो दिन पहले बर्थडे था, हम उसका भूल गए थे, उसका अभी कल ही मैंने बर्थडे मनाया तो मुझे अचानक से याद आ गया था।
2: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, तो और ज्यादा धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया,
2: याद किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: चलिए सुना दीजिए अपनी ओर से और क्या।
1: अच्छा बिल्कुल सुना देते।
2: आज बच्चों की तरफ से ही होना चाहिए ना।
1: हाँ बेशक बेशक, सही बात है। तो दो लाइन आपके लिए, दो लाइन आपके लिए अर्ज कर रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। सुना दीजिए, ऑन एयर होना चाहिए।
1: ऑन एयर होना चाहिए,
2: बिल्कुल। आप सुनिए, सुने
1: कोई गाना आपको पसंद है तो बताइए, अगर मुझे याद है तो हम दो लाइन उसी की गुनगुनाएंगे।
2: नहीं, हमको सब गाने पसंद है, आज आप लोगों की पसंद का होना चाहिए।
1: अच्छा चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे हमारी, देखिए पसंद जरा सुनिए अब।
2: भाई हमारी पसंद तो रोज चलती है, आज कुछ स्पेशल है तो स्पेशल होना चाहिए ना।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल सही है। तो अर्ज कर रहे हैं आपके लिए कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,

0: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आपको डेडिकेटेड
1: बहुत अच्छा, वेरी
0: था। थैंक यू सो
1: वेरी
0: मच,
1: गुड।
0: बहुत
1: प्यार
0: शुक्रिया।
1: को सचेतन होना भी चाहिए ना बच्चों की तरफ से।
0: और क्या, देखिए कितना बढ़िया हो गया। और दीपांशी ने और इम्तियाज अहमद ने आपको आपके जन्मदिन की बधाइयां दी है चैट बॉक्स पर।
1: धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम सोच रहे थे आप लोगों की तरफ से कुछ होना चाहिए सचेतन।
0: जैसे
1: अरे कुछ पार्टी शार्टी कुछ हो जाए और क्या।
0: अच्छा तो बताइए भाई, पार्टी कहाँ दिया जाए, आप जहाँ बताइए।
1: अरे हम बताएंगे तो फिर बात ही क्या है, सरप्राइज होना चाहिए ना आप लोगों की तरफ
0: अच्छा। चलिए ठीक है, हो सकता है आपको सरप्राइज मिल ही जाए।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को,
0: बहुत शुक्रिया
1: बहुत
0: आपका।
1: बहुत। फिर वेट करते हैं हम आपकी पार्टी का।
0: जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, नमस्ते। सो भाई, बहुत अच्छे से बात किया और हमारी बात भी हो गई, देखिए माता जी से। और चलिए अब चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं अगली कॉल किसकी है और कौन बाहर जा रहा है 2 घंटे के लिए। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: अरे हमारे कमल नयन जी आ गए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ थे आप?
2: आज तो मतलब आत्मा अंदर से गवाही दे दिया था कि मतलब आज का दिन मतलब बेस्ट रहेगा, मतलब
0: अरे अरे अरे, आज हमने आत्मा को गलत साबित किया और आपकी कॉल देखी लग गई है फाइनली।
2: विश्वास था कि जैसे जब मन हार जाता है जीत हो जाती है, तो हमने सोचा कि लास्ट तक लगी जाए और लग ही गया।
0: जब मन हार जाता है तो जीत हो जाती है, वाह। ये अलग चल रहा है।
2: हमने कई कई कामों में सर हमने देखा है कि जो जो चीज को हो जाए हो जाएगा, नहीं होता जब दिल टूट जाता है कि यही तो उससे खत्म हो गया, अभी नहीं हो पाएगा, तो होता होता खत्म होता है तो मतलब हो ही जाता है।
0: वाह वाह, क्या बात है। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, हल्का सा डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा रुक कर आ रही है आवाज।
2: नेटवर्क नहीं है सर।
0: हाँ, अभी अभी अभी अभी सही है, अभी यहाँ पे रहिए, एकदम हिलिएगा नहीं, जहाँ पे एकदम वहीं जमे रहिएगा, हिलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है
2: सर। एकदम जाम हो गए
0: जाम ही हो जाना है। बस थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो ये बताइए, अगर 2 घंटे के लिए आपको बाहर कर दिया जाए टीवी और मोबाइल से दूर, तो कौन सा गेम आप खेलेंगे?
2: जी, जी। सर गेम खेलने की तो उम्र हम लोग की चली गई, अब तो है नहीं, बचपना होता तो खेल, चलो भाई कोई खेल खेला जाए, लेकिन आप कोई खेल खेलने के लायक रह नहीं गए।
0: कोई खेल खेलने के लायक रह नहीं गए, इतना क्यों आप खुद को नालायक बता रहे हैं? आप तो लायक हैं।
2: नहीं नहीं, नालायक वाली बात नहीं सर, देखिए इतना व्यस्तता हो गया है, इतना व्यस्तता हो गया कि अगर 2 मिनट का समय बचता है तो सोच रहे कि चलो 4 माल देते हैं, भैंस को हटा देते हैं, यही सब हो जाता है।
0: हाँ मतलब अगर मान लीजिए कि 2 घंटे के लिए समय हो और आपको मोबाइल और टीवी से दूर करके बाहर घर के कर दिया जाए, तो आप कौन सा गेम खेलना चाहेंगे?
2: बात तो सुनिए, अगर जैसे समय मिल ही नहीं रहा तो कैसे मान जाएगा?
0: अरे मान लीजिए आपका काम हमने निपटवा दिया तो 2 घंटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
2: हाँ तो सर हम कबड्डी खेला, बच्चों से जाकर कबड्डी खेलते थे।
0: अच्छा,
2: मतलब जैसे आप अपने कई लड़के होते हैं, खेल खेलना हमें पसंद आता है, मतलब अकेले तो कोई मजा ही नहीं आएगा सर।
0: अकेले में कोई मजा नहीं आता, चलिए ये बात तो आपकी मतलब दम है इसमें, बात तो सही है। और मतलब आप कह रहे हैं कि आप कबड्डी खेलना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो?
2: बचपन से कबड्डी बहुत खेलते, कोई भी नहीं खेलते थे, लेकिन कबड्डी हमारा होती थी, रुक जाते कहीं जाने रास्ते में, अगर कबड्डी हो रही तो रुक जाते खेलने लगते थे।
0: मतलब आप इतने दीवाने थे कि रास्ते में हो रही कबड्डी में जाकर के अपनी कबड्डी कर लेते थे?
2: आप जिस पार्टी में रहते थे उस पार्टी की विजय होती थी हमेशा।
0: क्या बात है, जिस पार्टी में रहते थे उस पार्टी की विजय होती थी, मतलब जीते हुए उम्मीदवार रहे हैं आप। क्या बात है, मतलब ये पहली बार आज आपके बारे में सुना, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जान करके, ये बड़ी खुशी की बात है।
2: अभी सर अभी तो टाइम मिलता नहीं, लेकिन बच्चे के साथ में कभी कभी खेलते हैं।
0: क्या बात,
2: फिर बच्चे छोटे छोटे तो मैं बोलता हूँ कि चलो मैं अकेला हूँ, तुम सब लोग हो जाओ।
0: अच्छा।
2: तो जाते हैं, लेकिन तभी 2-3 लोग टांग लेता हूँ, कहते आप बड़े हो इसीलिए जीत जाते हो, बड़े लेकिन तुम जाते हो।
0: बिल्कुल, वाह क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और अपनी कबड्डी की दास्तां हमसे भी साझा किया।
2: जी सर, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। सो भाई ये थे हमारे प्यारे से कमल नयन जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया और किस तरह से इन्होंने कहा कई बार जब हार मानते रहो तो जीत हो जाती है। एंड ये वैसे तो हम शायद इस पे हंस सकते हैं, लेकिन ये बात सच है, ये कई बार एकदम हुआ भी है ऐसा कि कई बार हार मानते मानते जीत हो जाती, यानी जब आपको लग जाता कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उस वक्त कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। सो फिलहाल मुझे लगता है चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
3: रिवांशी पांडे।
0: हाँ हाय रिवांशी, कैसी हैं आप?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बस हम ही बताएं, कोई और ना बताए। जी हम बहुत अच्छे हैं।
3: तो कितने अच्छे हैं
0: भाई? 2 घंटे के लिए तो बहुत अच्छे हैं, जब तक बाहर खेलने वाले हम भी।
3: तो 2 घंटे के लिए ही कितने?
0: 2 घंटे के लिए इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बड़ी बात करेंगे तो इंसान कहेगा यार इतना तो टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो 2 घंटे में जब हम
3: इंतजार बहुत करवाया, मैं बहुत देर से कॉल ट्राई कर रही हूँ पर मेरा कॉल ही नहीं लग रहा था।
0: कॉल नहीं लग रहा था? ओहो, लेकिन लग गया, लग हाँ। गया।
3: क्योंकि मैं डिनर हो गई।
0: वाओ क्या बात है, क्या बात है। So, बहुत आपको मुबारकबाद विनर होने के लिए, और जाते जाते अगर आपकी कॉल लग गई तो सच में ये आपके लिए अच्छी बात है, ये
3: बहुत अच्छा है।
0: So, फटाक से बात भी बता
3: दी। आने वाले की यादें रहती है तो फिर जाने वाले की। बीच वाले तो कभी कभी भूल भी जाते हैं।
0: नहीं, बीच वाले हमारे देखिए कमल जी कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, उनको कभी नहीं भूलते हैं।
3: हाँ कमल भैया तो बहुत अच्छी बातें करते हैं।
0: और बादल भैया
3: वो भी अच्छी बातें करते
0: और अंबर भैया
3: और अविनाश भैया आए थे वो भी बहुत अच्छी बातें किए थे कमेंट्री करके।
0: सविता जी
3: वो तो बच्चे वाली आवाज निकालती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: अच्छा, और ज्योति
3: और अंबर तो सीधा ऊपर ही दिखते रहते हैं।
0: अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी को आपने सुना। सो रेवांशी कौन सा गेम खेलेंगे अगर आप घर के बाहर हैं तो?
3: सर वैसे तो मैं बहुत गेम खेलती हूँ ना, लेकिन मैं घर के बाहर रहती हूँ, जब अकेले रहती हूँ तो जो एक से खेलते हैं ना, एक पैर उठा के और एक पैर से चल के, वो मैं बहुत खेलती हूँ।
0: इक्कल दुक्कल बोलते हैं उसे।
3: हाँ, और पता सर मैं वो गेम बहुत खेलती थी, अपने स्कूल में भी बहुत खेलती थी। तो पता क्या होता था कि वहाँ पे एक दीदी थी ना तो वो मेरी ईंट जो उठा के छत पे फेंक देती थी।
0: अरे रे रे।
3: तो मैं क्या करती थी, सीढ़ी भी नहीं थी तो मैं खिड़की पे चढ़ के मैं छत पे जाते थे, उसको उतार के लाती थी।
0: भैया ये खिड़की पे चढ़ने वाले दूसरे हमको मिले हैं सृष्टि के बाद।
3: और पता है सर मैं पेड़ पे भी बहुत चढ़ती हूँ, और मेरे यहाँ घर बन रहा था तो मैं चढ़ के वहाँ से जंप कर रही थी, और एक बार तो चोट भी बहुत ज्यादा लग गई थी नाक में और मुंह से खून निकल रहा था, इतनी चोट लग गई थी जंप किया था तो।
0: नहीं नहीं प्लीज ऐसा कोई जंप मत करे, माना कि सृष्टि चढ़ जाती है छत पे लेकिन हर आदमी नहीं चढ़ सकता, ये बात आपको मानना पड़ेगा।
3: नहीं सर पता है छत तो ऊपर गए और वहाँ से जंप किया तो नीचे, नहीं तो पत्थर रखे हुए थे कंकर पत्थर ढेर सारे ना, तो मैं उसी पे गिर गई।
0: अरे अरे अरे अरे अरे, अब आइंदा प्लीज ये सब मत करिएगा ठीक है?
3: लेकिन सर ये जंप ही करते हैं, मैं गेम भी खेलती हूँ, स्टेट टेबल पे गई हूँ खेलने तो जंप ही करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब
3: ना पता है बात, डांट बहुत पड़ी ना जब मैं बच्चों से, डांट करेंगे कि जंप ही करेंगे।
0: क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छा आपने बताया कि आपने जंप बहुत ज्यादा किया है, और अगर अब आपको मौका मिले तो आप इक्कल दुक्कल खेलना चाहेंगी उस 2 घंटे के लिए, राइट?
3: हाँ अभी भी खेलती हूँ घर के बाहर।
0: बहुत बढ़िया, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है,
3: एक पैर पे आगे जंप करना रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: ऐसे ही जंप करते रहिए, जो लोग सो रहे हैं उनके ऊपर ऊपर से निकलते रहिए, अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म 1 नंबर से 2 नंबर पे सीधे कूद के जाइए, क्या करने के लिए चढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच रिवांशी, थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये रिवांशी थी, ये भी बहुत प्यारी सी बातें कर रही थी और बहुत अच्छा लगा। फिलहाल अब चूंकि वक्त ने इशारा कर दिया है, कई कॉल्स हम नहीं ले पाए उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जब भी अगली बार हम करेंगे कॉल इन प्रोग्राम, उसमें प्लीज़ ज़रूर मिलाइएगा। और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी बातें करने वाले हैं। एक बार वापस से जिन लोगों ने मुबारकबाद दी है सुमित्रा आंटी को, उनके जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ख़ुद भी आकर के ऑफकोर्स सबको थैंक्स बोला है। और इस वक्त जो है इम्तियाज़ अहमद मौजूद है, आपका स्वागत करते हैं। दीपांशी तिवारी आपका भी, सुमित्रा आंटी आपका भी हम करते हैं, प्रीति जी है बहराइच से आपका भी, आपने कल दुक्कल खेल बोला है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से आपका भी शुक्रिया, आई लव गोंडा के नाम से आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए चैट बॉक्स में, आए आपने फ्रिक्वेंसी से सुना, आपने रेडियो गार्डन से सुना, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल अब वक्त हो रहा है आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त लेने का। सुबह बने रहिए अपने गोंडा FM पर और एंजॉय करते रहिए संडे स्पेशल शो सिर्फ और सिर्फ आपके गोंडा FM पर।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने संडे स्पेशल शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी में। लेकिन भाई, स्वागत तो सबसे पहले होना चाहिए इसी प्रोग्राम की कर्ता धर्ता और इस प्रोग्राम की हम सब की दीदी गीता दीदी का।
4: तो सभी को पहले तो मेरी सुबह की बहुत प्यारी नमस्कार। और ये बताओ कि आज हम एक क्वेश्चन सोच करके आए थे कि आज हम तंग करके रख देंगे अदनान को।
3: हमें?
4: हाँ।
3: अभी हमने तंग किया है और लोगों को, अब आपको तंग करिए, ये बढ़िया।
4: तो आज बता सकते हो कि कौन सा डे है स्पेशल?
3: आज रेड डे है, क्योंकि आप रेड रेड पहन के आई हैं।
4: और अच्छा, रेड तो कपड़े दिख गए, और रेड क्या होता है?
3: और रेड सिंदूर होता है।
4: और
3: होली का कलर होता है।
4: और
3: तरबूज होता है।
4: और
3: लिपस्टिक होती है।
4: तो इसका मतलब आप बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू रहे।
3: नहीं, हमारे हाँ एक और चीज होती है, बहुत ज्यादा अहम होती है, पता है क्या? रेडियो ज्ञानस्थली के लोगों का कलर भी लाल और काला है। उसमें भी लाल है, अभी याद आया, यही था ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बता दूं कि जो हमारे रग रग में दौड़ रहा है, जो आपके रग रग में दौड़ रहा है, और जो सभी के रग रग में दौड़ रहा है, उसका रंग क्या होता है?
3: देशभक्ति। क्या?
4: जी नहीं।
3: अच्छा।
4: वो होता है हमारा ब्लड।
3: ओ,
4: आज रक्तदान डे है, रक्तदान दिवस है आज। मालूम है आपको, इतना अहम दिन कि जो दूसरों की जान बचा सकता है, वो दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो आज तो मैं, आपने, आपको तो पता ही नहीं है, मैं तो सीधे रक्तदान करके आ रही हूँ।
3: अरे, तो ये रक्तदान में करने पे ऊपर ऊपर रक्त का है आ गया सब। सारा रक्त तो बाहर निकला।
4: रक्त लाल रंग का होता है, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं लाल कपड़े पहनूंगी।
3: क्या बात है, मतलब थीम फॉलो कर रहा है।
4: बिल्कुल। तो अच्छा लगता है ना, किसी का जीवन बचाना रक्त दे करके,
3: इसी बड़ी बात
4: है ना?
3: सकती है। बिल्कुल। और क्या?
4: और बहुत आज हमारे गोंडा के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मिले थे, जहाँ रक्तदान हो रहा था हॉस्पिटल में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसको कहते हैं सच्ची देशभक्ति।
3: बिल्कुल सही बात है,
4: ये भी देशभक्ति है कि अपने लोगों की जान बचाना। इससे बढ़ के और कौन सा दान हो सकता है?
3: सही बात है, क्योंकि आए दिन जिस तरह की घटनाएं होती हैं या बीमारियां होती है, उसमें रक्त की ही जरूरत होती है।
4: और मालूम है, एक आज एक बेटी के पिताजी थे, वो बहुत फपक फपक कर रो रहे थे, क्योंकि उनका जो ब्लड ग्रुप था वो ओ निगेटिव था, जो रेयर ग्रुप होता है, हाँ। तो बेचारे बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की जान बचा लीजिए कोई। तो यही गोंडा के थे, मुझे तो नाम याद नहीं है, उनका भी ब्लड ग्रुप शायद ओ निगेटिव ही था, तो उन्होंने उनको दिया।
3: अच्छा।
4: तो समझिए कितना बड़ा उन्होंने पुण्य का काम किया, कि एक पिता के लिए उसकी बेटी की जान से ज्यादा और क्या चीज होगी।
3: सही बात,
4: वो उन्होंने बचाया।
3: बहुत प्यारी बात बताई आपने। और इस तरह के लोग जो ऐसी बातों को सुन करके और कहीं ना कहीं रक्तदान के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी हमारे किसी रियल हीरो से कम नहीं होता।
4: बिल्कुल। और करना चाहिए, इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है कि बॉडी को बहुत ही वीकनेस आ जाएगी। कई कई तो ऐसे हैं कि पूरे साल में वो कई सैकड़ों बार वो दान करते हैं, इवन मतलब हर 2-3 महीने पर वो चले ही जाते हैं रक्तदान करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं।
3: बिल्कुल हैं। और असल में नुकसान तो आपने कहा था नहीं होता है, मैं ये कहूँगा बल्कि फायदा होता है,
4: फायदा होता है,
3: फिल्टर हो
4: फिल्टर
3: जाता
4: हो जाता है हमारी बॉडी
3: बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है और आज चूंकि रक्तदान दिवस है
4: तो इसलिए भी हम सभी को इस पर भी बधाई देते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और सब सबका जीवन सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
3: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही दीदी ने। सो दीदी आज स्टोरी में क्या लाई हैं आप?
4: अब आज स्टोरी में बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं बताने वाली हूँ सत्य की हमेशा विजय होती है, उस पर एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है हमारे पास और जो बहुत प्यारी है, बच्चों को बहुत प्रेरित करेगी। तो अगर आपकी इच्छा हो तो सुना दे।
3: इच्छा नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि आप उसको सुनाइए।
4: तो चलिए, बहुत पुरानी कहानी है ये। एक बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक बूढ़ा और एक बुढ़िया दंपत्ति रहते थे और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था ज्ञानचंद। परिवार बहुत ही गरीब था लेकिन ईमानदारी और मेहनती पूरा परिवार था। दुर्भाग्य से जब ज्ञानचंद बहुत छोटा ही था तभी जो है उनके माता पिता का अचानक निधन हो गया। अनाथ होने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जीवन यापन की थी। कैसे वो इतना छोटा बच्चा अपने जीवन यापन करे, कहाँ जाए, क्या करे? तो गांव के कुछ दयालु लोग थे, उसकी सहायता करने के लिए आगे आए और सहायता मतलब बड़े प्रेम से करनी चाहिए, परंतु ज्ञानचंद जो था और जिसके मतलब रग रग में स्वाभिमान बसा हुआ था, वो किसी पर बोझ बनना स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैं स्वयं काम करूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा, और यह ऐसा निश्चय करके वो एक धनी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और नौकरी मांगता है। तो उस व्यक्ति ने उसे खाने कपड़े के साथ साल में केवल 3 रुपये की मजदूरी पर काम पर रख लिया। ज्ञानचंद ने संतोषपूर्वक वह नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि तो उसे तो अपने पेट पालने की इच्छा थी, पेट पालने की मजबूरी थी। सो उसने पूरी लगन से उस मतलब व्यापारी के घर काम करना पसंद किया और वहाँ लगन से वो काम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 सालों तक उसने बड़ी ईमानदारी, बड़ी ही मेहनत से उस व्यापारी की सेवा की, और जब उसे अपने गांव के लोग, अपने गांव का बचपन और उसके अपने साथी याद आने लगे, तो उसने कुछ महीनों की छुट्टी मांगी उस अमीर व्यक्ति से। तो उस मालिक ने उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसको 3 वर्षों की मजदूरी के पैसे दे दिए। वो पैसे लेकर ज्ञानचंद अपने गांव की ओर तेजी से बढ़ चला। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ा कमज़ोर व्यक्ति दिखाई दिया। वो इतना कमज़ोर था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने विनती करते हुए उससे कहा कि बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक था, अन्यथा मैं मर ही जाऊंगा भूख से। ज्ञानचंद के पास खाने की तो कोई वस्तु थी नहीं, तो सो उसने दया भाव से कहा, बाबा मेरे पास तो केवल मेरी ये मेहनत के कमाई के 3 रुपए ही हैं, आप इन्हें ले लीजिए और कुछ खाकर अपनी भूख मिटाइए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने सारे मेहनत के पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें उगाईं और उसका रूप बदल गया। ये देख करके ज्ञानचंद एकदम से घबरा गया, लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने अपनी सारी कमाई बिना किसी लालच के मुझे दान में दे दी। अब इसके बदले मैं तुम्हें 3 अनमोल उपहार देता हूँ। वह ज्ञानचंद को अपने घर ले गया और उसने उसे एक जादुई सारंगी दी और कहा कि जब भी तुम इसे बजाओगे तो इसे सुनकर लोग नाचने लगेंगे। फिर उसने एक तीर और धनुष भी दिया उसे और कहा कि इसका निशाना अचूक है, कभी नहीं चूकेगा, और ये तीर निशाना लगाकर तुम्हारे पास फिर से वापस लौट आएगा। अंत में उसने एक और सच्चाई का वरदान देते हुए उससे कहा कि तुम जो कहोगे लोग उसे सच मानेंगे। इतना कर कह कर कि वो जो व्यक्ति था रहस्यमय व्यक्ति अचानक वहाँ से गायब हो गया। ज्ञानचंद्र वो सारा सामान लेके सारंगी तीर कमान लेकर के आगे कुछ ही दूर बढ़ा था तो उसने देखा कि एक व्यापारी पेड़ के नीचे बैठा है और पास के पेड़ पे एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है। व्यापारी ने कहा, काश कोई इस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे अच्छा खासा इनाम देता, अच्छी खासी धन दौलत दे देता। ज्ञानचंद ने अपना जादुई तीर चलाया और सीधा चिड़िया को लगा और वह उस झाड़ी में गिरकर फड़फड़ाने लगी। खुशी में उसने सारंगी बजानी शुरू कर दी। व्यापारी चिड़िया लेने झाड़ी में जैसे ही घुसा तो सारंगी की धुन पर उसने नाचना शुरू कर दिया। अब इतना नाचा कि उसके सारे कपड़े फट गए और उसका शरीर जगह जगह घायल हो गया, उसमें कांटे चुभ गए, खरोंच आ गई। उसकी दयनीय हालत देखकर ज्ञानचंद ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। व्यापारी ने खुश होकर उसे खूब सारे रुपयों से भरी एक थैली दे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने दिए हुए रुपयों की याद आई और उसका मन लालच से जाग उठा। वह ज्ञानचंद के पीछे पीछे दौड़ा और चिल्लाने लगा कि ये लड़का मेरे रुपए छीनकर भाग रहा है, ये लड़का मेरे रुपयों की थैली चुराकर भाग रहा है, पकड़ो इसे, पकड़ो उसे। अब गांव वालों ने ज्ञानचंद को पकड़ लिया और थाने ले गए। थानेदार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया। तभी ज्ञानचंद ने अपनी सारंगी बजानी शुरू कर दी। सारंगी की धुन सुनते ही वहाँ के थानेदार, वहाँ के सिपाही और जितने भी लोग वहाँ पे उस समय मौजूद थे खूब नाचने लगे। और जब सब थक कर चूर हो गए तब थानेदार ने विनती की कि वो सारंगी बजाना बंद कर दे। तो ज्ञानचंद ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और इसके बाद उसने पूरी घटना उस सिपाही को सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर वो सिपाही जो थानेदार था उसने व्यापारी से पूछताछ की। अब डर के मारे व्यापारी ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया। तब थानेदार ने उसकी पिटाई भी करी और ज्ञानचंद की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश भी हुआ। उसने व्यापारी की झूठी शिकायत करने के अपराध में तुरंत जेल में डाल दिया और अपनी ओर से भी ज्ञानचंद को एक थैली रुपयों की भेंट की। इस तरीके से ज्ञानचंद खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने मेहनत, ईमानदारी और दया के बल पर सम्मान और सुख प्राप्त किया। इस प्रकार उसकी बुद्धिमानी और सच्चाई की जीत हुई। तो इसे कहते हैं सत्यमेव जयते, यानी जिस दया है अगर आपके अंदर, ईमानदारी है तो आप और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो अंत में कैसी भी परिस्थितियां हों आपकी विजय जरूर होगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी?
3: मुझे तो बहुत पसंद आई ज्ञानचंद की ये स्टोरी। अब भाई हमारे श्रोताओं को कैसी लगी ये जरूर बताएंगे। मनी लिखते हैं गुड मॉर्निंग,
4: वेरी गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग। और कमल नयन जी लिखते हैं, गीता दीदी आप बहुत महान हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। गुड आफ्टरनून दीदी, अदनान सर को भी सलाम। जी, आपको भी
4: मैं
3: सलाम।
4: तो कहती हूँ आपको भी हस्त पुष्ट और खुश रखे, आप 100 साल तक जीवित रहे।
3: 100 साल ज्यादा तो नहीं हो जाएगा कमल जी? चलिए बढ़िया, आप मतलब तो स्वस्थ रहिए।
4: 200 साल भी हो सकता है।
3: नहीं नहीं, ये सच में ज्यादा हो जाएगा। कैसी लगी स्टोरी आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक गीता दीदी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के आ रही हैं इस प्रोग्राम में।

0: घर नानी के घर जाए के,
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाए के,
0: हलवा पूरी मीठी चूरी और जलेबी खाए के, नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाए के, नानी के घर जाए के, नानी नानी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: Wow, look at that! Let's count those tractors. One.

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: तो जी हाँ, हम आ गए हैं अपने हम्प्टी डम्प्टी के मंच पे ढेर सारे बच्चों को लेकर के। और ये हमारे बच्चों का एक प्यारा सा प्लैनेट है और ये बच्चे इस प्लैनेट के छोटे छोटे सितारे हैं। तो आज ये सितारे यहाँ जगमगा रहे हैं और बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं, अपनी जितनी भावनाएं हैं वो सब बताने वाले हैं कि दीदी हम क्या करने वाले हैं, दीदी मैंने आगे का क्या प्लान फ्यूचर किया है। ढेर सारी इनकी कहानियां हैं, ढेर सारी इनकी बातें, मैं तो सुनते सुनते थक जाती हूँ। जैसे कि हमारे साथ हमारी छोटी सी नन्नी मुन्नी कौन है, सानिध्या है। और सानिध्या बहुत ढेर सारी बातें हमसे करती है और कभी कभी तो मैं इसको डांट भी देती हूँ कि भाई ये बक बक बक बक बंद करो, मेरी भी सुनो। लेकिन कहती नहीं दीदी, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। तो आज क्या सुनाओगी दीदी को, क्या पकाओगी दीदी को?
1: सरस्वती वंदना।
0: सरस्वती वंदना, तो देखो आज ये सरस्वती वंदना सुनाने वाली है और साथ ही साथ हमारे साथ एक और पक पक करने वाली अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम सानवी है।
0: सानवी, देखिए बहुत बातूनी लड़की है, आप लोग भी सावधान रहिएगा, बहुत सारी बातें करती है। और साथ ही साथ में हमारे साथ हैं हमारे ऋषभ जी और साथ में है अतुल जी, सत्यम है हमारे साथ, अथर्व है और ढेर सारे बच्चे, कितने नाम गिनाऊं। लेकिन अभी फिलहाल आ गया है सानिध्या का नंबर, क्योंकि ये सुनाने वाली है सरस्वती वंदना। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले इस वंदना बहुत जरूरी होती है। सो हमारी सानिध्या सुना रही है एक प्यारी सी सरस्वती वंदना और वो भी संस्कृत में। भाई तो शुरू हो जाइए सानिध्या।

0: सारे नाम।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस, सारे बच्चे ताली बजाएंगे। तो देखिए हमारे इस हमडीड अपनी प्लैनेट के छोटी सी सितारा या छोटी सी स्टार यानी कि हमारी सानिध्य ने अपनी रोशनी बिखेर दी है और अब चलते हैं हम शिवांगी की ओर, शानवी की ओर। और शानवी आज क्या सुनाने वाली हो?
2: ये चमक ये दमक।
1: ये चमक ये दमक ये क्या है?
2: ये एक कहने तो एक गीत है या फिर भजन है जो कि
1: अच्छा भजन है, ईश्वर की प्रार्थना है।
2: हाँ।
1: तो चलिए सुनते हैं एक बार फिर से ईश्वर की प्रार्थना, हमारी शानवी कर रही हैं और बहुत प्यारा सा ये गीत गाती हैं और देखते हैं कि आज ये किस तरीके से हम सब का एंटरटेन करने वाली हैं। बहुत सारा इनके पास कंटेंट है आज।
2: ये चमक

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बच्चों तालियां बजा दो जरा। तो हमारी शानवी ने इतना प्यारा सा गीत प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम उनको बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। और चलते हैं हम अपने अगले सफर पर, और हमारे साथ छोटे से भाई। देखिए ये पिछली बार आप कहाँ थे, हमको हमको तो आपसे झगड़ा करना है, हम तो भूल ही गए कि हमें झगड़ा भी करना था। शशकर
1: दीदी मैं गांव चला गया था।
0: गांव चला गया था, अच्छा हमको सबको छोड़ करके आप गांव चले गए। कैसे चले गए आप गांव? गांव में क्या क्या किया आपने?
1: जी घूमे और फिर घर आ गए।
0: घूमे और फिर घर आ गए। भाई गांव में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बड़े बड़े आम के पेड़ होंगे, तालाब होंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर पंछी होंगे। क्या क्या किया भाई, हम सब सुनना चाहते हैं। हम बेताब हैं कि हम तो गांव नहीं जा पाए हैं, लेकिन आप गए हैं तो आप आंखों देखा वर्णन तो करिए।
1: जी हमने बहुत सारी पक्षियों को देखा और आम के बाग में गए।
0: आम खाए?
1: जी दीदी।
0: चोरी से खाए या ऐसे तोड़ के खाए?
1: तोड़ के खाए।
0: वैसे चोरी से आम खाने में बहुत मजा आता है ना। हम तो कभी कभी अपने गांव जाते थे बचपन में, और हमारा जो बागवान था वो कहता था जो गिरे वही उठाना, पेड़ पे मत चढ़ जाना। पेड़ पे मतलब बहुत डांट, कि भाई हम लोग छोटे थे कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए बहुत डांट पड़ती थी। तो हम लोग चोरी से चढ़ जाते थे एकदम उसकी आंख बचा करके, और चुपचाप पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, कहीं ना कहीं से आम भी तोड़ लाते थे। वो आम खाने में बहुत मजा आता था। तो आप लोगों ने कभी चढ़ा है, पेड़ पे चढ़ी हो?
2: मैं पेड़ पे चढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन हमने पेड़ से आम जरूर तोड़े, मतलब पत्थर फेंक फेंक के।
0: अच्छा पत्थर मार करके आम गिराए। तो आज क्या सुना रहे हैं शशकर जी आप?
1: दीदी आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ।
0: कौन सी कहानी है?
1: दो घड़े और किसान।
0: दो घड़े और किसान?
1: जी दीदी।
0: तो भाई ये घड़े वाली कहानी तो हमने कभी नहीं सुनी है, और हम चाहते हैं कि आप सबको सुनाइए और जरा मन लगा करके सुनाइए। कोई मॉरल भी छिपा है इस कहानी में?
1: जी दीदी।
0: अच्छा तो तब तो बहुत अच्छी कहानी होगी।
1: एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज नदी से दो बड़े घड़ों में पानी भरकर अपने घर लाया करता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा थोड़ा टूटा था, जबकि दूसरा घड़ा एकदम सही सलामत था। हर रोज जब किसान घर पहुंचता तो सही घड़े में पूरा पानी बचता था, लेकिन टूटे हुए घड़े से पानी रास्ते भर टपकने के कारण उसमें केवल आधा पानी ही बचता था। ऐसा 2 साल तक लगातार चलता रहा। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा काम करता है, लेकिन बेचारा टूटा घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह अपनी कमी के कारण किसान को पूरा पानी नहीं दे पाता। एक दिन टूटे घड़े से रहा नहीं गया और उसने नदी के पास किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है। किसान मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने आज रास्ते में ध्यान दिया? नदी से घर लौटते समय रास्ते के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में कितने सुंदर फूल खिले हुए थे, जबकि दूसरे घड़े की तरफ की जमीन सूखी थी। घड़े ने कहा, हाँ मैंने देखा तो था। किसान ने समझाया, मुझे तुम्हारी कमी के बारे में हमेशा से पता था, इसलिए मैंने रास्ते के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज घर लौटते समय अनजाने में ही सही पर उन्हें सींचते रहे, तुम्हारी वजह से ही आज यह रास्ता इतना सुंदर बन पाया है और मैं इन सुंदर फूलों को भगवान के चरणों में चढ़ा पाता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो क्या यह सुंदरता मुमकिन थी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ या खामियाँ होती हैं, लेकिन यही कमियाँ हमें एक दूसरे से अलग और अनोखा बनाती हैं।
0: जी हाँ, तो देखिए घड़े में थोड़े से होल होंगे, छेद होंगे, कहीं से थोड़ा टूटा होगा तो उसका पानी रास्ते में गिर जाता था और वो पानी व्यर्थ नहीं जाता था। जो छोटे छोटे बीज गिर जाते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, वो पौधे फिर से अंकुरित हो जाते हैं और उसमें सुंदर फूल खिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई अगर किसी में शारीरिक अपंगता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी बहुत कुछ कर सकता है ना। बहुत से देखा होगा कि लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो क्या वो बेकार है इस दुनिया में?
3: नहीं दीदी,
0: है ना, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
3: कहते हैं जो भी धरती पे है वो किसी ना किसी काम से जरूर आया है।
0: बिल्कुल, उसका अपना काम है, वो कुछ ना कुछ करता है,
3: वजह से जरूर आया।
0: हाँ, तो भाई बहुत अच्छी कहानी थी तुम्हारी, बहुत ही मॉरल से भरी हुई थी। और हम चलते हैं ऋषभ की, और ऋषभ आज आप क्या सुनाएंगे?
3: दीदी कहानी,
0: आप भी कहानी सुनाएंगे?
3: जी दीदी,
0: आप भी, आप कहानी सुन रहे हो ना, अच्छी लग रही है कहानी?
4: जी दीदी।
0: तो चलो, हमारे बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं और हमारे बच्चे कहानी सुनाना भी चाहते हैं।
3: गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही रोहन बहुत खुश था। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद उसे छुट्टी का बेसब्री से इंतजार रहता था। इस बार उसके माता पिता ने तय किया कि वह गांव जाकर दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। गांव पहुंचते ही रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर हरियाली, आम के पेड़ और पक्षियों की मधुर आवाज़ों से उसे बहुत अच्छी लगी। सुबह वह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जाता और नहर के किनारे खेलता था। दादी रोज उसे नई नई कहानियाँ सुनाती और दादाजी खेती बाड़ी के बारे में बताते। एक दिन रोहन ने दादाजी के साथ बगीचे में आम तोड़े। उसने पहली बार पेड़ के ताजे आम खाए जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। शाम को सभी बच्चे मिलकर खेत खेल खेलते और रात में खुले आसमान के नीचे तारे को गिनते। रोहन ने गाँव में रहकर प्रकृति से प्रेम करना और बड़ों का सम्मान करना सीखा। छुट्टियों कब बीत गई पता ही नहीं चला। जब शहर लौटने का समय आया तो रोहन उदास हो गया, लेकिन वह अपने साथ ढेर सारी मीठी यादें और नए अनुभव लेकर वापस लौटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए यही तो खूबसूरती है गांव की, है ना। गांव में जाओ तो गांव का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मजा होता है। और दादी होती हैं और बाबा जी होते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, नए नए तरीके के खाने व्यंजन होते हैं जो हमको खिलाए जाते हैं। और गांव में तो घूमना फिरना एक अलग ही मज़ा देता है, है ना। बहुत से बच्चे हम तो देखते हैं कि तालाब में आ जाते हैं और तालाब में खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भाई भाई थोड़ा सावधानी से खेलना चाहिए। पानी में खेलना गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी चाहिए, है ना, कोई हादसा ना होने पाए।
3: जी दीदी,
0: तो कहानी तुम्हारी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मॉडल से भरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मज़ेदार कहानी थी कि गांव जा कर के हम इसी तरीके का अनुभव लेकर के वापस अपने शहर लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, और यहाँ आकर के भी हम अच्छे काम ही कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब चलते हैं फिर से सानिध्या की ओर। सानिध्या क्योंकि इतना सारा पुलिंदा लेकर के आती है और वो हमको आंख बहुत दिखाती है, हम तो उसकी आंखों से डरते हैं। वो यूं करके मेरे को देखती है और जैसे कह रही हो दीदी अब मेरा नंबर आने वाला है, तो मैं तो डर जाती हूँ और बाद में वो मुझे मारती भी है। ये मुझे मारती है, ऐसे कहती है मेरा ये छूट गया, मैंने ये नहीं सुनाया, तो सुना दो जल्दी से। तो क्या सुनाओगी
4: दीदी? कहानी।
0: अरे कहानी का सिलसिला चल पड़ा है, तो चलिए कहानी के सफर में हमारी सानिध्या का भी मन कर गया कि वो कहानी सुनाए। मैं तो सोच रही थी कि कोई गीत सुनाने वाली है, पर नहीं, वो भी कहानी सुनाने वाली।
4: एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे, उनके पास बहुत ही कम जमीन थी। मोहन रोज सुबह स्कूल जाता और शाम को खेत में पिता की मदद करता। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।
0: स्कूल में क्या हुआ?
4: विज्ञान प्रदर्शनी।
0: विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अच्छा,
4: ने बच्चों से था जो भी साथ कोई उपयोगी चीज बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। मोहन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएगा जो गांव में काम आ सके।
0: ये ये तो उसने अच्छा सोचा।
4: उसने कई दिन मेहनत की और पुराने सामानों से एक सस्ता पानी शुद्ध करने वाला यंत्र बना दिया।
0: वाओ।
4: प्रदर्शनी के दिन मोहन ने जब अपना मॉडल दिखाया तो सब हैरान रह गए। प्रधानाचार्य ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे पहला पुरस्कार दिया। पुरस्कार के साथ मोहन को कुछ पैसे भी मिले। मोहन वह पैसे के लिए अपने खर्च ना करते डाउन के पास वाले कुएं की सफाई में लगा दिए। क्योंकि गाँव के लोग अक्सर बीमार पड़ते थे। कुछ ही दिनों में कुआं साफ हो गया और सबको स्वच्छ पानी मिलने लगा। गाँव के लोग मोहन की ईमानदारी और परोपकार भावना में बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने मोहन की पढ़ाई के लिए मिलकर सहायता की। समय बीता और मोहन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। वह एक सफल वैज्ञानिक बना और उसने गाँव के विकास के लिए कई नए नए आविष्कार बनाए। वह हमेशा कहता था, सच्ची मेहनत और नेक नियत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए उसने ठान लिया था ना कि उसके गांव के लोग बीमार ना पड़े, क्योंकि वहां का पानी कैसा था, दूषित था। इसलिए वो चिंतित था कि ये पानी कैसे शुद्ध किया जाए। इसीलिए उसने एक आरओ जैसी मशीन बना लिया जिससे कि शुद्ध पानी मिल सके, और साथ ही साथ जो कुआं था और जो पैसे उससे इनाम स्वरूप मिले थे उसको उसने कुएं को साफ कराने में लगा दिया। देखिए कितना अच्छा काम किया। और फिर गांव के लोग बीमार, यानी उनका पैसा बचा और वही पैसा उन्होंने मोहन की पढ़ाई पे लगा दिया, जिससे कि वो एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई है, सानिध्या को मेरा प्रणाम। सानिध्या इतनी अच्छी कहानी कहाँ से लेके आती हो। तो चलो चलते हैं हम अगला सफर लेने से पहले हम लिख लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आप लोगों से।

0: पम तारा रम पम। एक बार फिर से तारा रम पम होने जा रहा है हमारे इस बच्चों के प्लानेट यानी कि सारे स्टार हमारे साथ है। हमारा पूरा स्टूडियो इन स्टारों से भरा है, जगमगा रहा है। तो फिर से किसकी ओर चलते हैं? अकड़ बकड़ करना पड़ेगा क्या? तो अतुल जी आ रहे हैं हमारे बीच में, बोले नहीं दीदी अकड़ बकड़ नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो अतुल भाई क्या लेकर के आए हैं आप अपने दोस्तों के लिए?
1: आज कहानी है दीदी।
0: अरे भाई कहानी का मतलब ये क्या कहानी कहानी कहानी, कितनी कहानियां आज हो जाएंगी। हर बच्चा जो है हमें कहानी सुना रहा है, ये कहानी का सेट हो गया है। तो चलो एक बार फिर से सुन लेते हैं अतुल की भी कहानी। और अतुल क्या आपकी कहानी का विषय क्या है?
1: रक्तदान दिवस पर।
0: अरे वाह, हाँ तो ये तो मैं भूल ही गई थी कि रक्तदान, आज रक्तदान दिवस है और ये कितना महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। तो चलो भाई बातें बाद में करते हैं, पहले रक्तदान दिवस पे और हम अतुल कुछ लेके आए हैं हमारे लिए, कोई कहानी लेकर के आए हैं और कहानी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही प्रेरणादायक होगी कहानी, मेरा ऐसा विश्वास है।
1: एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मिलनसार था।

0: 48 घंटे में फिर बन जाता है। एक बार गांव की एक 8 साल की बच्ची मीरा को डेंगू हो गया और उसे तुरंत खून की ज़रूरत पड़ी। शहर का अस्पताल दूर था। अर्जुन ने तुरंत अपना खून दिया और मीरा की जान बच गई। मीरा की माँ रोते हुए बोली, तुमने हमारी बेटी को नया जीवन दान दिया है। अब गांव में हर रक्तदान दिवस पर सिर्फ अर्जुन नहीं बल्कि 50-60 लोग खून देते हैं। लोग कहते हैं रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इसमें तुम अपना एक हिस्सा किसी और को जीवन देने के लिए दे देते हो। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मेरे पिता नहीं बच सक पाए, लेकिन अब मैं किसी और के पिता बेटे बेटी को बचा सकता हूँ। इस कहानी से दीदी हमें यह सीख मिलता है कि छोटा सा कदम किसी के लिए जीवन बदल सकता है।
1: बहुत अच्छी कहानी थी, मतलब तुमको हम दिल से सैल्यूट करते हैं और इतनी अच्छी कहानी सुनाई। आज सुबह सुबह मैं भी देख रही हूँ, मैंने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है?
0: रेड कलर
1: की। रेड कलर की क्यों पहना है?
0: क्योंकि आज रक्तदान दिवस है
1: और रक्त का रंग भी कैसा होता है?
0: लाल।
1: तो आज मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल गई थी रक्तदान करने के लिए, तो वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग आज रक्तदान कर रहे थे। आज तो जगह जगह पर शिविर भी लगे हुए हैं, पर हॉस्पिटल पे मैंने देखा कि बहुत रौनक थी, बहुत सारे लोग आए थे और वो रक्तदान कर रहे थे। कितना अहम दिन है हम सब के लिए, क्योंकि कहा ना कि अगर हम एक यूनिट रक्तदान करते हैं तो उससे 3 लोगों की जान बच सकती है। और इससे बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं कि बहुत नुकसान होता है, बहुत वीकनेस आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बल्कि और अच्छा लगता है कि जैसे आपने किसी को रक्त दान किया है तो आपको एक अंदर से खुशी का अनुभव होता है, वो खुशी आपके रक्त को और जल्दी बढ़ा देती है, यानी कि 48 घंटों में फिर से हमारा रक्त उतना ही तैयार हो जाता है। और इसके अलावा एक काम और होता है कि रक्त हमारा जो पुराना होता है वो निकल जाता है, फिर से नया रक्त बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए ये महादान होता है, रक्तदान क्या है? महादान होता है। और महादान क्यों? क्योंकि ये दूसरों की जान बचाता है
0: जी।
1: तो आज मैं बताऊँ एक घटना कि एक हॉस्पिटल में एक बच्ची चिल्ड्रन वार्ड में काफ़ी दिनों से सर्वाइव कर रही थी, उसको कुछ ऐसी बीमारी है कि उसका रक्त तो उसका बन नहीं रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको चढ़ाना पड़ेगा। और उसका मालूम है ब्लड ग्रुप कौन सा था? ओ निगेटिव, रेयर ग्रुप था। तो इसके पिताजी बहुत रो रहे थे। वहाँ पर एक अपने ही गोंडा के हैं, अब मैंने उनका नाम नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ करके कहा कि आप परेशान मत होइए, मेरा भी जो है वो निगेटिव है, मैं इसको दूंगा अपना। और उन्होंने शायद उसको ब्लड दिया और हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो ऐसे ऐसे महान लोग हैं हमारे यहाँ। मुझे लगता है आप लोगों के बीच से बहुत इंस्पायर होने की ज़रूरत है। और कभी भी कहीं भी किसी को अगर रक्त की ज़रूरत पड़े तो आप लोग पीछे मत हटिएगा। आज हम देखते हैं कि हमारी ही लापरवाही से कितनी मतलब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें कितना सारा लोगों का ब्लड बह जाता है। अक्सर करके क्या गलती होती है कि हेलमेट लेकर के नहीं चलते और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की होता है। अगर गिर गए तो सबसे पहले क्या फूटता है? सर ही फूट जाता है और उसे ढेर सारा ब्लड बह जाता है। कोई और अंग इतना टूटे तो इतना तेजी से ब्लड नहीं बहता, लेकिन अगर सर फट गया है तो बहुत तेजी से ब्लड हमारा बह जाता है। ऐसे समय में क्या है कि उसको तुरंत ही खून की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग ऐसे ही करें कि नहीं नहीं भाई हम अपना क्यों देंगे रक्त, तो उसकी किसी की भी जान सुरक्षित नहीं बचेगी। तो हम लोग आज एक सौगंध लेते हैं कि कभी भी कहीं भी किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम वहाँ उपस्थित हैं तो ये नेक काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों, क्या कहते हो बच्चों? जरा जोर दीदी। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमारे अतुल ने और मैं तो बहुत खुश हुई। अब चलते हैं हम, फिर मुझे अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा क्या? नहीं,
2: सत्यम को फाइनल कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए इसको।
1: तो चलिए सत्यम,
2: सत्यम को लॉक किया जाए।
1: हमारे सत्यम जी आ गए हैं और वो भी कुछ अच्छा ही सुनाने वाले होंगे मेरी ख्याल से। आज बता ही दो भाई, सबका सरप्राइज रहता, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। आज क्या बताने वाले हो?
3: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार।
1: ओ, एक और दिवस है आज।
3: आज नहीं दीदी, कल है।
1: अच्छा कल है, चलिए तो चलिए भाई बुजुर्गों की बात भी कर लेते हैं। और वो तो हमारे

0: ये बहुत ही अहम है क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं बुजुर्ग ही हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
0: दुर्व्यवहार दिवस भी होता है? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत बुरी बात है कि हम बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं करते, और ये तो हम
2: दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस
0: अच्छा नहीं करना चाहिए। चलिए,
1: इस दिवस का उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है
0: जी।
1: यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित किया है, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान और देखभाल मिलनी चाहिए। श्रोताओं, उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: कई बार बुजुर्गों को उपेक्षा, अपमान, आर्थिक शोषण या मानसिक परिणात्मा का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति बुजुर्ग दुर्व्यवहार कहलाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी, बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता दी। आज दुनिया के अनेक देशों में इस दिन की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। विश्व स्तर से जुड़े विभिन्न अध्ययनों के अनुसार दुनिया भर में बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव करते हैं। दुख की बात यह है कि ऐसे कई मामले कभी ना कभी सामने नहीं आ पाते, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं या अपने परिवार को परेशानी में डालना नहीं चाहते। हमारे भारतीय समाज में हमेशा से माता पिता और बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा रही है। मात्र देवे भवा पितृ देवे भवा का यह संदेश है, यही सिखाता है कि माता और पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में कभी कभी हम उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। आइए इस अवसर पर हम एक संकल्प लेते हैं कि अपने घर और समाज के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगे कि वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए केवल कुछ मिनट का साथ ही काफी रहता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सत्यम ने, बहुत सही विषय पर बात की है। और मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि जो परिवार की नींव है, जिनकी वजह से परिवार चल रहा है, हम अंत में आकर के क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कमा नहीं रहे, उनको उपेक्षित कर देते हैं। ये बात मेरे तो बिल्कुल बाउंस हो जाती है, समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग बता रहे थे कि हम गांव गए, हमारे वहाँ नाना जी हैं, दादा जी हैं, नानी जी हैं, दादी जी, उनसे कितनी अच्छी अच्छी सीख हम सब लेते हैं, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ क्या होती है, वो मॉरल कहानियाँ होती, ताकि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके
1: जी,
0: है ना। तो ये जो बुजुर्ग हैं हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों बता दें कि हमारे गोंडा में भी एक जो है वृद्धा आश्रम है, और मैं तो वहाँ अक्सर चली जाती हूँ, और जाना भी चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने सारे बुजुर्ग वहाँ पे उपेक्षित होकर के वहाँ शरण लिए हुए हैं। वहाँ उनका भोजन पानी संस्थाएं चला रही हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ उनको ऐड वगैरह वहाँ से मिलती है। तो जब उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं तो बिना आंसू आए मेरी आंखें मतलब मानती ही नहीं है, वो रो पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आज हमको जिनका सम्मान करना चाहिए उनको ही हम उपेक्षित करके अपने दरवाजों पर छोड़, और दरवाजे तक ही क्यों, हम तो उनको अनाथालय तक पहुंचा देते हैं कि अब उनकी हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों, जहाँ कहीं भी ऐसा देखो कोई दादी दादा ऐसे सड़क पे हैं, उनकी जितनी भी हो सके आप हमें सबको मिल करके मदद करनी चाहिए। कुछ नहीं वो हमसे मांगते हैं, ठीक है, थोड़ी सी हमारा अच्छा व्यवहार, थोड़ी सी हमारी मुस्कान, थोड़ा सा उनको सम्मान, बाकी उनको क्या चाहिए, दो रोटियां खाते हैं, क्या होती है आजकल, उनकी कुछ खुराक भी नहीं, बेचारे बस खाली ये समझते कि सबका साथ मिला रहे, हम सबके बीच में रहें, हम थोड़ा हंसें, हम थोड़ा मुस्कुराएं। क्या इतना हक भी नहीं है उनका?
1: है दीदी।
0: तो आज से क्या करना है, एक और वादा लेना है कि कोई अगर बुजुर्ग दादी हैं या दादाजी हैं, हमें उनकी अगर हो सके तो सहायता करनी है।
1: जी दीदी।
3: और सिर्फ हमें अपने ही घर के बुजुर्गों की नहीं सेवा करनी, हमें वृद्धाश्रम जाकर के भी जितने भी बुजुर्ग,
0: बिल्कुल जाना चाहिए। एक बार आप लोग जाइए, एक बार हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे और दिखाएंगे कि क्या समाज की सोर जा रहा है ना, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो इसीलिए तो हमारा विकास रुक जाता है, ठीक है ना। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी दीदी।
0: आज जो परिवार खंडित हो रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं, परिवार में बिखराव हो रहा है केवल इसी वजह से, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, होती रहेंगी। और फिर एक बार फिर से हम सानिध्या की ओर चल रहे हैं। सानिध्या क्योंकि हमको मालूम है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली अगर कोई बच्ची है तो सानिध्या है, क्योंकि वो हमको बहुत डरा के रखती है, इससे हमको बहुत डर के रहना पड़ता है। अब क्या सुनाएगी सानिध्या?
4: दीदी कविता।
0: कविता सुनाने वाली है, तो चलो भाई इनकी कविता सुन लेते हैं, है ना। तो चलो देर ना करते हुए जल्दी से कविता सुना दो।

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत प्यारी कविता सुनाई है भाई, मन खुश हो गया। तो चलो चलते हैं हम अथर्व की ओर, और अथर्व आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं।
1: तो जैसा कि दीदी अभी अतुल ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के ऊपर एक कहानी सुनाई थी,
0: जी।
1: तो आज मैं आपको वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा, मतलब वही लेकिन थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल में,
0: जी जी,
1: जो अभी तक लोगों को पता नहीं चला है उसके बारे में भी लोगों को बता दिया जाए। तो देखिए, हम लोग ब्लड डोनर डे तो हर साल 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 14 जून को ही ये डेट क्यों चुनी गई थी? इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल क्या था कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये कैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आज हम लोग की जो ब्लड ग्रुप है, जैसे कि किसी का ए है, बी है, ए बी है या ओ है। खैर, वैसे तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है।
0: वाओ वाओ, तो मैं ये तो तुम ए को भी दे सकते हो, बी को भी,
1: मतलब ये सारे डोनर, मतलब ये कॉमन डोनर है जो सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो
0: सर्वदाता,
1: तो जी हाँ। और एक महान साइंटिस्ट, अब मैं आपको उनका नाम रिवील करने वाला हूँ, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ये कैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की। और अगर इन्होंने ये डिस्कवरी ना की होती तो आज जो हम लोग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता करना।
0: बिल्कुल।
2: इनकी इस डिस्कवरी से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा होता था ना हॉस्पिटल्स में कि यार मैंने इसको ये वाला ब्लड चढ़ाया, ये तो जिंदा है, लेकिन इसको यही वाला ब्लड चढ़ाया दूसरे को, ये तो मर गया। क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप जैसी भी कोई चीज होती है।
3: हाँ, अगर आप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देंगे एक्सेप्ट ओ नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव, तो उसकी बॉडी उसको
0: एक्सेप्ट
3: नहीं करेगी, वो उसको एक आउटर सेल की तरह मानेगी और उसको अंदर आने से रोकेगी। अपना हमारा लोग का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए हम ना वो ब्लड ले पाएंगे और जितना है हमारे पास वो भी उससे लड़ाई में ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो तब तो मौत कन्फर्म ही होती है।
0: इसलिए सेम ग्रुप बहुत जरूरी है।
1: लेकिन यहाँ पर एक और गहरी बात समझने वाली बात है कि जैसे आज हम लोगों ने अपनी पहचान मून तक बनाई है, मार्स तक बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोगों ने बना ली है, लेकिन आज तक कोई ऐसी एडवांस मशीन नहीं आई जो कि ब्लड को बना सके, और उसका सिर्फ एक ही मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वो हम लोग हैं, हमारी बॉडी है। तो मतलब ये कह सकते हैं आप कि ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ब्लड को ही नहीं डोनेट करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़े और भी, मतलब आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप लोग अपना कोई और भी ऑर्गन डोनेट कर सकें, तो आप लोग उसे भी डोनेट करिए, क्योंकि आपके एक ब्लड, मतलब ऑर्गन डोनेट करने से किसी और की लाइफ बच सकती है।
0: तो जैसे कि आंख नेत्र दान भी महादान है ना, अगर आदमी के पास नेत्र नहीं तो दुनिया नहीं देख सकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर
2: देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है नेत्रदान, लेकिन नेत्रदान पूरी तरह से नहीं, मतलब आपकी आंख पूरी निकाल के कभी भी किसी दूसरे के आंख में नहीं लगा सकते, क्योंकि आंख से दिमाग तक 11 लाख नर्व्स जाती हैं जो कि कभी भी साइंटिस्ट उसको कनेक्ट फिर नहीं कर सकते, और ये नेचुरल तरीके से होता है। तो फिर कभी भी, लेकिन आँख के जो आगे के कुछ कॉर्निया पार्ट्स होते हैं, इरिस होते हैं, वो हम निकाल के थोड़ा बहुत उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन पूरी आँख को, आई बॉल को निकाल के हम ऐसा नहीं कर सकते।
3: और इसीलिए
0: तो हमारा साइंस
3: जिनको चश्मा लगा हो, जिनको मोतियाबिंद हो, जिनको कैटरेक्ट हो, कुछ भी हो, वो सारे लोग नेत्रदान कर सकते हैं।
0: चलिए, कुछ भी हो, अगर कुछ पल के लिए ही हम दुनिया देख रहे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम यश की ओर, और यश भी आज मूड में है, कुछ अच्छा ही बताने वाले हैं।
2: आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर की, एक ऐसे मैथमेटिशियन की, जो कि शायद हम उनको भूल चुके हैं, और या तो हम कभी शायद उनको जानते ही नहीं थे, नीलकंठ सोमया जी।
0: हाँ, क्या ये तो नाम भाई एकदम नया,
2: आपको पता होगा, बिल्कुल आप ही से आज थी क्योंकि यहाँ पर वैसे लेकिन क्या पता, नीलकंठ सोमया जी द फॉरगॉटन जीनियस ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की जिनका नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनके विचार अपने समय से सदियों आगे थे। उन्होंने 1444 में, उनका जन्म आज ही के दिन 14 जून को हुआ था, और आप सोचिए 15-16 सेंचुरी में ऐसी सीरीज एक्सप्रेशन उन्होंने लिखी थी, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अपने हिसाब से उन्होंने निकाला था। ये सब उस समय पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, उस समय पर कोई भी टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे और
0: काफ़ी पुराना टाइम बहुत हो गया।
2: उनकी जो उम्र थी
0: डेवलपमेंट, हाँ
2: उनकी जो उम्र थी वो लगभग मरने के समय पर उनकी जो उम्र थी लगभग 99 से 100 थी, क्योंकि वो 1444 में जन्मे थे और उनकी मृत्यु 1544 में जाकर हुई थी। मतलब आप सोचिए इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो हम इस दुनिया को छोड़ के गए थे। और आज तो हमारे हम ह्यूमंस हैं, हम जो आज के ह्यूमंस हैं उनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो लगभग बहुत ज़्यादा ज़्यादा 70 साल, आप अगर जी सकें तो 70 साल तक जीत पे हैं, लेकिन उन्होंने 100 साल तक जिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब हम महान वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो अक्सर न्यूटन, गैलीलियो और कोपरनिकस का नाम आता है, लेकिन ये सब फॉरेन साइंटिस्ट हैं और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के द्वारा जो भी मतलब हमारे हिस्ट्री में वेद में जो डिस्कवरीज या इन्वेंशंस लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाम पे उसे पेटेंट करवा लिया, फिर कहता है हमने इसकी मतलब हमने
0: ये होता ही आ रहा है, सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि हमारे जो भारतीय हैं उन्होंने इतनी सारी खोजें की, इतने सारे रिसर्च।
2: भारत में माइंड का कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए अगर बात करते हैं नीलकंठ जी के बारे में तो उनके सीधे हम कॉन्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस था उनके पास। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो नीलकंठ और केरला स्कूल के विद्वानों ने साइन और कोसाइन फंक्शंस पर महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने कोर थीटा के लिए साइन का निम्नलिखित इन्फिनिट सीरीज एक्सपेंशन उपयोग किया था, जो कि है
0: मतलब अनलिमिटेड,
2: बिल्कुल इन्फिनिट सीरीज थी। साइन एक्स, साइन इंटू एक्स जिसे साइन एक्स कहेंगे क्योंकि इंटू अक्सर नहीं लगाया जाता, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस, मतलब ये 1, 3, 5, 7 ये जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उस पर बेस्ड था ये। इसी प्रकार कोसाइन के लिए भी उन्होंने कॉस फिर इंटू एक्स, कॉस एक्स जिसे हम कहेंगे कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस x² इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस x^4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाता है। इसमें इवन नंबर्स का ज़्यादातर यूज़ हुआ है।
0: तो भाई जो हमारे लिसनर्स बाहर सुन रहे होंगे उनको जो हमारे यश राज जी बोल रहे हैं उससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है।
2: और देखिए इन्फिनिट सीरीज बनाना ना किसी भी चीज पे बहुत बहुत मुश्किल बहुत बड़ा काम होता है, और ये अक्सर जो आज हम इस मॉडर्न दुनिया में कैलकुलस और एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो चीज़ें। उन्होंने पाई पर भी अपनी एक एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन दिया था, जो कि यह था पाई अपॉन 4 = 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस 1/9, ऐसे ये चलते गए। बहुत इन्फिनिट सीरीज भरी पड़ी है इनकी दुनिया में उस समय ना,
0: बहुत अच्छी।
3: और ये जो सीरीज है, ये जो पाई के लिए इन्होंने सीरीज दी, इसकी बहुत खास बात ये है कि ये मानी जाती है, इसको वैसे नाम तो दिया जाता है लेबनीज सीरीज, क्योंकि पेटेंट अंततः एक यूरोपियन साइंटिस्ट लेबनीज ने कराया, लेकिन हाँ लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट, हाँ सबसे सिंपलेस्ट पाई के लिए सीरीज है। और इसकी जब आप 1,000,000 डिजिट्स को सॉल्व करेंगे, 1,000,000 टर्म्स को, मतलब 1,000,000 टर्म्स को, तब आप जाके पाई के कुछ 4 या 6 डिजिट के आसपास पहुंचेंगी। और वही सीरीज जब रामानुजन ने दी तो उसके सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करने के बाद आप इतने पाई के अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएंगी कि जो अर्थ का पूरा सरकमफेरेंस है उसको आप सिर्फ 1 मीटर के एरर से नाप सकते हैं।
0: वाह, तो चलिए चलते हैं भाई इसी सीरीज में, हमारे समर जी कैसे छूट जाएंगे। समर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जल्दी से हम कहेंगे कि समय का बहुत अभाव है, जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए और बताइए हमारे जो लिसनर्स हैं कि उनको आप क्या जानकारी देना चाहते हैं।
3: हाँ, तो अभी आप कह रही थी कि जो आँख नेत्रदान करना, हाँ, चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दुनिया देख पाए इसलिए नेत्रदान करना चाहिए। और दुनिया में क्या सबसे खूबसूरत है आपके हिसाब से?
0: हमें तो लगता है पूरी की पूरी दुनिया हमारे लिए खूबसूरती से भरी हुई है।
3: नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो आसमान सबसे खूबसूरत है।
0: आसमान तो मतलब एक जैसे कि मतलब हम एक व्यक्ति है, अगर वो रंग बिरंगे कपड़े ना पहने तो कैसा लगेगा।
2: देखिए आप जो हमारी
0: हमारी जो धरती है, हमारी जो ये धारा है, अगर वो ओढ़नी ना ओढ़े, नीला आकाश जो उसने ओढ़ रखा है, तो उसकी खूबसूरती ये चार चांद लगा रहा है, आसमान, नीला आसमान जो हमारा हाँ, है।
3: तो जब भी मैं आसमान देखता हूँ कभी रात में या फिर दिन में भी, तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसे है कि इतने बड़े आसमान में इतने सारे सितारे हैं, इतने सारे
0: अच्छा,
3: तारे हैं।
0: ये बड़ा सुकून भी देता है हाँ, जब भी कभी हम
3: इसीलिए तो
0: पर लेटते हैं और बड़ा शांति हाँ, फील होती है कि बस आसमान को देखते रहो और उसमें इतने झिलमिलाते हुए तारे, असंख्य तारे
3: हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आसमान सबसे खूबसूरत है
0: हाँ, हाँ।
3: और जब मैं देखता हूँ सोचता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं कि जितने धरती पर रेत के दाने नहीं है उससे कहीं ज्यादा तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये फैक्ट है। और उसमें से हमने कौन सा ऐसा काम किया कि हमको एक छोटे से बहुत कोने में सूरज के एक छोटे से प्लेनेट में जन्म मिला, और सिर्फ अभी तक तो सिर्फ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है ना।
0: मॉर्निंग में उठते हैं तो आकाश, जैसे कि जब सूरज निकल रहा होता है तो एक जो ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा सुंदर लगता
3: हाँ,
0: है कि तो, नीला नीला आकाश और उसमें एक ऑरेंज सा गोला निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो दृश्य मुझे बड़ा ही अद्भुत लगता है।
3: बस वही बात है कि आसमान नीला क्यों होता है तो ये इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, डॉक्टर सीवी रमन, उन वो पहले साइंटिस्ट थे इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज मिला। आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, IITs हैं, NITs हैं, ISC हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन सीवी रमन के बाद आज तक हम साइंस में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं पा पाए, जबकि उन्होंने नोबेल प्राइज तब पाया था जब उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। और हम आज तक उनकी तरह एक भी साइंटिस्ट नहीं बना पाए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दुर्भाग्य है। जब तक वो नहीं थे, वो एक बार यूरोप जा रहे थे एक शिप से, तो उन्होंने देखा आसमान नीला क्यों होता है, तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो जो बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, वो तब तक मानते थे कि जो समुद्र होता है उसका रिफ्लेक्शन आसमान पे पड़ता है और आसमान का रिफ्लेक्शन समुद्र पे पड़ता है, तो इसीलिए दोनों नीले होते हैं,
0: नीले दिखाई देते,
3: ऐसा मानते थे।
0: लेकिन मेरे ख्याल से समुद्र में इतनी शैवाल होती है हाँ, उसकी वजह से भी समुद्र
3: तो हाँ,
2: समुद्र जो होता है वो उसमें बहुत ज्यादा पानी तो ट्रांसपेरेंट ही होता है
0: हाँ,
2: लेकिन असल में समुद्र ही सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, आसमान में ऐसा नहीं है। आसमान
3: तो सिर्फ उसका एक सीधा सा जवाब दिया उन्होंने, लाइट स्कैटरिंग। वो इतने बड़े कॉन्सेप्ट जो है, इतने बड़े सवाल को एक छोटे से कॉन्सेप्ट में लेके, लाइट स्कैटरिंग, कि जो लाइट है वो सात कलर से मिलके बनी हुई है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसमें में से जो कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है वो है
0: ब्लू,
3: इसीलिए पूरे आसमान का रंग ब्लू होता है और सबसे कम स्कैटर होने वाला रंग है।
0: चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने,
3: रेड।
0: और हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हम चलते हैं अब अपनी अपनी मंजिल की ओर, और आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन। और आपके सामने अब वो कार्यक्रम आ चुका है जो आता है हफ्ते में सिर्फ एक बार। जी हाँ, रविवार को ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। इस समय हम आपके साथ हैं, मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट आरजे
1: अदनान। वैसे आपने हफ्ते का ऐसा बोला कार्यक्रम, मुझे लगा हफ्ते में एक बार आता है हफ्ता वसूली।
0: अच्छा भाई, हमने
1: हफ्ते में एक ही बार की जाती है हफ्ता वसूली?
0: हमने कभी की नहीं है, आपने की है तो जान।
1: नहीं, मुझे लग रहा है एक और शख्स है जिन्होंने की है।
0: हाँ, किसने की है?
1: हमारे साथ शानवी है।
0: अच्छा
1: शानवी बहुत छोटकू सी प्यारी सी है, और शानवी जैसी मैंने कहा हफ्ता वसूली, इनकी आंखों में चमक आ गई।
0: और क्या गजब बात है,
1: जैसे आप कार्टून देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स के आंखों में से सारे चमक जाते हैं चम से, वैसे चमका भी। तो क्या हफ्ता वसूली करते हैं आप शानवी, आप बताइए जरा।
2: मैं हफ्ता वसूली उस तरह से तो कुछ नहीं करती, मैं हफ्ता वसूली नहीं करती, मैं रोज करती हूँ।
0: यानी हफ्ता वसूली से अब दिन वसूली हो गया।
1: प्रतिदिन वसूली हो गया है तो। वाओ,
0: तो कैसे वसूली करती हैं आप?
1: हाँ,
2: मेरे पास और कोई है नहीं वसूलने के लिए, तो मेरी बहन ही बसती है, उसी को निचोड़ना होता जो होता है।
1: सुन रही हो मेरी प्यारी बच्ची बहन छोटी वाली?
0: तो मतलब कैसे
1: रही आपकी बात,
0: कैसे वसूलती हैं आप ये तो बताइए।
2: पहले तो होता है जब तक वो मतलब अभी सेकंड क्लास में है वो, तो मैं जितना मेरी हेल्प हो सकती मैं उसको अपना उतना देती हूँ कि हाँ ये मैंने तुम्हारी हेल्प की, ये करी। और मेरे मांगने पर जब वो कोई चीज़ नहीं देती है तो जितनी चीजें होती हैं मैं उसे सब गिना देती हूँ कि तुम पैसे दोगी नहीं।
1: बड़ी बहन, यू नो एहसान, ये भी तो दिया, हमने भी तो खिलाया, हमने भी तो झूठ बोला, मम्मी से बचाया, पापा से बचाया, ये किया वो किया वो किया,
2: उसे मजबूरी में देना पड़ता है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है वो मुझे गिनाती चली जाती है।
1: भाई सीख रही है, छोटी बहन है, बड़ी बहन से सीख
0: रही है।
2: कल मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, मैंने सुबह से कहा कि हमारे घर पे चिल्ला बना, तो मैंने उसे कहा कि एक बाइट मुझे भी खिला, मुझे भी टेस्ट करना है। तो मुझे ऐसे खिलाई, उसमें सॉस लगा था, उसने मेरे कपड़े भी गिरा दिए, मतलब उसे मुंह के मतलब यहाँ तक उसने हाथ नहीं डाला, उसने गिरा दी। मैंने कहा हाँ, मैंने तो कल तुम्हारे मुँह में घुसा घुसा के खिला रही थी, तब तुम्हें नहीं आ रहा था। तो फिर कहने लगी अच्छा ठीक है लीजिए, तो उसने मुझे ढंग से खिलाया, तो मतलब अंदर से भी खुशी होती है कि हाँ चलो छोटी बहन है, थोड़ी इज्जत मिल रही है।
0: मतलब अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं।
1: क्या बात है, वाओ। बट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो टॉम एंड जेरी जैसी कुछ है, कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, और रहते हैं तो कुछ ना कुछ चला करता है। खैर ये हर घर में कहते हैं कि भाई बच्चों की आदत ही यही होती है और स्वभाव ही ऐसा होता है, और ये होना भी चाहिए, घर में रौनक होती है।
2: मेरी मम्मी तो गुस्साती है कि मेरे पापा कहते हैं दोनों को अलग अलग रूम में कर दो, दोनों को अलग अलग रूम में कर दो। मेरी मम्मी कहती कहाँ है दोनों को अलग अलग कर दो,
1: घर में कमरा भी
2: जैसी है कमरा। अच्छा स्पेस तो बहुत है। अच्छा, स्पेस बहुत है,
1: अलग होने भर का है।
2: अरे हाँ, मैं इसलिए इस चीज को मना करती हूँ क्योंकि अगर अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है वो छोटी मम्मा के पास जाएगी, और पापा भी उन्हीं के साथ रहेंगे छोटी वाली के साथ, तो मैं पड़ जाऊंगी अकेली। और मेरी आदत है कि मुझे मतलब साथ चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा उससे डरती हूँ। और अगर जैसे अभी मैं उसे बता के आई हूँ, अगर मैं उसे नहीं बता के आती, उसने ना देखा होता, वो जाते हुए पूरा घर सर पे उठा लेती, मम्मा दीदी कहाँ है, मम्मा दीदी कहाँ है, दीदी को बुलाओ, दीदी को बुलाओ, मतलब। लेकिन मुझे उतना होता है, मैं जब आधे जैसे मुझे तो वैसे पता रहता है कि अगर हम कहीं घर आए हैं तो जरूर सी बात है कहीं छुपी होगी। अच्छा। लेकिन जब नहीं मिलती है तो मेरा हार्ट बीट तेज होने लगती है, मैंने कहा मम्मा कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ छुपी हुई है। अब पता चलता है वो मेरी नेबरिंग आंटी के यहाँ पे बैठी हुई है।
0: क्या भाई,
1: मतलब तेरे बिना रहा भी ना जाए और तू जब रहे तो सहा भी ना जाए वाली बात है।
0: वास्तव में मतलब क्या छोटे बच्चे, देखिए यही शायद जिसकी निष्कपटता होती है, जिसे कारण विलियम वर्सत ने कहा था कि अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो बच्चों की मुस्कान नहीं देख सकते।
1: सही बात है,
0: हेवन लाइज इन द स्माइल ऑफ इन्फेंट्स।
1: और क्या, और आप लाजवाब शख्सियत देखना चाहते हैं तो शानवी के बोलने में देख सकते हैं।
0: हाँ सही बात है, क्या बात है, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम, हमको लगता है बड़ी उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत बड़े मुकाम तक जाएंगी,
1: बेशक जाएंगी।
0: शानवी जी आप आगे चल के क्या करना चाहती हैं?
2: मैं अब रिवील तो नहीं करना चाहती, बट ठीक है।
1: नहीं नहीं, अब रिवील नहीं करना है, ये बात सही है, अगर ड्रीम है और कुछ सीक्रेट वाला है तो उसको वैसे ही रहने देता है।
2: लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि मैं एक जैसे गवर्नमेंट साइड जाऊंगी, गवर्नमेंट एंड डीलिंग,
1: गवर्नमेंट एंड डीलिंग, ये गवर्नमेंट से वसूली करेंगी?
2: नहीं
1: गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है, गवर्नमेंट से टैक्स वसूलेंगे, मेरा वाला लाओ
0: मेरा।
1: ठीक है ठीक है,
0: सही
1: हम समझ गए,
0: समझ गए।
1: बहुत प्यारी बच्ची है, खैर चलिए बहुत अच्छा है। और आज दिन भी जो है वो रविवार का है, यानी संडे टोटल कहे तो फंडे, और आज फंडे में एक दिन बहुत ख़ास है, और आज ही है रक्तदान दिवस। एक ऐसा दिन जब हम कहते हैं कि भाई ये जो दान होता है वो महादान बोलते हैं या सबसे बड़ा दान बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं, ऐसे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहाँ पे किसी भी इंसान को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे दिवस का महत्व बढ़ जाता है। और मुझे खुशी है आर्ज मनु कि हमारे गोंडा में ऐसे कई युवा हैं, मेल्स में फीमेल्स में, कि वो लोग इस दिवस के अलावा भी हर 3-4 महीने पे जहाँ भी कैंप्स लगते हैं वहाँ लोग डोनेट करते हैं अपना ब्लड। और जो एक भ्रांति थी, मुझे लगता है कुछ साल पहले तक ज़्यादा थी, कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस आती है, चक्कर आता है, बट इस चीज़ को जब मेडिकल साइंस ने बताया तो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपका ब्लड वैसे भी फिल्टर ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर होता रहता है। एंड दूसरी बात ये है कि कुछ जो लोगों में जज्बा था, जब लोगों ने ख़ास दिन आए, लोगों के बर्थडे आए, एनिवर्सरीज आई, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बड़ा इवेंट करने से अच्छा ब्लड डोनेट कर लिया जाए,
0: क्या बात,
1: यादगार बना लिया जाए। तो मुझे ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगता है कि चलो खुशी को इस तरह भी किया जाए कि किसी दिन किसी पे गम का पहाड़ टूटे तो आपकी उस खुशी के कुछ कतरे जो है उसके गम में काम आ पाए।
2: तो सर आप क्या करते हैं अपने बर्थडे पे?
1: हम खून चूसते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं, उस दिन बड़ा वीआईपी फील होता है, तो मैं सही बताया गया,
2: सही
1: मतलब कहीं के राजा से कम नहीं आती फीलिंग। घर वाले सारे गुनाह माफ कर देते हैं कि आज नहीं बोलेंगे,
2: जो अगर सेम स्कूल में भाई बहन तो जैसे क्या बोलते हैं, शहंशाह की फीलिंग देते हैं कि हमें भी ट्रॉफी मिलेगी जब बांटने आएंगे तो।
1: हाँ,
2: और जो फ्रेंड्स कभी नहीं बात करते, कभी मुंह तक नहीं देखना चाहते, वो इतना ज्यादा जैसे वो इतना ज्यादा क्लोजअप हो जाएंगे, इतना ज्यादा बिल्कुल खुद को दासी समझेंगे, हम जिसका बर्थडे होता है उसे बिल्कुल राजा वाली फीलिंग देंगे।
1: करेक्ट, और आपको उस दिन एक असिस्टेंट भी मिलता है टॉफी पकड़े रहने के लिए। टॉफी वो बांटते हुए चलता है, आप बस तैयार हो करके बढ़िया सा पाउडर लगा करके परफ्यूम।
2: मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अच्छा। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके जाती हूँ, वो हाँ। है शैलजा, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके जाऊंगी तो कहेगी तुम्हारी नौकर है, मतलब कहती है हम वो क्या बोलते हैं, हम लोग पॉली बैग लेके जाते हैं, तो मैं पॉली बैग पकड़ लूंगी, बांटना तुम्हें अपने हाथ से तुम्हें देना है, मैं इतना तुम्हारी वो नहीं करूंगी। और अब बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे मानना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है फ्रेंडशिप का, तो इसीलिए बांटती मैं हूँ, वो बस एक क्या बोलते हैं प्रोटेक्टर की तरह मेरे साथ चलती रहती है।
1: वीआईपी मूवमेंट शैडोज। वाओ, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये यादगार दिन तो मेरे पास यादगार रहते ही हैं। और ऐसे योद्धाओं को, ऐसे रियल हीरोज को रेडियो ज्ञानस्थली और इस वक्त ओपन माइक की टीम सलाम करती है, जो लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं और इस नेक काम में लगातार करते चले आ रहे हैं। फिलहाल प्रोग्राम की एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ एक नहीं आज दो सिंगर हैं, एक छोटे पैकेट में तो एक बड़े पैकेट में, इत्तेफाक से पैकेट का कलर सेम है।
3: एक ही कंपनी से है,
1: एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, राइट। सो चलिए भाई आरजे मनु क्या कहते हैं,
0: हाँ,
1: गाने से शुरुआत,
0: पूरब दिशा की ओर चले।
1: बिल्कुल
0: जी, तो प्राची जी सबसे पहले आपका स्वागत।
3: जी जी, थैंक यू सो मच।
0: कैसा महसूस कर रही हैं?
3: बहुत अच्छा,
1: पीला पीला महसूस
0: आज, कुछ पीला पीला
3: महसूस,
0: घड़ी तक भी पीली है, घड़ी तक
3: मैचिंग मैचिंग।
0: मतलब ऐसा क्या सोचा आपने कि आज सब कुछ पीला ही होना चाहिए?
3: ऐसा मेरा मन हुआ कि पीला करते हैं आज, थोड़ा
1: सूरजमुखी से दिखते हैं।
3: अच्छा। क्योंकि मैं पूर्व दिशा हूँ तो थोड़ा येलो येलो होना
0: चाहिए। ये तो कही आप दक्षिण दिशा नहीं तो काली काली होती।
1: अच्छा, जब आपके फ्रेंड्स में ये होता था कि पीला सब लोग पहन के आए और आप उस दिन नहीं पहन के आते थे, तो आप दांत उस दिन बहुत दिखाते थे, इसके रीजन क्या था इसके पीछे?
0: बस अपनी कमजोरी को छुपा रहे थे कि हाँ कोई जान ना पाए।
1: नहीं, दांत का कलर क्या था?
0: अच्छा, हाँ नहीं, नहीं, नहीं, वो तो वाइट ही था।
1: तो मैंने कहा कि ये अच्छा है, अगर आप नहीं पहन के आए तो आप दांत दिखा सकते
0: हैं,
1: कहीं कहीं तो कुछ शेड मिलेगा,
0: दिखाई दिखा देंगे, येलो शेड मिल जाए।
1: बहुत गंदा जोक है वैसे ही। चलिए अब शुरू करते हैं। सो प्राची हमारे साथ में है, सो प्राची आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
3: जी, बहुत अच्छा गाना है, एक जान बन गए आप लोगों ने।
1: अरे वाह,
0: अरे वाह,
1: बहुत नया और बहुत उम्दा गाना है
3: जी। तो भाई

0: थैंक यू सर.
1: क्या बात है भाई, सीधा सटीक संपूर्ण.
0: थैंक यू सो मच सर.
1: अच्छा वैसे आप प्रजी जी, आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन है?
0: श्रेया घोषाल.
1: क्या बात है,
2: आप खुद को एक्सपेक्ट कर रहे थे?
1: नहीं नहीं, हम लता जी को एक्सपेक्ट कर रहे थे.
2: ओह
1: वैसे लता जी की हल्की सी आवाज जो है वो श्रेया घोषाल में टच आता है कहीं ना कहीं, वो जो मधुरता है.
0: वो तो देवी है, पर फेवरेट जो है वो तो श्रेया घोषाल है. मतलब उनकी तो बात ही नहीं की जा सकती.
2: सही बात है,
1: सही बात
2: है. आइंदा नाम ना लीजिएगा, उनकी बात नहीं की जा सकती.
0: नहीं, अनमोल है, अनमोल रत्न है.
2: सही बात है, उनका कोई सानी नहीं. उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं, जैसे कहते हैं
0: फेवरेट, वो सबकी फेवरेट.
1: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि श्रेया घोषाल में लता जी का हल्का सा कुछ टच मुझे कभी दिखाई पड़ता है. ऐसे पल पल पल पल हर पल वहाँ पर दिखाई पड़ता है.
2: मुझे लगता है अगर आप भी गाएंगे तो कुछ कुछ आप में भी दिखाई देगा.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा.
2: क्योंकि आपको सब में दिखाई देता है.
1: नहीं, हमको सब में सब दिखता है यार, मैं क्या करूँ, मुझको तो सब में भगवान दिखाई देते हैं.
2: क्या बात है भाई. सो प्राची, बहुत बढ़िया गाना आपने चूज किया और उतने ही बेहतर तरीके से आपने निभाया उसको. हालांकि नया गाना है लेकिन लिरिक्स इसकी बड़ी प्यारी है और अंदाज गाने का वो भी बहुत प्यारा है. चलते हैं छुटकी सी शानवी की तरफ, जो काफी स्माइल कर रही. मुझे लग रहा है कोई शरारत भरा गाना है. क्या है?
3: मेरी खुद की प्लेलिस्ट है.
2: आपकी खुद की प्लेलिस्ट है जो आपने खुद से क्रिएट की है?
3: हाँ.
2: अरे वाह, तो ये प्लेलिस्ट आपके कहाँ फोन में पाई जाती है या आप गाया करते हैं, आपके जहन में रहती है प्लेलिस्ट, लूप पे चलती है? लूप पे चलती है, जहन में रहती है. अरे क्या बात है.
3: क्योंकि ये सब हैं जो पुराने गाने 90s के. आप लोग का तो मैंने बता ही चुकी, मुझे 90s के गाने कितने पसंद है.
2: करेक्ट.
3: तो इसीलिए
2: 90s के लोग पसंद है कि नहीं आपको?
3: 90s के लोग, उनके तो क्या ही कहना, मतलब बहुत सबसे अच्छा जो टाइम है वो 90s लगता है मुझे.
2: बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपका. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आरजे मनु शुक्रगुजार
1: है.
2: करेक्ट. आप तो चूक गई होंगी प्राची, 2000 के बाद आई हैं
0: जी. 2000 के बाद आई हूं,
2: लटक गई हल्का.
0: मैं 2003 में आई हूं.
2: 2003 में, लेकिन फिर भी काफी अलग था. शानवी उस चीज को समझ पा रही हैं कहीं ना कहीं. शानवी ने शायद उस दौर को फील किया है जब इनके मम्मी पापा कुछ शेयर करते होंगे कि हमारे टाइम में कैसा होता होगा.
3: हाँ, तो मेरे अंदर, मैं खुद के कहना चाहूंगी, मेरे जो खुद के अंदर है कि अगर आपने मुझे कोई स्टोरी, कोई भी बात बताई है तो मैं उसे अपने माइंड में पूरा इमेजिन कर लूंगी. मतलब जैसे उसी टाइम पे मैं, जैसे आपने एक बताया आपकी कोई इंसिडेंट है, तो वहाँ पे मैं खुद को पाऊंगी. मैंने जैसे आपने बताया वहाँ एक पेड़ था, तो मैं वहीं पे पेड़ दिखाऊंगी अपने माइंड में.
2: जैसे अभी मैंने आरजे मनु को कहा तीन दोस्त के साथ अपना पीला दांत दिखा देते, वो आपने एग्जैक्टली देखा?
0: देखा.
2: पीला दांत देख लिया. ओह माय गॉड.
0: फिर तो सजेशन देना पड़ेगा कि कौन सा मंजन यूज करना चाहिए.
2: ये अभी जाने से पहले बताती
0: हूँ. बहुत जरूरी है.
2: वाओ, तो क्या सुनाने वाली हैं आज प्लेलिस्ट में? आपके सबसे पहला सॉन्ग कौन सा आ रहा है?
3: ए मेरी जोहर जबी.
2: मेरी जोहर जबी. हम करेंगे ठीक है, इधर से
0: हम लोग करेंगे.
2: ये बड़ा मजेदार होता है. कोई गाना क्या टिंग ये सब करने बड़ा मजा आता है. सो ये सॉन्ग तो काफी चंचलता भरा है.
3: ए मेरी जहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू मेरी अब
2: अब नहीं, ये नहीं करते ना, ये बेमानी हो गई. ठीक है, ये हाँ में हाँ हाँ हो जा रहा है, छोड़ देते. आप गाइए, आप गाइए आराम से.

तेरी उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी ये, ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, ओ जब ऐसे

0: मेरे प्यार की चर्चे हर
1: जगह पर। क्या बात है,
0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, हो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिले एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, अब तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है भाई,
2: इतना लाजवाब मैशअप, मतलब इतने उम्दा उम्दा सॉन्ग सब अपने जमाने के टॉप टॉप पे जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।
1: मतलब हेमंत कुमार, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, उदित नारायण, कुमार सानू, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा,
2: नहीं छोड़ा। वाह क्या बात है। और फिर ट्रांजिशन देखा था किस तरह से उछलते कूदते गाने, किस तरह रात में ले गई फिर से दिन में ले आई, फिर
1: मतलब कितना जल्दी चेंज हुआ राग और कितना मतलब उसी धुन में लेती हुई चली गई।
2: सही बात है, क्या बात है। मतलब हमने तो बहुत एंजॉय किया।
0: अच्छा आपको अपने मतलब अपनी एक बात बतानी है कि जो मेरे घर का नाम है वो मतलब मुझे प्यार से सब सानू ही बुलाते हैं।
2: सानू, अच्छा
0: मेरे घर का नाम ही यही है।
1: अच्छा कुमार सानू
0: नहीं,
1: खाली सानू,
2: खाली सानू,
1: क्या बात
2: बोलते, खाली सानू इधर आओ।
0: नहीं सानू,
2: सानू, सानू, सा है पेट चिरवा, सा वाला शाह है या सिंपल सा सपेरा वाला सा है?
0: सिंपल सा, समोसा वाला सा।
2: अच्छा हम लोग के जमाने में सपेरा कहा जाता था, बात सही, कब तक सपेरा चलेगा? अब तो पी तो सपेरा दोनों, अब समोसा भी आना चाहिए।

0: उस दिन से मैंने मतलब फिर अच्छा लगे खाने में, तो तभी से मैंने मतलब आलू के साथ खाना शुरू कर दिया।
1: आपने जैसे कहा प्राची दीदी जैसे खाती हैं, आपने देखा तो है नहीं, वो फोक से खाती
0: हैं। नहीं तो उन्होंने
1: फोक से खाती हैं, हाथ से नहीं खाती हैं।
0: तो वो तो वही जाने किसे खाती हैं,
1: बताया था इन्होंने फोक से खाती।
0: लेकिन समोसे को फोक से थोड़ा ना खाया जाता है।
1: वही तो, यही तो यूनिकनेस है, यही तो टैलेंट है।
2: और जो है वो क्या बोलते हैं, जो डोसा होता है उसको हाथ से खाती हैं।
0: बहुत ही क्या बोलते हैं, यूनिक टैलेंटेड पर्सन है।
2: बहुत टैलेंटेड है। अभी आपने गाना भी सुना, मतलब गाना भी यूनिक था
3: बहुत। और जो वो नूडल्स होता है उसको हाथों से
1: दो उंगलियों के बीच फंसा करके। अब पानी का मत पूछिए, आज मनु अपने स्टाइल में पीते हैं। ये हाथ लगाते नहीं है, सीधे मुंह लगा देते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। खैर चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई और मुझे लगता है एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार वापस से हाजिर होते हैं। हमारे साथ में दो कैंडिडेट्स और आ गए हैं, ऑफ कोर्स रिया मौजूद हैं, सृष्टि मौजूद हैं, साथ में शानवी भी रहेंगी, प्राची भी रहेंगी। सो काफ़ी फन होने वाला है, काफ़ी मस्ती मजाक होने वाला है। संडे स्पेशल शो चल रहा है और आप सुन रहे हैं अपना गोंडा एफ एम 89.6 एफ एम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।
4: हेलो
5: भाई यार, मनु टाड़े खबर सुनी?
4: ओ हाँ यार, खबर तो सुनी।
5: चल चल भाई, फिर शाम का प्रोग्राम कैंसल
4: यार, वो तो मैं पिंडों मना लिया अभी तो रहा है।
5: हाँ यार, मुझे फिर की बनू
4: ये हल तो हम बड़ा भाई ही कर सकता
5: है।
4: मतलब तुसी

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन और नमन करते हैं आप ही के प्रोग्राम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। हमारे साथ भाई दो पार्टिसिपेंट और जुड़ चुके हैं, सृष्टि जी और रिया जी। तो पहले राह आता है किस्सा आता है
1: पहले राह आता है
0: जो पहले राह आता है तो राह से ही शुरू कर देते हैं। राह से शुरू करते हैं तो रिया जी पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर।
0: उसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं, स्वागत करना हमारा फर्ज है। और आपके पास क्या है आज खजाने में?
2: भोलेनाथ के ऊपर है
1: भोलेनाथ के ऊपर
0: फूल है। हाँ तो क्या है? हाँ बिल्कुल।
2: भोलेनाथ की भक्ति से नूर मिलता है, शिव के भजनों से दिल को सुरूर मिलता है। जो भी जपता है श्रद्धा से महादेव का नाम, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
0: क्या बात है बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, हमने भी नाम ले लिया, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आप चलते हैं सृष्टि जी की तरफ। जी तो आपके पास क्या है?
1: मेरे पास कुछ है,
0: छोटी सी लाइन। वैसे ये काम बता सका है लाइन वाला, लेकिन फिलहाल आज आप कर लीजिए।
1: जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है। कभी गिरकर जमीन की पहचान कराती है, कभी अपनों की महफिल सजाती है। कभी तन्हाई से भी दोस्ती कराती है, कभी उम्मीदों से दीप जलाती है। कभी आंधियों से लड़ना सिखाती है, तो कभी मंजिल के करीब दिखाती है। थैंक यू।
0: क्या बात है भाई, छोटी पंक्तियों में बहुत सारगर्भित बात कही उन्होंने।
3: तो
0: मतलब वास्तव में जिंदगी जो है सुख और दुख का मिश्रण है, इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है।
3: नहीं दुख तो कभी आते ही नहीं। शानवी को, शानवी एग्जांपल है।
0: अच्छा शानवी को,
3: शानी उर्फ सानू।
4: दुख और मेरी जिंदगी,
3: क्या वही तो कह रहे हैं।
4: सबसे पहला दुख है मेरी बहन, क्योंकि उसके कांड की लिस्ट अगर आप सुनेंगे तो आपके कान से खून निकलने लगेगा। वो जब मतलब नहीं
3: हेडफोन लगाया, कोई दिक्कत
4: नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पूछ लिया तो मैं बताऊंगी।
3: छेड़ दिया है ना?
4: हाँ तो छेड़ दिया, तो उसकी वो
1: स्क्रू निकाल दिया है उसको।
4: तीन बार हाथ तोड़ चुकी है, एक बार ऑपरेशन वाला हाथ तोड़ी है। और जब वो जैसे ये होता है ना, बच्चे चल के चढ़ सकते हैं, वो वाली एज जो होती है ना,
3: बकैया चलना,
4: बकैया वाला नहीं।
3: अच्छा
4: जो नॉर्मली चलते हैं इंसान, उस तरह का जो चलते हैं
3: जैसे आप चलते हो।
4: हाँ
3: आप बकैया चलते हो, कैसे चलते?
4: नहीं नॉर्मल नॉर्मल दोनों पैर पे चलते हैं। तो वो मतलब उस पे चढ़ के फ्रिज के ऊपर दवाई रखी थी, तो लिवोसिटाजिन की थी, जैसे पीने पे जैसे अगर आप सो गए तो फिर
3: क्या
4: बेहोश हो जाओगे, बेहोश हो सकते हो या फिर जा सकते हो। मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं है, बट ये भी हो सकता है, या तो
1: जो दवा होती है उससे नींद बहुत आती है।
3: नींद बहुत,
4: हाँ नींद आती है और ऐसे कुछ होगा।
3: तो परमानेंट नींद बता रहे हो?
4: नहीं मैंने परमानेंट कहा, मैंने कहा ना मुझे कंफर्म नहीं है।
0: ज्यादा पी लिया तो उन्होंने कहा हो सकता है,
4: पूरी शीशी पी ली।
0: वही तो,
1: इस तरह मैं भी कांडी थी बचपन में। फिलहाल के लिए मैंने कपूर खा लिया था, रखा था इतना सारा,
0: उसकी महक आज भी आती है।
4: वो
3: उसी के बाद से इनका नाम सृष्टि कपूर है।
4: आपको पता है वो जो सिलेंडर नहीं होता, वहाँ से ऑफ कर देती थी। मम्मा खाना बनाए, मम्मा को लगा गैस खत्म हो गए। लेकिन दुख तो हमें एक बार हुआ था कि हमारे जब हम लोग रेंट पे रहते थे पहले, तो वहाँ से ऊपर की जैसे ये जमीन है पूरी गिरी और सिंक पूरा टूट गया और पूरे घर में पानी पानी था। हम लोग ने कहा पानी कहाँ से आ गया? मम्मा को वहाँ फिर मम्मी ने कहा कि मम्मा हो सकता है अपने गैस बंद करना भूल गई होंगी चावल चढ़ा के। हम लोग लेकिन इतना पानी तो नहीं आएगा फिर।
3: सही बात।
4: तो फिर जब हम लोग अंदर गए तो पूरा टूटा पड़ा था, पूरा का पूरा टूटा पड़ा था। और लक की बात ये थी कि मम्मा रोज मेरी बहन को तकिया वकिया लगा के पानी वानी उसके पास रख के फिर मुझे लेने जाती थी। लेकिन उस दिन मम्मा ने मेरी बहन को मेरे साथ मतलब लेके आई थी, तब मम्मा मुझे लेके गई थी। तो ये मेरा सबसे डरावना था। और एक था जब मैं स्कूल नहीं गई थी और मेरी मम्मा को बहुत बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, मतलब मेरी बहन को छोड़ने जा रही थी। तो मम्मा का ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पैर का
3: टखना।
4: हाँ तो वो पूरा फट गया था एक तरह से, और उसके बाद उंगली में भी चोट आई। तो मेरा सबसे बुरा दिन था, क्योंकि फिर मैंने अपनी बहन को दो तीन दिन तक चढ़ाया कि देखो मम्मा तुम्हारे साथ अकेले गई इसीलिए ऐसा हो गया मम्मा को, और मेरे साथ जाती है तो कभी ऐसा नहीं होता। तो मम्मा के तो रोने लगती थी ऐसे करो, तो फिर मैं भी यार डर जाती थी। तो फिर मैंने उसे मतलब चुप चुप कराती और संभाल लेती। उस मेरी बहन के यहाँ पे एक बर्थ मार्क है, तो वो एक दिन मैंने, वो होता नहीं क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी
3: खोज के देखते हैं, स्क्रैच हो सकता है कोई नंबर,
4: खून आने लगा था।
0: ओह अजी बहुत
4: और ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा खून, पूरा मतलब बहुत ज्यादा, तो पूरा पिंक पिंक था। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते, बस मैंने ऐसे किया, इतना ज्यादा खून आने लगा, मेरी हालत खराब। और उसके बाद मैंने मतलब वो सब पोछा वोछा, फिर मैंने मम्मा को बताया, मम्मा देखिए इसका कहीं से नुच गया है, कहीं से नुच गया।
3: मम्मा सुन रही है इस टाइम? ऐसे
4: नहीं सुन रही होंगी, मुझे पक्का मुझे पक्का विश्वास है
3: पापा सुन रहे हैं।
4: तो पापा को मैंने बताया
3: आज आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर अब तो हो गया कांड एक और, अब बता दिया आगे बाकी।
4: मैग्नेट भी अटक चुकी है,
3: मैग्नेट भी गले में अटक चुकी। ओहो।
4: और मेरी मम्मा तो दिमाग काम किया, उन्होंने ऐसा पलट के मारा,
5: मेरे तो
4: सिक्का
3: अटक गया। ये लोग एटीएम मशीन बनने की।
4: मैं सबसे संस्कारी सबसे अच्छी बच्ची हूँ।
1: बचपन में युवा दिया गया तराजू बनाया जाता था।
4: बताना नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे पापा को सुनाने क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी कजिन्स हैं उन सबके साथ मतलब जैसे किसी को चोट लग गई है, किसी को ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन भगवान न करे मेरे साथ कुछ हो, लेकिन आई एम सेफेस्ट पर्सन।
3: नहीं तो जैसे संस्कारी तो महिलाओं को बोला जाता है ना,
4: फिर आप महिलाओं का लगे। मैं लड़की, मैं भी बच्ची हूँ,
5: बच्चा
4: हूँ।
3: ये बच्चा खुद कैसे बोल सकता है कि हम बच्चा,
5: मैं बच्चा हूँ, तब तो वो बड़ा हो गया।
3: करेक्ट,
0: उसको समझ आ गई।
4: तो चोर कभी ये थोड़ा ना बोलता है कि मैं चोर हूँ।
0: अच्छा
3: तो आप चोर हो?
4: वो तो पता चल जाता है। नहीं
3: आप चोर हो कि बच्ची हो कि महिला हो, मतलब क्लियर करो प्लीज।
4: मैं बच्ची हूँ।
5: बच्ची हो
3: क्या?
5: छोटी बच्ची हो क्या?
3: My God.
0: क्या बात है भाई?
3: सबसे फनीएस्ट एपिसोड मुझे लगता है ये होने वाला है आज का। वाओ, चलिए फिलहाल चलते हैं प्राची की तरफ और देखते हैं एक और सॉन्ग आपसे हम सुनना चाहेंगे।
5: आज so, मैं सॉन्ग न सुनाऊं, कुछ लाइन बोलूं?
3: अरे प्लीज, क्या बात है, कुछ अलग होगा बिल्कुल।
5: मम्मी पापा के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बेरुखी से बात कर लेते हैं और कभी कभी उनको दुखी कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। अगर मतलब गलतियां हो जाती है, गुस्से में हो जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए,
4: बाद में रिग्रेट होता है।
5: हाँ, बहुत रिग्रेट होता
3: है।
5: तो वही रिग्रेट में मतलब जो लाइन है मैं बोलूंगी आपसे,
3: बिल्कुल
5: कहते हैं कि सालों तक हुई उस परवरिश को हम भूल जाते हैं, था जिसने बोलना सिखाया हम उन्हें ही चुप कराते हैं।
0: क्या बात?
5: कितने चाव से सिखाई थी उन्होंने हमें गिनती, अब उन्हीं की गलतियां गिनकर हम उन्हीं को सुनाते हैं।
0: क्या बात?
5: सोते नहीं थे जब तक हम नहीं सोते थे, अब वो हमारी वजह से सो नहीं पाते।
3: वाह।
5: हर एक तकलीफ में आंसू हमारे पोंछते थे, अब हमारी बेरुखी पे खुद आंसू बहाते हैं। लिपट जाते थे हम तो हक समझकर जब जी चाहे, अब उनका मन करता है तो हम कितना कतराते हैं। हमारे दिए घाव बसा लेते हैं अपने दिल में, मगर हमारी अच्छाइयां फक्र से सबको सुनाते हैं।
0: क्या बात?
5: तो मैं बोलूंगी मतलब देर अभी भी नहीं हुई है, संभल जाते हैं और कुछ भी हो हाथ जोड़कर हम उन्हें मनाते हैं, गले लगाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं, क्योंकि वो तो हमारी पूरी दुनिया, उन्होंने हमें दुनिया दी है। तो इसी वजह से आज सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी कि आई एम सो सॉरी अगर किस मतलब हम लोगों ने कुछ भी बोला हो, बेरुखी से बात की हो, अब नहीं होगा।
0: क्या बहुत अच्छा संदेश दिया आपने वास्तव में। जिसका रक्त जो है वो अपनी शिराओं में बह रहा हो, आज रक्तदान भी है
5: जी, बिल्कुल।
0: तो कम से कम उनसे हम ऊंचा न बोलें जिन्होंने हमको बोलना सिखाया है।
3: यस, एंड सभी मम्मी सभी पापा से आई लव यू।
0: आई लव यू, हाँ, वी लव यू।
5: आज सब लोग बोल रहे अपने पेरेंट्स से, हम लोग पेरेंट्स से नहीं बोल पाते जल्दी ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
4: सबसे ज्यादा पापा से।
5: हाँ, पापा
4: से तो बहुत डर लगता है।
3: अभी, हम अभी कहते लगता कुछ नहीं है, एक लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा किसी के पापा यहाँ पे हैं तो आज सामने बुलवाया जाए किसी से तो कोई बोलेगा
4: आप क्या क्या तो,
0: नहीं महिला देख लेगा कोई महिला की बात कर रहे हैं
4: आप लोग, मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा बच्चा समझ रहे हैं क्योंकि इतनी अकल मुझे भी है कि उनके पापा यहाँ है नहीं, पापा मेरे ही बैठे हुए हैं ऊपर से अदनान सर ऐसे ऐसे कर रहे थे, सर यहाँ ही बैठी हूँ।
5: नहीं नहीं, मेरे पापा हर जगह होते हैं क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे हर जगह दिखाई देते हैं।
4: नहीं, मेरे पापा जो जो है मैं वही देखती हूँ। मैं वही नहीं देखती हूँ।
0: हमको लगता है शानवी जी कोई गीत सुनाना चाहती हैं। क्यों?
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि शानवी मुस्कुराए, अगर तुम कहो। सुनाइए।

0: क्या
1: हाँ भाई, इतना कठिन
0: खुद को खो बैठे। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है भाई।
1: बहुत पुराना गीत ये है आज, लेकिन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है।
0: अब मुझे
1: ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का गीत है ये, मतलब हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे
0: एंड शानवी को सुनने के वक्त हम सब खो गए थे।
1: क्या बहुत अच्छा गाया बिटिया आपने।
0: जितना सच्चा और साफ दिल होता है उतनी अच्छी कहते हैं जुबान होती है। बिल्कुल, बोलने वालों की भी सच्ची जुबान है और दिल है।
1: यह संदेश लोगों के आ चुके होंगे इनके लिए, हमको लगता है।
0: बिल्कुल। सो इट्स कुमार हैं, गुड आफ्टरनून। दीपांशी को भी बहुत अच्छा लगा है, क्लैपिंग की है इन्होंने काफ़ी सारी। एंड मनी भी मौजूद है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो हमको सुन रहे थे लाइव इस वक्त फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो गार्डन पर और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर। फिलहाल आज का संडे मुझे लगता है हम सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया, क्यों, क्या लगता है?
1: बहुत बहुत शानदार,
0: करेक्ट।
2: लेकिन अंदान सर, एक प्रॉमिस करिए आप, अगली बार आपको अंताक्षरी करवानी है।
0: अगली बार हमको अंताक्षरी करवानी, किसके किसके बीच में?
2: अब वो तो टीम उसी दिन डिसाइड हो जाएगी।
0: ठीक है,
1: नहीं आप किसकी तरफ देंगे, हमारी तरफ की अंदान सर की तरफ?
0: लेकिन बच्चों का तो दूध भात होता है ना, महिलाओं को रखा जाएगा इसमें। अब जो महिला होगा वो आएगा, जो बच्चा होगा उसका दूध भात होगा।
2: वो किसी भी लाइन में
1: नहीं, दूध भात नहीं होगा, मतलब नहीं। ये बताओ आप हमारी टीम में रहोगे?
2: ठीक है ठीक है, चलिए अगर मैं आपकी टीम में नहीं रहूंगी, ठीक है, तो आप दोनों रह जाइए और मैं दीदी की तरफ चली जाती हूँ, ठीक है?
1: नहीं तब तो गड़बड़ा
3: है, सेम है उधर का तो एक।
1: तो हम दोनों विरोधी हैं।
0: नहीं, हम लोग सिर्फ जजमेंट देंगे और क्या।
2: तो अंताक्षरी में जजमेंट नहीं दे सकता, वो तब होती जब बहुत अपर लेवल की होती है, जब फालतू कह रही हूँ, जब अभी हम सब हैं तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो नॉर्मल अंताक्षरी होगी। ये नहीं कि
0: मैं नहीं जानता आपको।
2: मैं तो आपको जानती हूँ, आप अदनान सर हैं,
0: बस इतना ही तो जानते हैं।
2: बहुत अच्छा बोलते हैं, ओपन माइक भी शो करते हैं।
0: ये बच्चा बहुत ज्यादा ही समझदार है। फिलहाल चलिए, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये खास ओपन माइक वाला प्रोग्राम? हमने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया, आई होप कि आज आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए भाई, बाय, टेक केयर, बोल दीजिए अपने तरफ।
1: जी हाँ बिल्कुल भाई, अब आपसे लेते हैं अनुमति, और आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अंताक्षरी का प्रोग्राम हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, अगर ये साफ सभी लोग साथ में रहे तो। जी हाँ, अब आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा
0: शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी। एंड आफ्टर ऑल गुड आफ्टरनून, आप आई होप अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 2:08 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी आज हृदय मौजूद है आप सभी के साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त लेकर के गोंडा का स्पेशल वाला शो जिसका नाम है इंटर टॉप 20, जिसमें हम बात करते हैं 20 गानों की। बात नहीं करते, हम इंजॉय करते हैं, वाइब करते हैं, डांस करते हैं, गानों के पीछे की कहानियां जानते हैं, सिंगर्स की कहानियां जानते हैं, लोगों की कहानियां जानते हैं, आपकी कहानी जानते हैं, बॉलीवुड के किस्से और न्यूज भी आज के दिन हम जानते हैं। और इस खूबसूरत से शुरू के महफिल में जहां पर टेंशन का नो चांस ब्रो, सिर्फ यहां पर होता है डांस डांस डांस, क्योंकि डांस पे ही तो चांस होता है, चांस पे डांस होता है। और हम जो गाने लेकर आ जाए हैं वो हैं थोड़े से पार्टी वाइब्स, थोड़े से वो वाले गाने जिनको आप भुला चुके हैं। क्यों भुला चुके हैं? क्योंकि आप ट्रेंड में पड़ चुके हैं और हम जब तक हैं आपको वो आपकी पसंदीदा गाने भूलने नहीं देने वाले। फिलहाल आज कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ मिक्स करके लाई हूँ मैं आपके लिए पार्टी वाइब्स प्लस वो फॉरगेटन प्लेलिस्ट आपकी जो आप भूल चुके हैं 90s के, 80s के, 2000 के, 2024 के। भाई सारे गानों का एक मैशअप सॉन्ग आपके लिए मौजूद है आज के वाले शो में, तो भैया सुना मत भूलिएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप या तो देर से आते हैं या तो बीच में बाबा डाटा करके चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप आज किसी भी गाने को मिस करते हैं तो आप अपने पसंदीदा सॉन्ग को मिस करते हैं। क्योंकि कल रात बैठकर मैं एक गाने की तलाश में जुटी हुई थी और मैं और मेरा एआई दोनों साथ में ढूंढ रहे थे कि गाना है कहाँ से। वो मुझसे कह रहा भैया सिंगर के नाम बताओ, मैंने कहा सिंगर का नाम मुझे पता ही नहीं है। वो कह रहा है मुझे धुन बताओ, मैंने कहा ये भी मुझे याद नहीं। तो कह रहा नाम ही बता दो, मैंने कहा वो समझ में मुझको आया ही नहीं, कैसे बता दूं। तो कह रहा था गाने ढूंढेंगे कैसे, हमने कहा ऐसे ही ढूंढेंगे, हम तुमको बताते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का पोस्टर था, उसमें एक लड़का बना था, गाने में थोड़ा सा उर्दू था, थोड़ा सा अरेबिक था, लिरिक्स हमको समझ में आया नहीं और कुछ तो था जो पुराने मेरे बचपन से लग रहा था। अब उसने जाने मेरे को कितने सारी चीजें सुना डाली, कितनी सारी बातें बता डाली, बट हमें समझ में ही नहीं आ रहा था भाई ये गाना है कौन सा। और उसने फिलहाल के लिए अपना सर पकड़ लिया और कहा कि देवी देवी देखिए सुनिए, मेरा बात सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिएगा, जिस हिसाब से आप गाना बता रही हैं उस हिसाब से ढूंढा नहीं जाएगा। तो वहीं पर हमको ख्याल आया कि जिस तरह से मैं अपने गानों की तलाश कर रही हूँ जो मैंने आई थिंक 2 साल पहले सिर्फ एक दफ़ा सुना था, उसी तरह से आप भी कुछ ना कुछ गाने ज़रूर ढूंढते होंगे और आप भी उनमें से एक होंगे जिनको कुछ गाने याद नहीं है। क्योंकि भैया गानों को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, उनके नाम को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आपकी इस मुश्किल को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं और हम आपको सुनाते हैं आपके पसंदीदा कुछ गाने जो आप भूल चुके हैं शायद या शायद नहीं भी। फिलहाल आप बताइएगा इनमें से कौन से गाने आपको याद हैं, कौन से नहीं याद हैं। और आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 20 की तरफ, इससे पहले कि आप भी एआई के पास जाकर अपना सर खपाएं जैसे हम खपा रहे थे कल रात और एआई भी आपके सामने हाथ जोड़ ले, उससे पहले आप इंजॉय करें सॉन्ग नंबर 20 तेरा नाम जपदी फिरा फ्रॉम कॉकटेल। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: एब्सोल्यूट बैंगर सॉन्ग आप एंजॉय कर रहे थे, मैं तेरा नाम पंजाब दे फिरा, अरशाद कामिल की आवाज़ है। और हम आपको पता है अरशाद कामिल के बोल हैं, और हम आपको बता दें जावेद बशीर की आवाज़ है, प्लस और जो आपने इंग्लिश वाला वर्जन सुना है उसमें निखिल डिसूजा और शिफाली की आवाज़ है। भाई प्रीतम का म्यूज़िक है, उनकी टीम ने मस्त म्यूज़िक क्रिएट किया है, और इसको सुनने के बाद आपके पैर भी थिरकते हैं, आप भी बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि तेरा नाम जप दे फेरा। और भाई ये गाना मुझे सैड सॉन्ग लगता ही नहीं है किसी एंगल से, वैसे तो है ये सैड सॉन्ग ही है, कॉकटेल फिल्म का सॉन्ग है, बट किसी भी एंगल से मुझे सैड सॉन्ग नहीं लगता। जब ये बजता है ना तो ऐसा लगता है यार पार्टी सॉन्ग हो रहा है, और थोड़ा सा वाइब कर लेते हैं, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रूव कर लेते हैं। जब लिरिक्स पर ध्यान दो तो समझ में आता है भैया अरशाद कामिल बड़े सैडेस्ट गाने लिखते हैं, और उनके जो बोल होते हैं वो बड़े दुख वाले होते हैं, थोड़ा सा फील होता है, दिल में फील होता है। लेकिन अगर आपको दुख भी इस तरह से मिले जिसमें नाचने का मन करे तो क्या दिक्कत है। वो लोग कहते हैं कि जब जिंदगी बैंड बजाए तो थोड़ा सा डांस कर लेना चाहिए, ये इन्हीं गानों के लिए कहा जाता है कि जिंदगी बैंड तो बजा रही है, प्रीतम के म्यूजिक के साथ बजा रही है, तो प्लीज कृपया करके थोड़ा सा नाच ही ले। तो भाई आपने एंजॉय किया इस एब्सोल्यूट बैंगर को, और अब हम लेके चलेंगे अपने दूसरे गाने की तरफ जो कि हमारा सॉन्ग नंबर 19। और सॉन्ग नंबर 19 मुझे इसका नाम कभी पता नहीं था, गाने को मैंने इतनी दफ़ा सुना था, और सच ये है ये वो गाना है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं आई थिंक जब से होश में हूँ, होश में तो मैं बचपन से ही हूँ फिलहाल, हाँ तभी से मैं इस गाने को सुन रही हूँ, बट उस दौरान मुझे इसका नाम नहीं पता था, मुझे हाल फिलहाल में इसका नाम पता चला है। और हाँ नाम इतना खूबसूरत है ना कि मन कर रहा है खा लूँ, गाना नहीं है, नाचना नहीं है, इसमें खाने का आना बताए, क्योंकि गाने का नाम है आलू चाट। आइए हम साथ में बेचते हैं आलू चाट, फिलहाल खा के आते हैं, और आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं इस गाने के इस पर अगली बीट पर, अगले बैंगर पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सुनते रहिए टॉप 20 अभी आज उदी के साथ 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: हाँ जी, और ये वो गाना है जिसको सुन के हमने बहुत ग्रूव किया है, बहुत डांस किया है, बहुत मस्ती की है, इवन बहुत सारी वीडियोस भी बना ली हैं, लेकिन अभी तक हम इसके लिरिक्स का समझ नहीं पाए। थोड़ा सा मैक्सिकन लगता है, लेकिन मज़ा उतना ही आता है जितना मज़ा मुझे मैक्सिकन बोरीटो में आता है ना, मैक्सिकन बोल्स में आता है, उतना ही मज़ा मुझे इस गाने में भी आता है। और इसीलिए मैंने कहा कि भैया इसको सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक ही शब्द समझ आता है, वो है मैक्सिकन, और वो भी इस गाने में है नहीं, बस मुझे लगता है। और हम लिरिक्स को हमेशा से गलत गाते आए हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा टैलेंट है, और ये टैलेंट हमें बचपन से ही मिला है, वरदान के स्वरूप में मिला हुआ है, और हम इस गाने को इन्जॉय कर रहे थे, आप भी इन्जॉय कर रहे थे। सॉन्ग नंबर 19 आलू चाट का टाइटल ट्रैक आपने इन्जॉय किया, और हम आपको बता दें रीमिक्स वर्जन है इसका, ओरिजिनल वाला जो है वो किसी और जनाब ने गाया है, और उनको किसने गाया वो आप मुझे जरूर बताएंगे। बॉलीवुड कुछ ऐसे बैंगर्स को जरूर कॉपी करती है, लेकिन एक चीज है जो मुझे बॉलीवुड की पसंद आती है, जो उस वक्त के गाने बन रहे थे वो क्या ही लाजवाब बन रहे थे, मतलब जिनको सुनने के बाद दिल झूम उठे, आत्मा झूम उठे, मेरे अंदर की आत्मा जो होगी वो भी झूम उठती है, आपकी भी झूमती है, हमको पता है। वो अलग बात है कि आप मेरी तरह अगर माइक पे चिल्ला नहीं सकते हैं, नहीं तो आप भी आकर चिल्ला रहे होते कि भैया ये गाना एक बार और प्ले कर दिया जाए, तो कुछ घटेगा तो है नहीं, बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मस्ती का पाठशाला, मस्ती का जोन, और आप सुन रहे हैं इन द टॉप 20 अपनी आज के साथ 89.6 FM, यही गोंदा शहर की धड़कन पर। आपकी इस दोपहर की नींद को ख़राब करते हुए, या फिर कहें आपकी दोपहर की नींद को टटा बाबाई करते हुए, हम इस गाने को प्ले कर रहे थे, इस ज़बरदस्त बैंगर प्लेलिस्ट को प्ले कर रहे हैं, जो 2000 के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी लोग होंगे, अगर वो मेरा गाना सुन रहे हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट सुन रहे हैं, तो आज उनका डेफिनेटली मन कर रहा होगा कि भैया आज तो डांस कर ही लेते हैं। डिप्रेशन गया इधर, ट्रॉमा गया उधर, रास्ते के दोनों को बांट देते हैं, अभी चलते हैं, फिलहाल मज़े करते हैं, झूम झाम के आते हैं, शाम में आकर देखा जाएगा किस चीज़ का टेंशन था, किस चीज़ का स्ट्रेस था, किस चीज़ में हम डिप्रेस चल रहे थे, और क्यों हमें गुस्सा करना था। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हो, मेरा कोई फेवरेट गाना प्ले कर दे, मैं गुस्सा साइड में करती हूँ, पहले गाना सुनती हूँ, उसके बाद गुस्से को पकड़ के आती हूँ कि हाँ अब शुरू करते हैं, टॉपिक कहाँ पर थे हम इस टॉपिक पर थे, यहाँ पर हमने ख़त्म किया था और यहाँ से हम गाना सुनने लग गए थे, तो सामने वाला भी हंस देता है कि तुम्हारा गुस्सा बड़ा अजीब है, हम अजीब तो हम खुद ही हैं मियाँ, तो गुस्सा तो अजीब होना ही था, क्योंकि हमें तो टाइटल मिल चुका है ना अतरंगी उन्नति का, तो भाई अतरंगी सतरंगी काम हमारे ऐसे ही रहते हैं, और मैं आपके गुस्से को भी काबू में करवा ही दूंगी। और जैसे कि मैं कहती हूँ, जब भी कोई सैड होता है तो उसको सुनाओ हमेशा ऐसे पार्टी प्लेलिस्ट, जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको सुनाओ सैड गाने, अब बैलेंस होना चाहिए ना इमोशन, और इस बैलेंस को बनाते हुए आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना हम लेकर आए हैं पंजाबी बीट्स पर। अगर आप ओजी पंजाबी लिसनर हैं तो आपको पता होगा कुलविंदर नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर ये नाम सुना है तो उनके गाने भी आपने सुने होंगे, और अगर उनके गाने आपने सुने हैं, हाल फिलहाल के पंजाबी सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स, या फिर बाकी गानों को सुन के आप उनका नाम भूल चुके हैं, तो आइए आपके दिमाग पे वो घंटी बजाते हैं, फिर से आपको याद दिलाते हैं कि आप किसी टाइम में इनके गाने बहुत सुनते थे। और अगर आप इनके ओजी लिसनर नहीं हैं, यानी कि पंजाबी गानों को इतना कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, बस कुछ वाइब करने के लिए सुन लेते हैं, तो भाई हम आपको दे कि कुलविंदर जी ने बहुत खूबसूरत गाने दिए हैं, और इसका नमूना, इसका सबूत मैं अभी आपके लिए पेश करती हूँ, और आपको उतना ही मजा आने वाला है। तो आज से ही आप पंजाबी सॉन्ग्स के फैन हो जाएंगे, और आप खुद आकर मुझसे कहेंगे मैम एक पंजाबी गाना जरूर हो जाए आपकी प्लेलिस्ट में, ऐसा नहीं होता तो हमको बताइएगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 18, हम मिलते हैं अगले गाने अगली बीच पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, Song number 18.

0: हाँ जी, और आप बताइए क्या ख्याल है आपके। आई नो आपके ख्याल भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे हैं, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं फलक ही रहे होंगे। और अगर आप घर वालों के सामने हैं या दोस्तों के सामने और वहां पर आप इस गाने को सुन लेते हैं ना, तो पब्लिक में खुद का रिएक्शन कंट्रोल करना होता है भाई कि नहीं नहीं पब्लिक में डांस नहीं करते, बिकॉज वी आर इंट्रोवर्ट्स ना, और इंट्रोवर्ट्स की थोड़ी सी इज्जत को रखने हैं, बचानी है, और सबके सामने डांस नहीं करना है। फिलहाल ये वो गाना है जिसको अगर आप अपनी पार्टी में प्ले कर देते हैं तो लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे कि वाह भाई साहब क्या ही गाने बजाते हैं आप, और आप कहेंगे थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। ये गाने हमारे अपने ओजी प्लेलिस्ट के हैं, बताइएगा नहीं मैंने बताया आपको, क्योंकि आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 और ये है आपके रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट। संडे वाला माहौल और संडे के दिन मुझे ऐसे ही गाने याद आते हैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन सैटरडे आते आते मेरे दिमाग में इतने सारे गाने चल जाते हैं और उनमें हज़ारों गानों में से जब चुन चुन के 3-4-20 पकड़ के लेकर आती हूँ, और फिर मैं सोचती भैया ये गाने आपको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर हम खुद वो गाने सुनते हैं आपके साथ एंजॉय करते हैं और उनको लगता है कि आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी क्योंकि आज के बाद आप इन गानों को ज़रूर सुनने वाले हैं। तो ये भैया वो गाना था जिन्होंने अभी तक सिर्फ 4 बोतल सुना था, 4 वोडका सुना था, आज उनके लिए हमने प्ले किया था 4 दिन कुलविंदर बिल्ला की आवाज़ में, पंजाबी सॉन्ग था, सेम टाइम सेम जगह अगले यो दिन। आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे और हम चलेंगे अगले गाने की तरफ। अभी आपने पंजाबी गाना एंजॉय कर लिया है तो आप चलते हैं एक ऐसे गाने की तरफ जिसको किसी सिंगर ने नहीं सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर ने गाया, और इस एक्टर का नाम है अभिषेक बच्चन। अभी तक आपने अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाने सुने, अभी तक आपने राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली, और आपने सुने होंगे अतीफ असलम, न जाने कितने ही बेहद ही उम्दा सिंगर्स के नाम सुन लिए होंगे, उनके गाने भी सुन लिए होंगे, उनकी आवाज़ को आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा गाना सुनाएंगे जो अभिषेक बच्चन ने गाया है, और ये गाना मास्टरपीस है। जी भाई, जो भी 90s के हैं, जो भी 2000 के किड्स हैं, वो पता है कि ये गाना कितना बैंगर सॉन्ग है, कितना बड़ा सुपर डुपर हिट गाना है उनकी प्लेलिस्ट का, और आपको यकीन नहीं होता है तो ये आप सुन के बताइएगा। मैंने तो एक बार सुना था इसको, तब से हम हो चुके हैं इनके फ़ैन, और मुझे लगा नहीं था कि भाई अभिषेक बच्चन की आवाज़ में कोई गाना होगा, क्योंकि हमारे सिंगर्स ने बहुत सारे गाने किए हैं, प्लेबैक सिंगर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन हमारे एक्टर्स कम नहीं है, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, या फिर हमारे खुद एसआर के हों, भाई सबने अपनी अपनी आवाज़ में एक एक गाना ज़रूर दिया है। और अभिषेक बच्चन की आवाज़ में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 17 राइट हियर राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: हाँ जी, तो भैया उस ओजी पंजाबी सॉन्ग के बाद यानी कि कुलविंदर की आवाज के बाद आपने एंजॉय किया राइट हियर राइट नाउ, सुनिधि चौहान प्लस अभिषेक बच्चन की आवाज थी। और भाई साहब कुछ भी कहो, लिरिक्स बड़ी जबरदस्त लिखी गई थी। और एक बात सही कहा है इन्होंने कि वक्त का क्या भरोसा, बन के पानी बह जाए, और जब तक वक्त है तब तक कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, जिंदगी जी लीजिए, अपने को बता दीजिए, उनके साथ खुश हो जाइए, माफ कर दीजिए, माफी मिल जाएगी। फिलहाल ये सारी बातें हैं जो मुझे इस गाने में काफी पसंद है, प्लस इसका म्यूजिक और अभिषेक बच्चन की वो जो दमदार आवाज है जो शायद मैंने किसी गाने में कभी इमेजिन नहीं की थी कि वो कैसा गाएंगे, कैसा आवाज़ लगेगी, कैसा गाना जाएगा। और इस गाने को सुनने के बाद मेरा सारा डाउट, सारा शक सब कुछ ख़त्म, और लगा था कि अभिषेक बच्चन के आवाज़ में एक ऐसा गाना और होना चाहिए। अब आप बताइए कि आपके क्या ख्याल है। तो आज की प्लेलिस्ट जहां पर हम फॉरगेटन प्लस बैंगर सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं, इसमें होने वाले हैं कुछ ऐसे सिंगर्स की आवाज़ जिनको आपने आई थिंक कभी नहीं सुना होगा, या फिर अभी आप नया नया सुनने वाले हो, या आपने कभी उन्हें सुना है लेकिन अब आपको वो याद नहीं है। क्योंकि जब मेरे साथ भी ऐसा होता है, गाने हम सुनते हैं 4 साल पहले और फिर एआई के साथ अपना माथा मार रहे होते हैं कि भैया हमको ढूंढ के दो। अब एआई मुझसे पूछता है गुनगुना ही दो, हम कहते हैं गुनगुनाना तो आता ही नहीं, वो कहते हैं तो भाई बता ही दो, कहते बताना भी आता नहीं, जताना हमसे होता नहीं, सीखा हमने है नहीं और हमको पता भी नहीं, हमको बस ये याद है कि वो दिखता कैसा था और उसके ऊपर पोस्टर कैसा था और वो थंबनेल से बेचारा ढूंढ रहा होता है कि आपका गाना कौन सा है। और कमाल की बात यह है कि गाना मिलता भी नहीं, हम लोग 1 घंटा गाना ढूंढते हैं साथ में बैठ के, फिर हमको नहीं मिलता है। और आप भी अगर उनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हो ना, तो आपके लिए आज की प्लेलिस्ट काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। अभी तक हमने एंजॉय किए बहुत सारे खूबसूरत प्लस बैंगर सॉन्ग, खूबसूरत तो भैया बात नहीं करेंगे लेकिन हाँ पार्टी सॉन्ग जरूर बात करेंगे, कुछ ऐसे गाने जिन्होंने आपको नाचने पे मजबूर किया। पंजाबी बीट्स आपने एंजॉय किया, बॉलीवुड के बैंगर्स गाने आपने एंजॉय किया, और अब हम आपको लेके चलेंगे उस गाने की तरफ जो ऋतिक रोशन का काफी पसंदीदा किया जाने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग माना जाता है। आवाज है इसमें लकी अली की और इस गाने को आपने जरूर सुना होगा, एक पल का जीना और फिर है जाना। जी हाँ, आप इस गाने को एंजॉय करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अगेन एक हिंदी प्लस एक पंजाबी गाने की तरफ। तो इंतजार कीजिए, हम बताते हैं कि अगला गाना किनकी आवाज में होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए टॉप 20 की अनफॉरगेटेबल, या फिर कहें तो आपकी फॉरगेटेबल प्लेलिस्ट जिसके बाद आज के बाद इसको आप नहीं भूलने वाले हैं, प्लस वो गाने जो है एब्सोल्यूट बैंकर। अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वाली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 16.

0: हां जी, तो लकी अली की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे एक पल का जीना कहो
1: ना प्यार है, कह दिया हमने प्यार है, इस गाने से मुझे बहुत प्यार है। फिलहाल हम आपको बता दें, राजेश रोशन का म्यूजिक है विजय अकेला का बोल, और ये गाना फिल्माया गया था ऋतिक रोशन पर, और उनका आइकॉनिक स्टेप जो आजकल हर दूसरा बंदा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कर रहा है, स्टेज पर कर रहा है, वो इसी गाने से आया है। जी हाँ भाई, एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे रख गया, और सच बताऊँ मैं खुद भी कर रही थी इस गाने के बीच में, और क्योंकि डांस करना नहीं आता लेकिन बैठे बैठे डांस करने का मज़ा बड़ा आता है। फिलहाल आइए चैट बॉक्स में देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है, किनके पैगाम आ चुके हैं और किसने क्या कुछ के भेज दिया है। तो हमारे साथ दीपांशी तिवारी जी जुड़ी हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं टॉप 20 में। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, मैम नमस्कार, नमस्कार आपको भी। कौन सा एक्टर है आज भाई? आज कोई एक एक्टर नहीं है, कोई एक सिंगर नहीं है, आज हम वो सारे गाने लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और आपने कई सारे गाने मिस भी कर दिए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, आगे से मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक बैंगर सॉन्ग्स आज हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आपको सुनने में आएगा मज़ा, प्लस आप अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड करने वाले हैं। सुकून मिलता है अगर अकेले रहो, ये बड़ी गहरी बात कह दी है आपने वैसे तो, और कई लोग इस बात का मतलब निकालिए तब तक कि अकेले रहने में क्यों सुकून आता है। कुछ लोगों को अकेले रहने में तकलीफ है, कुछ को मज़ा आता है, किसी के लिए सुकून है तो किसी के लिए यही सबसे बड़ा श्राप है। आपकी बात बड़ी गहरी है, फिलहाल के लिए समझने में वक्त लगेगा। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। हमारा अगला सॉन्ग होने वाला है सॉन्ग नंबर 15, बब्बल राय। अगर आपने ये नाम कभी सुना होगा तो इनके गाने बैंगर्स होते हैं, और इनके गानों में से एक हम लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की कुछ खबरें आप तक पहुँचा दें, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता है जब आरडी बर्मन की बात आती है, और सुनने में आ रहा है भैया आरडी बर्मन की बायोपिक बनने वाली है। एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर, एक ऐसा सिंगर जिनकी आवाज़ हमने एक्चुअल में सुनी है, और जब ऑटोट्यून जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जब AI नाम का कोई था ही नहीं, कोई फीचर था ही नहीं, कोई टूल था ही नहीं, तब भाई साहब आरडी बर्मन साहब आते थे और वो अपनी आवाज़ दिया करते थे। आशा जी के गानों के पीछे उनकी आवाज़ आपको कई दफ़ा सुनने को मिलेगी, और उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होती थी, इतनी प्यारी होती थी, इतनी एनर्जेटिक होती थी कि लोग सोचते थे कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया है, लेकिन वो आवाज़ होती थी आरडी बर्मन साहब की। और आरडी बर्मन साहब गाने में 4 नहीं 8 चांद लगा दिया करते थे, उनकी आवाज़ सुनते ही स्टेज के नीचे जितनी भी ऑडियंस बैठती थी वो खड़े होकर तालियां बजाती थी। जब भी आशा जी और आरडी बर्मन साथ में आए, उन्होंने ज़बरदस्त हिट बैंगर एब्सल्यूट सुपर टूपर हिट गानों को डिलीवर किया है। और उनके गाने आपको पता है भाई, उनके गाने कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, आज की जनरेशन को भी पसंद है, आने वाली जनरेशन को भी पसंद होंगे ही होंगे, और आपकी जनरेशन को तो ऑफकोर्स पसंद है। फिलहाल इनकी बात आ रही है, सुनने में आया है कि फरहान अख्तर जो हैं वो जा रहे हैं प्ले करने लेजेंडरी आरडी बर्मन की बायोपिक एज अ एक्टर, और डायरेक्ट करने वाले हैं नीरज पांडे। अब आप इंतज़ार कीजिए, अब आप सोचिए भैया आरडी बर्मन साहब अगर आपको फरहान अख्तर के अंदर दिखाई पड़ने वाले हैं तो कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, और वो कैप, वो रेड कलर का स्कार्फ और उनकी वो बेहतरीन सी आवाज़, क्या वो इंसाफ कर पाएंगे, वो जस्टिस कर पाएंगे फरहान अख्तर या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स में। और हम आपको सुनाते हैं बब्बल राय की आवाज़ में वन ड्रीम, यानी कि एक सपना, एक ही सपना पालिए और उसको पूरा कीजिए। फिलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 15, हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: Radio Gala 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 15.

0: और भाई ओले ओले आपका स्वागत करते हैं वापस से टॉप 20 में। और आप सुन रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में ओले ओले। सैफ अली खान पर फिल्माया गया गाना है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ है। और इस गाने का आपने रीमिक्स वर्जन भी देखा होगा उन्हीं की दूसरी फिल्म में ओले ओले 2.0। फिलहाल के लिए मुझे ओजी वर्जन थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है, सुंदर लगता है, गजब लगता है, मज़ेदार लगता है, इसलिए हमने आपको ओजी ही सुनाया है। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अब एक और खान आपके लिए पेश करने जा रहे हैं हम, और वो हैं कोई और नहीं, वो जिन्होंने कभी शादी नहीं की लेकिन शादी वाले गाने बड़े दिए हैं। उनके गाने सुनने के बाद लोगों को लगता है कि भाई हाँ, अगर ये गाने हैं तभी शादी हिट है, अदरवाइज बारात वारात में हिट कुछ भी नहीं है। यूँ तो आजकल हम बहुत सारे गाने सुनते हैं, बहुत सारे गाने प्ले भी होते हैं, लेकिन उनका स्पेशली गाने हमेशा हर बारात के अंदर प्ले होते हैं। हर एक मूव जो सबसे डिफरेंट उन्होंने दिया है, यूं तो डांस करने वाले हज़ारों हैं और कुछ ऐसे हमारे ओजी एक्टर्स हैं जिन्होंने डांस मूव के नाम पर भैया या तो कुछ किया नहीं है और फिर भी गाना हिट हो गया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गाने से हटकर डांस किया है और आज उनके जो स्टेप्स हैं वो इतने वायरल हैं, इतने वायरल हैं, इतने वायरल हैं, इतने वायरल हैं कि कितने वायरल हैं ये बताने बैठूंगी तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन वो गाने ख़त्म नहीं होंगे। आपने देखा होगा उनको नो एंट्री में उनके कमर चलाने का जो स्टाइल है वो आज भी लोगों के बीच में पॉपुलर है और आज भी लड़कियां उनकी कमर की स्टाइल को कॉपी कर रही हैं। जैसे ही सलूमिया की एंट्री होती है भाई सब लोग साइड हो जाते हैं, हटो हटो साइड हटो, क्योंकि सलूमिया आ चुके हैं और आज भी लोग उनको बड़े प्यार से कहते हैं सल्लू भाई, सलूमिया, न जाने किन के नामों से वो जाने जाते हैं। और उनके ओजी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो पहले ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपनी फिल्म में अपने गानों में बिना किसी शर्ट के एंट्री की थी और लड़कियों को दीवाना कर दिया था, इवन लड़कों को भी किया था, क्योंकि भाई उनकी फिजिक्स बड़ी हार्ड थी उस टाइम, जब 6 पैक्स 8 पैक्स एंड बॉडी शॉडी बाइसेप ट्राइसेप इतना नहीं चल रहा था भारत में, तब उनके पास वो फिजिक थी जो आजकल के लड़कों की डिमांड होती है, जिसके लिए वो जाकर जिम में 3-3 घंटे 4-4 घंटे डंबल्स लगा रहे हैं स्पेशली हर कोई। तो भैया जहां उस वक्त ट्रेंड सेट करने वाले वो थे और जो ट्रेंड आज भी फॉलो चल रहा है, तो आइए उन्हीं का गाना सुन लेते हैं। और उनका वो पहला गाना जिसमें उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी थी और उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये गाना इतना हिट होने वाला है, क्योंकि सिंगर की आवाज़ भी नई नवेली थी, अभी तक उनकी आवाज़ जो जितने आ रहे थे जो प्लेबैक सिंगर थे वो थे बाला सुब्रमण्यम जी, और इस बार गाना किसी और के हाथ लगा था, डायरेक्टर को भी आइडिया नहीं था, सिंगर के लिए भी पहली बार गाना था, थोड़ा सा डर डर के थोड़ा सा नर्वसली उन्होंने इस गाने को गाया था, लेकिन जब ये गाना हिट हुआ है तब उन्हें पता चला भाई कि क्या ही खूबसूरत है ये, जबस एक एक्सपेरिमेंट था बिना शर्ट के और नई आवाज़ के साथ डांस करना। तो गाना है ओ ओ जाने जाना और ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। फिलहाल के लिए आइए दोबारा से इन्जॉय करते हैं, उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको एक और खान की तरफ और हम आप मिलाएंगे उनके एक बैंगर सॉन्ग से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 13.

0: हां जी, तो आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 13 ओह जाने जाना। और इस जाने जाना को सुनने के बाद भाई चैट बॉक्स में मनु शर्मा जी ने तो कर दी है इमोजीज की बारिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हमारे सॉन्ग नंबर 12 की तरफ और आप करने जा रहे हैं 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, क्योंकि भैया खड़े हो जाइए, अब आ चुके हैं शाहरुख खान यानी कि आपके बादशाह, आपके SRK और उनकी जबरदस्त हिट वाली फिल्म जिसने सबको गुदगुदाया, सबको हंसाया और आज भी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। प्लस उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शेट्टी एक बार वापस से कुछ ऐसी फिल्में लेकर आएंगे जो इसी तरह से होगा, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार वापस स्क्रीन पर दिखेगी और वो हमें यूं ही हंसाएंगे। गाना सुनने जा रहे हैं आप चेन्नई एक्सप्रेस से, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, क्योंकि भैया इसने बहुत हंसाया है, बहुत मजा आता है। और जब भी वो कहते हैं ना कि मिनम्मा मुड़ैल हो गई, मिनम्मा चुड़ैल हो गई, आई लव दैट डायलॉग, इतना ज़्यादा पसंद है मुझे वो सीन, इतना पसंद है, इतना बढ़िया लगता है जिसमें स्पेशली वो कहते हैं तेरे अप्पा का स्कूटर है कि जो तू किक करती, ये डायलॉग आपने भी सुना होगा, आपको पसंद है। और इसके अलावा एक डायलॉग और है जो आप सब बताइएगा, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है और आज हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं खुद को जब चैलेंज में देखता है तो वो ये डायलॉग जरूर मारता है। वो डायलॉग कौन सा है बताइए। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 13, मिलते हैं अगले बीट अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैलेक्सी 9.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं अंग्रेजी वाली मैडम, और ये गाना है कुलविंदर बिल्ला की आवाज में। आपने एंजॉय किया पंजाबी बीट वाला गाना। और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं हमारे पास किन किन के मैसेजेस और आ चुके हैं और हमारे साथ अब कौन जुड़ चुका है। तो भाई काफी सारी जो मैसेजेस हैं, काफी सारे जो इमोजीज हैं, वो मनीष शर्मा जी की तरफ से आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं के गुप्ता जी, जो मैं सुन रहे हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, लिख रहे हैं 300 के स्पीड वाले। आजमती जी नमस्कार। नमस्कार आपको, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं टॉप 20 में। एंड प्रियमती जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसके बाद संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में। एंड इसके बाद का सो फास्ट सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और गाने आपको ऐसे ही सुनने को मिलेंगे 20 नंबर से लेकर के लास्ट तक। मे भी लास्ट में थोड़े से स्लो डाउन हम कर देंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, शाम के वक्त में हम चल रहे हैं और धीरे धीरे गानों की स्पीड कम होगी, लेकिन अभी नहीं भाई। अब हम आपको लेकर चलेंगे हनी सिंह की तरफ। हनी सिंह के आपने बहुत सारे गाने सुनेंगे, बहुत बैंगर सॉन्ग सुने होंगे, लेकिन एक गाना ऐसा है जो बड़ा सूथिंग है, बड़ा कामिंग है, और इसको सुनने के बाद आपका दिल गार्डन का आनंद हो जाएगा, प्लस आप किसी रोमांटिक मौसम में गोते लगा रहे होंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं कॉल ऑन दी, और ये गाना है हनी सिंह की आवाज में, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गाना सरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे आपका बेहतरीन वाला गाना, सॉन्ग नंबर 10, हनी सिंह की आवाज़ में कॉल ऑन दी। और जो लोग ये कहते हैं ना, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई 10,000 फुट स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको 10,000 कदम रोज़ चलना है, और आप लोगों को लगता है यार कौन चलेगा, कितना बोरिंग होता है, भाई कुछ बोरिंग नहीं होता है। अगर आप इस तरह की प्लेलिस्ट को सुनते हैं या फिर इनमें से कोई 2-3 गाने उठाकर रिपीट में 3 से 4 बार सुन लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने कदम चल चुके हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब कोई काम करना होता है, घर में सफाई करनी हो, बर्तन धोने हो, खाना बनाना हो, या फिर करना हो फुटस्टेप्स को कंप्लीट, तो लगता है बहुत बोरिंग काम है, बहुत वक्त ले जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई बढ़िया सा गाना चल जाता है ईयरफोन्स के अंदर, और उसके बाद हमारे हाथ पैर चिट्टीदार रोबो की तरह चलते हैं। डोरेमोन छोड़िए, जैसे वो चिट्टी काम करते हैं ना, पूरे घर में घूम घूम के ऐश्वर्या राय को कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे ही मेरी हालत हो जाती है। मैं पूरे घर में घूम घूम के काम कर लेती हूँ, मेरी मम्मी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है। मेरा फोन कह देता है भैया आपके फुटस्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हम कहते हैं अरे छोड़ो यार, अभी तो चलना ही शुरू किया है, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, चलने तो थोड़ा और चलने, तो मज़ा आता है चलने में। वो पता चलता है जब ईयरफोन निकाल देते तब पता चलता है कि पैरों की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो भैया आप भी ऐसे गानों को इन्जॉय करते करते ही अपना वर्कआउट कीजिए, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, आपके फुटस्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपका फिटनेस भी बरकरार रहेगी, प्लस आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना काम चुटकियों में कर लिया। इसी के साथ आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 9 की तरफ, और आप सुनने जा रहे हैं बेशरम बेशरम हो जा तू बेशरम। वैसे ऐसा गाना है नहीं, म्यूजिक कुछ और है, ट्यून कुछ और है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो तक आप गेस कीजिए कि इस बेशरम में कौन सा वाला म्यूजिक डाला गया है, और आप इन्जॉय करते रहे। मिलते हैं अगले बीच पर अगले न्यूज के साथ, अब तक के लिए स्टूडियो एंड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

अंजी, तो आप सुन रहे थे बेशरम। रणबीर कपूर पे फिल्माया गया गाना, आपने एंजॉय किया। और हमारे भाई के जी पूछ रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ स्टूडियो डांस करने। बेशक आइए और डांस कीजिए, मिलके डांस करेंगे। फिलहाल के लिए के जी लिख रहे हैं, आज के दिन की बजाय कब स्टूडियो आऊँ, क्यों रति जी आपसे मिल जाऊँ। वेल, आप कभी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, सिर्फ थर्सडे को छोड़ के, यानी कि बृहस्पतिवार को हम आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आप कभी भी आएंगे तो हम आपको ज़रूर स्टूडियो में ही मिलने वाले हैं। एंड ओके, कोई 90s का सॉन्ग भी है क्या आज? बेशक है, यूँ तो आपने देर कर दी और हमने कुछ गाने सुन भी लिए हैं 90s के, लेकिन अभी भी इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी कुछ गाने हैं जो हमारे पास है जो कि 90s के ही हैं, सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप इंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर एट। और आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसा गाना जिसको सुनने के बाद आप भी करेंगे धत तेरे की, क्योंकि गाने का नाम ही है धत तेरे की। मुझे घर नहीं जाना। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे करण की आवाज में तौबा तौबा, और हम आपको लेकर चलेंगे अपने अगले गाने की तरफ। और अगला गाना ऑन डिमांड होने वाला है, मतलब डिमांड नहीं है, मैं आपको बता दूं कि डिमांडेड सॉन्ग आज हम प्ले नहीं करते हैं, बट क्योंकि हमारे के जी को 90s का गाना सुनना था, और ऑफ कोर्स हमारी प्लेलिस्ट में 90s के गाने ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो भैया उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी, प्लस आप भी इंजॉय करने वाले हैं उस गाने को जिसमें है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि भैया इस गाने को सुनने के बाद ना मेरे पैर बहुत ज़ोर से थिरकते हैं, और इस गाने को हम ज़रूर गाते हैं, और गाना हम गाते पता किसके लिए, अपनी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी के साथ हम इस गाने को डेडिकेट कर रहे होते हैं, उनके सामने गा रहे होते हैं, और मेरी मम्मी हंस रही होती है कि क्या क्या पागल लड़की है ये, और उस पागलपन में हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिलहाल हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी जुड़ गए हैं, जो जिनका स्वागत कर लेते हैं हम इंटर टॉप 20 में, और आप सुन रहे 89.6 FM गोला शहर की धड़कन पर आरशुनती के साथ आपकी आफ्टरनून वाली प्लेलिस्ट, यानी कि इंटर टॉप 20 की सुपर डुपर हिट फॉरगेटन प्लेलिस्ट, बैंगर सॉन्ग्स जो कि एब्सोल्यूट बैंगर है ऑफकोर्स, और आप सुनने जा रहे हैं सॉन्ग नंबर 6, ये तेरी आंखें झुकी झुकी या तेरा चेहरा खिला खिला।

द हैप्पी कपल, उनके दोस्त इंद्रजीत सक्सेना।

0: हां जी, तो 90s का ये वो बैंगर सॉन्ग था जिसको एंजॉय करने के बाद ऐसे ही तालियां बजानी चाहिए जैसे कि बैकग्राउंड में बज भी रही हैं। और भाई के जी का दिल हो चुका है खुश क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी 90s के गाने की, और उनकी डिमांड पर या फिर कहें तो हमारी प्लेलिस्ट में बाय लक के 90s का सॉन्ग बज भी गया था। वैसे 90s में सिर्फ एक गाने नहीं है, 3-4 गाने और भी हैं मेरे पास जो मैं आपको बैक टू बैक सुनाने वाली हूँ। तो आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 5 की तरह, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं शाहरुख खान पर फिल्माया गया सॉन्ग सुनो ना, और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे बॉलीवुड की न्यूज़ की तरफ जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि इंटरटेनमेंट होता है बॉलीवुड की न्यूज़ और बॉलीवुड की इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ ऐसी कहानियों की जो मैं आपके साथ हर संडे शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए इंटरटेनमेंट आपके अपने वाले रेडियो 89.6 FM यही गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आर चुनौती के साथ। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 5।

हाँ जी, तो आपने सुना शान की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग सुनो ना। और इस गाने को सुनने के बाद आपने भी गौर किया होगा कि भाई शान की आवाज़ बड़ी सूथिंग है। और इसी के साथ आइए लेके चलते हैं हम आपको एक फिल्म की तरफ जो कि इम्तियाज़ अली की है, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म को डिलीवर तो किया है, लेकिन हम आपको बता दें भैया अभी तक उनकी फिल्म जहाँ हिट करती है वहीं पर ये वाली फिल्म लोएस्ट कमाई कर पहले दिन की ओपनिंग कर चुकी है। हम आपको बता दें सिर्फ 1.15 करोड़ रुपीज़ इकट्ठे किए हैं, यानी कि कलेक्शन में सिर्फ अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास की कमाई हुई है। इम्तियाज़ अली की पहली फिल्म एक ऐसी रही है जिसकी ओपनिंग इतनी ज़्यादा कम हुई हो। अदरवाइज़ इम्तियाज़ अली की फिल्में बहुत ज़्यादा ओपनिंग के साथ ही कलेक्शन करती हैं, प्लस हिट होती हैं, लोग उनको बहुत डीप लेते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, प्लस उनकी फिल्में ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। जिन्हें भी थोड़ी सी डीप मीनिंग वाली फिल्में देखने को पसंद हैं वो इम्तियाज़ अली को बहुत पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। स्पेशली उनकी फिल्मों का एक जो सीन होता है जब उनका मेन एक्टर या एक्ट्रेस अकेले बैठकर कुछ खाते हैं, और वो सीन लोग अपनी लाइफ में दोबारा से क्रिएट भी करते हैं और कहते हैं कि इसका मीनिंग बहुत डीप है। वहीं पर उनकी जो फिल्म है मैं वापस आऊँगा, उसने सिर्फ कलेक्ट किया है 1.5 करोड़, जो कि अभी तक की उनकी सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हालांकि ये पहला दिन था, यानी कि ओपनिंग था, और ओपनिंग में ही इतनी कम कमाई हुई है जो अभी तक नहीं हुई थी, तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात भी रही है। अब आप बताइए क्या आप इस फिल्म को देखने गए थे या नहीं। और हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं इट्स कुमार जी, लिख रहे हैं गुंडा ही कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं चैट ट्वेंटी में। और आइए लेके चलते हैं हम आपको अगले गाने की तरफ, और अगला गाना होने वाला है 90s का वो

0: दिल जिसको जो आपके दिल को धड़कने पे मजबूर कर देगा, दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए इंडिया टॉप 20। मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 4।

0: हाँ जी, तो एक छोटे से टेक्निकल ग्लिच के बाद आपने एंजॉय किया दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुमार सानू की आवाज में, तेरा मेरा प्यार। और ये 90s के जितने भी किड्स हैं उनका फेवरेट गाना होने वाला, फिलहाल जो किड्स नहीं हैं अब तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन उनको पसंद काफ़ी ज़्यादा आने वाला है ये गाना कुमार सानू की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग और ऑलमोस्ट आपका भूला हुआ गाना तेरा मेरा प्यार। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 3।

0: कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे हैं तेरा मेरा प्यार, और उसी के साथ हम आपको बता दें भाई, अगर आप इंतजार कर रहे हैं इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 यानी कि एक सिक्वल की, तो इसका रिलीज डेट आ चुका है और सुनने में आ रहा है कि भैया नियर बाई थिएटर्स यानी कि आपके पास के थिएटर्स में ये कुछ 1 जुलाई 2026 को नजर आने वाली है। और इसके अंदर इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी दिशा पटानी, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं आवारापन 2 के, उनके लिए काफी एक्साइटमेंट प्लस काफी खुशी की बात है ये कि आप 1 जुलाई को मे बी इसको देख सकते हैं। एंड आई होप आप 1 जुलाई को ही देखें, इसकी डेट आगे ना बढ़ाई जाए। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। बैक टू बैक आप 2 गाने सुनने जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था कि शाम होते होते हम अपने बीट्स को थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, और अब हम आपको लेके चलते हैं सॉन्ग नंबर 2 दिल आजकल, और सॉन्ग नंबर 1 आपका पसंदीदा, मेरा पसंदीदा बस एक पल। और इसी के साथ आप मुझे जरूर बताइएगा कि भैया आपकी आपको आज की प्लेलिस्ट कैसी लगी, क्योंकि घड़ी ने भी इशारा कर दिया वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो स्वास्थ्य वाले के यानी कि हेल्थ वाले प्रोग्राम के लिए ज्ञान असली में। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM है गोला शहर की धड़कन पर। आरजीनती के साथ आपने एंजॉय किया है 20। सुनने चाह रहे हैं आप बैक टू बैक 2 सॉन्ग, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, अपने रेटिंग जरूर से दीजिएगा। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे एप्लीकेशन से, फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार 2 घंटे हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप आप हमारे साथ आगे भी बने रहने वाले हैं हेल्थ वाले शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले वाले कार्यक्रम में।
1: रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
6: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
5: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
6: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
5: जी।
6: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
5: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
6: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
6: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
6: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
6: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
5: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
6: जी आज दीदी,
5: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
6: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
5: जी।
6: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
5: जी।
6: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
5: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
6: जी दीदी
5: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
6: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
5: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
7: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
7: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
7: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
5: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
7: बहुत सारी,
5: जैसे?
7: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ
5: जी।
7: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं। कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
5: और बाकी?
7: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
5: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
7: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
5: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
7: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है
5: जी।
7: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी
5: जी,
7: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
5: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
7: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
5: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
7: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
5: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
7: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
5: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
7: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
5: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त,
9: और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ Unnati। और मेरे साथ मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हर संडे आते हैं हमारे साथ और आपसे करते हैं डायरेक्ट बातचीत आपके अपने स्वास्थ्य पर, यानी कि आपके अपने हेल्थ पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञानस्थली, आपके हेल्थ वाला प्रोग्राम, आपके अपने रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त हो चला है आपके इस बेहतरीन से कार्यक्रम का, जो कि हम सेहत सही लाभ की बैनर के तले लेकर आते हैं स्मार्ट NGO और रेडियो ज्ञानस्थली की खूबसूरत सी पहल। और इस पहल के अंदर बात होती है सेहत पर, यानी कि स्वास्थ्य पर, बिकॉज हम बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ।
10: जी हाँ, तो उस वेल्थ का, यानी कि आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हम एक बार फिर आ चुके हैं आप सभी के बीच। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, चैट बॉक्स में आ जाइए, हमें कॉल करके या मैसेज करके आप हमें अपनी बीमारियों से या जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
9: तो भाई, आप कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर, या फिर हमें डायरेक्ट चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जब तक आपके सवाल, आपके कॉल्स आते हैं, तब तक हम कर लेते हैं सवाल, यानी कि मैं कर लेती हूँ सवाल। वो यूपी वाला टच अभी भी हमारे अंदर रहता है और हमेशा हम बोलते हैं।
10: जी हाँ, बिल्कुल, और हमें लगता है कि हम भी इस यूपी वाले टच को कहीं ना कहीं फॉलो कर ही जाते हैं जाने अनजाने में। तो चलिए पूछिए, और लोगों को भी बताइए कि हर बार की तरह आज का क्या वो नया टॉपिक आप लेकर के आई हैं।
9: फिलहाल आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ जो अभी काफ़ी चल रहा है, डॉक्टर्स लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं और सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, वो है HPV।
10: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि HPV अब भी स्टिल, मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी, और मतलब और भी जो दूसरी अवेलेबल उसके ऑप्शंस हैं, उसके जो काउंटर हैं, उनके बाद भी मुझे लगता है कि ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ मरीजों के लिए ये जानलेवा भी हो जाता है।
9: सर, मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगी कि HPV होता क्या है, जिससे हमारे लिसनर भी समझ सकें कि ये क्या है, क्यों है और किस लिए है।
10: बिल्कुल, जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई बीमारी लेकर के आते हैं और उस बीमारी के बारे में डिटेल्स हम लोग बताते हैं अपने मरीजों को, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मरीजों को मुझे लगता है लाभ भी मिलता होगा। और उसी तरह आज हम जिस बीमारी पे बात करने जा रहे हैं, वो बीमारी और कुछ नहीं, एक प्रकार के वायरस से पैदा हुई बीमारी, वायरस से पनपी हुई बीमारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इस नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। और चूंकि जैसे दूसरी वायरल बीमारियां होती हैं, जो कि कुछ साधारण होती हैं, कुछ असाधारण होती है, तो ये साधारण वायरल बीमारी में से ना होकर के बल्कि एक असाधारण वायरल बीमारी है।
9: ओके, ये वायरल बीमारी है। सर, मुझे बता सकती है ये होती कहाँ पर है मेनली?
10: देखिए, HPV जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके जो आपको मतलब पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, ये कुछ पेशेंट्स तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे किसी फीमेल के गर्भाशय में वजाइना के माध्यम से, योनि के माध्यम से वो प्रवेश कर जाता है। और समटाइम्स ये स्किन पे, कुछ जो मतलब इंसान की त्वचा पे, वो एक रूखे मस्से जो बड़े होते हैं और उनमें से एक ड्राई कैरेटिनाइज्ड टिश्यू निकलने लगता है बाहर, वो जो होता है इस स्ट्रक्चर का, तो स्किन पे भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके आसपास भी देखने को मिलते हैं, एंटीरियर प्राइवेट पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, और मतलब बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है, बट सबसे ज़्यादा मेजरली हमें स्किन या प्राइवेट पार्ट के आसपास, जेनाइटल एरियाज या इंट्रा वजाइनल या फिर इंट्रापेनाइल पार्ट्स में हमको देखने को मिलते हैं।
9: क्या ये एक दूसरे से फैल भी सकता है?
10: जी बिल्कुल, ये कंटामिनेबल डिसीज़ है, और ये मतलब ऐसे जनरल टच से तो नहीं फैलता है, बट हाँ, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और सेक्सुअल रिलेशन जैसी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा चांसेस और ख़तरा रहता है इसके ट्रांसमिट होने का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक।
9: ओके, तो भैया ये थी HPV की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर की, और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज भी लोग इसकी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आकर के कई शिविर लगा रहे हैं, कई अवेयर कर रहे हैं, इसके बाद भी HPV वैक्सीन की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। वैसे आप बता सकते हैं लोग वैक्सीन के नाम पर इतना डरते क्यों हैं?
10: देखिए, चूंकि जो वैक्सीन है हमारे बचपन से लेकर के, मतलब जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर के, और वैसे तो पहले मतलब बहुत एडल्ट एज पे वैक्सीन्स नहीं लगती थी, एक 5-7 के साल की उम्र के, 10 साल की उम्र पर लगती थी, बट अब चूंकि बीमारियां भी नई नई हैं तो वैक्सीनेशन भी तरह तरह के हो रहे हैं। जैसे कोविड का वैक्सीनेशन, मुझे याद है कि पोलियो के बाद कोई दूसरा वैक्सीन अगर लिया होगा तो कोविड का ही वैक्सीन लिया होगा। चूँकि वैक्सीनेशन जो है ये इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जाती है, और वैक्सीन अक्सर करके उन्हीं बीमारियों की बनती है जो बहुत गंभीर बीमारियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो लोगों के दिमाग में एक मतलब माहौल क्रिएट करती हैं कि ये बहुत गंभीर है, थोड़ा सा लोग डरते हैं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। कुछ अफवाहें भी फैल जाती हैं, जैसे कि कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको लेकर के बहुत सी अफवाहें मार्केट में थी कि इसको लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं।
9: हाँ, बच्चे, हर वैक्सीन के बारे में मैंने पहली खबर यही सुनी है।
10: जी, लोग नपुंसक हो जाते हैं, लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, या फिर और भी मतलब तरह तरह की बातें, कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कोरोना हो गया, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है अफवाहें भी आ जाती हैं जो लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर देती हैं।
9: और ये भी हुआ था कोविड के इंजेक्शन के बाद, वैक्सीन के बाद, कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और जितने भी लोग वैक्सीन लगा रहे थे अब वो डर रहे थे कि अरे अब कहीं मेरी बारी तो नहीं है, मेरी बारी तो नहीं है, ऐसा उन्होंने काफ़ी सोचा था। लाल, क्या आपको सच में लगता है कि कोई वैक्सीन किसी को नपुंसक कर सकती है?
10: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन जो होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं किसी न किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने के लिए।
9: बिल्कुल,
10: उसमें ऐसा कुछ होना जो इंसान को इनफर्टाइल बना दे, वैसे तो बेसिकली 99% नहीं होता है, बट हाँ, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा पाया गया है कि किसी को वैक्सीनेशन लगा उसके बाद उसको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हुई, तो एक मतलब डाउट का एंगल लोगों का जाता है, बट ऐसा कोई क्लिनिकली प्रूवन ऐसा कोई केस अभी तक देखने को नहीं मिला है।
9: और ये केसेस 0.1% के अप्रॉक्स होते होंगे।
10: अब देखिए, चूंकि ऐसे कुछ स्टडीज जिस पे बहुत डीप रिजल्ट नहीं आ पाता है उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल ये 0.01% के चांसेस तो हर जगह रहते हैं, तो यहाँ पर भी वो रह सकते हैं।
9: एंड मे बी ये भी तो हो सकता है कि वो पहले से ही इनफर्टाइल हो, शादी के बाद उन्हें पता चला है तो उनको लगता हो कि बस ये वैक्सीन लगवाने की वजह से हुआ।
10: एग्जैक्टली, वही डेटा की कमी यही होती है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं होता है एक्सेप्ट पेशेंट के ओरल डिटेल के अलावा, जो उतना वो ओरली हमको बताता है, हमें उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस ने अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त किया है।
9: ऑल राइट, वैक्सीन के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि HPV कितने तरीके की होती है, प्लस कौन सी वाली ज़्यादा खतरनाक होती है।
10: बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज भी HPV मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां जो आगे चल के दूसरी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाए और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाए, ऐसी बीमारियां कुछ गिन चुन के हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, उन्हीं में से एक HPV भी आती है। और HPV एक ऐसी बीमारी है जो कि आगे चल के कैंसर तक जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है।
9: ओके, तो पिछली बार हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जाना था कि जो TB की बीमारी है वो जाकर भी कहीं ना कहीं कैंसर बन जाती है, और अब HPV की बात कर रहे हैं तो HPV भी आगे जाकर कैंसर बदल सकती है।
10: जी
9: फिलहाल सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर, जिसको सर्विकल कैंसर भी कहते हैं, और HPV, दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
10: हाँ, ये जरूर आपको बताना चाहेंगे हम आपको कि ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो सर्वाइकल कैंसर को और HPV को डिफरेंशिएट करता है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सर्वाइकल, चूंकि मैं पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सर्वाइकल ये वर्ड दो जगह के लिए यूज़ होता है, एक हमारे गर्दन के लिए और दूसरा हमारे सर्विक्स यानी कि फीमेल के गर्भाशय के लिए। जो गर्भाशय की, महिला की गर्भाशय की जो द्वार होता है, जो जो वजाइना और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करता है, जो उसका जंक्शन होता है, वो पोर्शन जिसको कहते हैं लोग बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है डिलीवरी के दौरान भी, एक फिंगर टू फिंगर ऐसा लोग बताते हैं, वो एक्चुअली सर्विक्स होता है, जिसको बच्चेदानी का मतलब द्वार भी कहते हैं। उस एरिया में कैंसर की जो पेशेंट्स हैं, जो कि गर्भाशय के और इंट्रावजाइनल कैंसर के हैं पेशेंट्स, उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर पाया गया है सर्विक्स पे, यानी कि जो गर्भाशय का द्वार है उस जगह पे सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। अब कैंसर एक साधारण बीमारी मतलब नहीं है, जो कि एक बहुत ही जटिल समस्या है, किसी भी जगह पे जैसा होता है, लंग्स में, पेट में, लीवर में, किडनी में, माउथ में, जहाँ पे भी कैंसर होता है उसी तरह गर्भाशय के द्वार का भी कैंसर होता है, यानी सर्विक्स का भी कैंसर होता है। अब कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, कई बार ये जेनेटिकली होता है रीज़न इसका, कई बार मतलब लो हाइजीन के चलते धीरे धीरे वो जो वजाइना होता है या उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और उसमें जेनेटिकली कुछ चेंजेस आते हैं जिससे जो सेल डिवीज़न होता है वो कैंसरस सेल डिवाइड होने लगती हैं। बट सर्वाइकल कैंसर के सबसे मुख्य कारणों में एक कारण HPV भी है, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण, मतलब किसी महिला को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण हो गया और वो संक्रमण धीरे धीरे आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो HPV के वजह से कैंसर हो सकता है, बट कैंसर डिफरेंट है, HPV डिफरेंट है। कई बार HPV वो कारण होता है जिसके वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये एक बहुत मेजर कारण है। बट HPV एक तरह की वायरल बीमारी है, और कैंसर एक प्रकार की कोशिकाओं का जो कैंसरस सेल्स में तब्दील होना होता है, ये कंडीशन कैंसर कहलाती है।
9: ओके, तो भैया अब बात कर लेते हैं ये कि HPV किस एज ग्रुप को ज़्यादातर होती है।
10: देखिए, वैसे तो ये एक वायरल डिसीज़ है, इसलिए इसमें एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पर ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास HPV के आते हैं, एक्टिव पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, वो ओवर 30 ईयर मतलब 25 से 30 साल के ऊपर के ही देखने को मिलते हैं। और चूंकि इस HPV यानी पैपिलोमा वायरस में क्या होता है कि कई बार ये आपके बॉडी में साइलेंटली बहुत छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और वो धीरे धीरे आपके बॉडी में ग्रो करता रहता है और कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करता है, इसलिए लोगों की वो नज़र उस पर नहीं जाती। और अगर इनर पोर्शन में है बॉडी के किसी इंटीरियर पार्ट में है तो समटाइम्स वो डिटेक्ट होने में बहुत लेट हो जाता है और वो अर्ली डिटेक्शन उसका नहीं हो पाता है।
9: अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जिनको HPV कभी होता है क्या वो कभी ठीक भी हो सकता है?
10: देखिए, चूंकि HPV के अगेंस्ट जो एंटीवायरल थेरेपीज होती हैं, मतलब जो वायरसेस होते हैं उसके लिए जो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो दवाइयां बनी हैं, जैसे बैक्टीरियाज के लिए एंटीबायोटिक्स बनी हैं तो उसी तरह वायरस के लिए एंटीवायरल्स बने हैं, ऐसा कोई FDA अप्रूव्ड एंटीवायरल अभी तक तो नहीं है जो प्रॉपर HPV को फुल्ली डिस्ट्रॉय करने का दावा करता हो। बट इसकी जो सर्जरी है वो डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट थेरेपीज से कंबाइंड है, वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा कारगर होती है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है।
9: ऑल राइट, और अगर हम मेल्स की बात करें तो क्या उन्हें भी HPV हो सकता है और उन्हें मेनली कहाँ पर होता है और उनका उनके लिए मेन खतरा क्या होता है?
10: जी बिल्कुल, मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स को भी पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है। मेनली मेल्स को स्किन वगैरह पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, जेनाइटल एरिया के आसपास भी बहुत सारे इसके केसेस पाए गए हैं और यूजुअली कोई जो इंट्रा जेनाइटल एरियाज हैं जैसे पेनिस के अंदर, प्रोस्टेट में या इन सब चीज़ों में, वैसे बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस आते हैं और वो भी ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो पाते हैं कि ये HPV का ही कॉज से हुआ है या किसी और कॉज से हुआ है।
9: यानी कि फीमेल्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है।
10: हाँ, ज्यादातर इसके केसेस जो हैं वो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, बट मेल्स को भी हो सकता है।
9: मेल्स को भी हो सकता है, ये बेफिक्र होकर ना बैठ जाइए आप कि हम तो लड़के हैं हमको तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फीमेल्स को ही थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसीलिए वैक्सीन पर इतना जोर दिया जाता है। सर, मैं वैक्सीन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि जो HPV की वैक्सीन होती है इसे कब कब और कितनी दफा लगवाना चाहिए?
10: देखिए, जो HPV की वैक्सीन्स होती हैं
9: जी,
10: वैसे तो इस पे भी काम चल रहा है जो सिंगल डोज वैक्सीनेशंस हों, बट इससे पहले कुछ मल्टी डोज वैक्सीनेशंस भी थे जिनका एक रेगुलेटेड टाइम होता है कि हाँ इतने इतने टाइम पे आपको वैक्सीन्स लगवाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के बारे में जो भी रिसर्चेस चल रही हैं, हम लोग बहुत जल्दी इसको भी अचीव कर लेंगे कि हम लोग सिंगल डोज वैक्सीनेशन से ही HPV जैसी समस्याओं को हम लोग उसका निदान कर सकें। और चूंकि ये जो वैक्सीनेशन है, चूंकि HPV का वैक्सीनेशन स्पेशली महिलाओं में ज़्यादा जोर दिया जाता है, फीमेल्स को ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप HPV का वैक्सीनेशन करवाएं, तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारी प्रोटोकॉल वाइज और सारी डिटेल वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। इसके लिए बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जिला अस्पताल होता है या महिला अस्पताल होता है, जिला महिला अस्पताल, वहाँ पे आपको HPV के वैक्सीनेशंस, उनके सारे डोजेज और सारी डिटेल्स वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं।
9: ऑलराइट, और हम आपको बता दें, कई लड़कियों का सवाल ये होता है कि अगर हमारी शादी हो चुकी है या हम सेक्सुअली एक्टिव हैं तो भी क्या हम HPV का वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं?
10: जी, जिनकी शादी हो चुकी है, जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्रेगनेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो आप HPV का वैक्सीन लगवा सकते हैं।
9: प्रेगनेंसी कंसीव करने के कितने महीने पहले हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए?
10: देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एटलीस्ट 6 महीने पहले आप इसका वैक्सीनेशन करवाएं, या वैक्सीनेशन करवाने के 6 महीने बाद आप जो है इसका मतलब फैमिली प्लानिंग वगैरह को प्लान करें।
9: ऑलराइट, भाई ये तो थे आपके कुछ मेनली सवाल जो मैंने अपने नज़रिए से पूछ लिए। अब आपके अगर कोई सवाल हैं HPV को लेकर के तो हमें ज़रूर से बताइएगा। और अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, लक्षणों की
10: जी,
9: कि अगर किसी को HPV होता है तो उसे कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे वो ये कन्फर्म कर सकते हैं कि उन्हें HPV है या फिर कुछ और। सर, पहले आप मुझे HPV का बताइए, उसके बाद हम सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे और दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस तरह से दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते
10: जरूर
9: हैं।
10: देखिए, HPV जो होता है, इसको अगर मान लीजिए आपके बॉडी के आउटर पोर्शन पे है, आउटर पार्ट पे है, तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा इजी होता है। अगर इनर पोर्शन, इनर पार्ट पे है तो सिम्टम्स थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं।
9: Okay.
10: फिलहाल हम चूंकि सर्वाइकल कैंसर और सर्विक्स से संबंधित चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो हम लोग इनर पोर्शन पे लेके चलते हैं। एचपीवी स्ट्रेन आपके बॉडी में एंटर करने के विद इन कुछ डेज।

0: लगाया जा सकता है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम है जो कि आपकी नॉर्मल पीरियड से हटके है। इसके अलावा फिर वो टेस्ट ही होते हैं जो उनका कन्फर्मेटरी वो करते हैं। टेस्ट के विदाउट इसको 100% कंफर्म करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये बॉडी के एंटीरियर पार्ट्स में है, एंटीरियर पोर्शंस में है, तो अगर एक्सटीरियर पोर्शंस में है तो देख करके उसको मतलब ऐसा जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये HPV है।
1: ओके तो मैंने सिम्टम्स की बात की, पर मेरे दिमाग में ना एक सवाल चल रहा है। जो आपने इसका फुल नेम लिया था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मैं जानना चाहूंगी कि हम वैसे तो कई सारे बीमारियों के नाम रखते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, वो किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया से जुड़े होते हैं,
0: जी
1: हम इसको इस नाम से क्यों बुलाते हैं?
0: देखिए, जो इस वायरस का जो सबसे पहला हमने आइडेंटिफिकेशन किया था, तो इस वायरस में वार्ट्स आते थे। हाँ,
1: वार्ट्स
0: वार्ट्स
1: मीनिंग
0: मतलब फोड़े टाइप के,
1: ओके
0: मतलब फोड़े टाइप के ऐसे होते थे, और उनको लैटिन लैंग्वेज में पैपिल्स भी बोलते हैं।
1: ओके
0: तो वो वायरस जो मतलब वो वायरस जो कि ऐसे पेपिल्स जो है उनको क्रिएट करता है, और वो आगे चल के एक स्पेसिफिक गांठ बना देता है। जैसे आप समझिए कि जो दूसरे क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम स्किन के आउटर पोर्शन पे अगर इस पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप जो दूसरे वायरल इन्फेक्शंस देखेंगे वहाँ पे आप पाएंगे कि उन वायरल इन्फेक्शंस में ब्लिस्टर्स पड़ रहे हैं,
1: छाले
0: छाले पड़ रहे हैं, उनमें पस आ रहा है या लिक्विड आ रहा है, ठीक है, या समटाइम्स वो छोटे दाने की तरह होते हैं। बट जो पैपिलोमा वायरस होता है, जैसे अच्छा एक ये जो वर्ड भी हो, माइलोमा, पैपिलोमा,
1: जी
0: ठीक है, कैराटोमा, तो ये डिनोट करता है कहीं ना कहीं ट्यूमरस सेल ग्रोथ को, ठीक
1: ओके
0: है, ट्यूमर ग्रोथ को।
1: जी
0: तो पेपिल्स की तरह यानी कि फोड़े की तरह, और वो उसमें ट्यूमर ग्रोथ करने लगता था क्योंकि वो आगे चल के मतलब और सख्त ठोस हो जाता था, कड़ा हो जाता था, उसमें केराटिनाइज्ड टिश्यूज भी मिलते थे। तो वो इसके नामांकन का एक बहुत बड़ा कारण बना कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि पैपिल्स होते थे और ये ट्यूमर क्रिएट कर देता है, मतलब वहाँ पे ट्यूमरस मतलब एक गांठ जैसा दिखने, उसको आप जब टच करेंगे तो आप नॉर्मल टिश्यू से काफ़ी ज़्यादा उसको टाइट पाएंगे गांठ के जैसे। तो ये कारण था कि इसका नाम पैपिलोमा रखा गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
1: ऑल राइट सर, एक मुझे और एक दिमाग में मेरा सवाल आ रहा है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी।
0: जी
1: हम कुछ बीमारियों के जो भी मेनली जो भी हमारे पास बीमारियां होती हैं, हम उनसे कहते रहते हैं कि ये फलाना पैरासाइट की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ, मेनली जो हमारे तीन फेजेस होते हैं, तीन कारण होते हैं। बट जो कैंसर है और बाकी ये जो हमारा जितने भी कैंसर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, HPV है, ये भी किसी वायरस से होते हैं या ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से?
0: ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, लेकिन सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा और विस्तृत करता हूँ। देखिए, आपका पूछना ये है कि कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां क्या ये भी किसी बैक्टीरिया वायरस की
1: या
0: वजह से
1: पैरासाइट
0: होती
1: की
0: हैं,
1: वजह से होती है
0: पैरासाइट
1: या
0: की वजह
1: हमारी
0: से?
1: बॉडी का ही एक एक्चुअल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है
0: बिल्कुल।
1: बस?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि चूंकि अगर आपको HPV है तो वो तो वायरस की वजह से हुआ है,
1: ओके
0: ठीक है,
1: ये एक वायरस की
0: पैपिलोमा
1: वजह से है।
0: वायरस की वजह से हुआ है, वो
1: और ये
0: क्लियर है।
1: मौजूद कहाँ होता है मेनली?
0: देखिए, मेनली ये आपके कुछ जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे जो जैसे स्वाइन फ्लू जिनमें मिलता है, शुगर शुकर बोलते हैं, बोर बोलते हैं जिनको, जो जंगली सुअर होते हैं, जंगली सुअरों में, चमगादड़ों में, और इन सभी तरह के जो जानवर होते हैं, कुछ तरह के ऐसे जानवर जो सड़े गले मांस खाते हैं, उनके मल वगैरह में भी इसके स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि जो आपका प्रश्न था कि क्या ये भी किसी कैंसर मतलब कैंसर और
1: कैंसर
0: ट्यूमर,
1: किसका रिफ्लेक्शन
0: हाँ
1: है?
0: देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि कैंसर को जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है,
1: जी
0: ठीक है, कोशिका जो है विभाजन होते हैं। तो जब हमारी कोशिका विभाजित होकर के जिस मतलब प्रजाति की कोशिका रहती है, जैसे कई तरह के सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, तो मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो कनेक्टिव सेल्स जो हैं वो जब उनका विभाजन होगा तो वो डिस्ट्रॉय होकर के दो नई कनेक्टिव सेल्स को ही जन्म देंगी। समटाइम्स हमारे बॉडी में कुछ सेल्स में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, कुछ दूसरे कारणों की वजह से कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, मतलब कैंसरस जो उसमें कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या है कि इसके कई सारे फेजेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल फेज, ग्रोथ फेज, एग्रेसिव फेज। एग्रेसिव फेज में बहुत तेज़ी से वो सेल डिवीज़न

0: हो रहा होता है और बहुत तेज़ी से वो ट्यूमर्स बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कैंसर की दुनिया में एक नई दवा का भी खोज किया जा चुका है।
1: क्या बात है।
0: और हम अभी उसके बारे में भी अपने रेडियो पे लोगों को बताएंगे। और भी ऐसे कुछ नए टॉपिक है जिनको हम लोग आगे कवर करेंगे। पीसीओडी को अब चेंज करके पीएमओएस कर दिया गया है।
1: यस बिल्कुल। और इसके बारे में लोगों को मैं सोच रही थी कि फिलहाल के लिए जो लोग अभी तक समझ रहे थे कि ओवेरियन डिसीज है, ये थोड़ा मेटाबॉलिक निकल आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी तो इसको देखने का, इसको सोचने का पूरा एंगल ही चेंज हो चुका है,
1: नजरिया बदल गया है,
0: नजरिया बदल गया है। तो फिलहाल हम कैंसर की बात कर रहे थे, तो इसमें कैंसर जो होता है ये हमारी कोशिकाओं का ही ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, बट नॉर्मल ग्रोथ नहीं, एबनॉर्मल ग्रोथ।
1: ओके, रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ने लगता है,
0: रैपिडली बढ़ने लगता है। नॉर्मल सेल्स से उसका स्ट्रक्चर अलग होता है और वो कैंसरस सेल्स होती हैं जो कि नॉर्मल सेल्स से बिल्कुल अलग होती हैं।
1: इससे पहले कि हम दवाई की तरफ बढ़े, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है या हर कैंसर ट्यूमर होता है?
0: हर कैंसर एक ट्यूमर जरूर होता है,
1: लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं,
0: बट हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है।
1: ओके, अच्छा, कई बार लोगों ने नोटिस किया है कि उनके गले के आसपास ये जो मस्से होते हैं ये नजर आते हैं और वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। अब वो उन्हें लगता है कि ये मस्सा ही है और ये बढ़ रहा है, एक जगह पर वो आके रुक भी जाता है कभी कभी, क्या वो ट्यूमर हो सकता है?
0: देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक टाइप का ट्यूमर ही है।
1: और वो क्या डेवलप होगी, कैंसर हो सकता है?
0: वैसे तो जो गले के आसपास जो ट्यूमर्स डेवलप होते हैं उसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम पाए जाते हैं, बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल है,
1: पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर किसी बॉडी पर, किसी भी जगह पर आपको बहुत रैपिडली कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई गांठ सी नज़र आ रही है, मस्सा नज़र आ रहा है, या फिर किसी के होता है जो तिल होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई मोल है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको उसका टेस्ट करा लेना चाहिए ये सोचे बिना कि ये कैंसर है कि नहीं है। हमें लगता है नॉर्मल चीज़ें हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी में नॉर्मल सी जो आउटर पोर्शन की गांठें होती हैं, कई बार ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो स्किन पे किसी तरह की गांठ को हमको दिखाते हैं, टच करके भी दिखाते हैं, तो हम लोग जब उसको टच करके फील करते हैं तो वहाँ एक गांठ डेवलप होती हुई दिखती है। कई बार ऐसा होता है कि वो कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, बट एक पेशेंट ऐसा भी आया था जिस पे हम लोगों ने उसका टेस्ट भेजा, FNAC एक जांच होती है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एक छोटी सी नीडल वहाँ पे प्रिक करके और उसमें सैंपल का छोटा सा टुकड़ा वहाँ के टिश्यू का कलेक्ट करते हैं और उसमें कैंसरस ग्रोथ या फिर उसकी ग्रोथ को देख करके उसको हम देखते हैं। ऐसे टेस्ट में मरीज का ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आया, मतलब वो टीबी उसको और कहीं पर ना होकर के बॉडी के एक हिस्से में, हाथ पर था वो, बाइसेप्स जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे वो जाकर के बैक्टीरिया फंसा था। अब चूंकि वो बैक्टीरिया ट्रैप हो गया तो बॉडी उसको क्या करी कि वहाँ पर ट्रैप करने के लिए उसने वहाँ पर ढेर सारे
1: सेल्स
0: भेजे, इम्यून सेल्स भेजे, और वो इम्यून सेल्स भी वहाँ पर धीरे धीरे ट्रैप होकर के फिर वो कैरेटिनाइज हो गया और कैरेटिनाइज होकर के वो ट्यूमर बन गया। तो उसका जब जांच किया तो वो फिर ट्यूबरकुलोसिस उसमें निकला। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी साधारण गांठ जो है वो आपको वो कैंसर ही हो, बट हाँ उसमें कोई दूसरी भी समस्या छुपी हुई हो सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके बॉडी पर कहीं पर तिल है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर अचानक से उभर आया है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल। और वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो ये था कि जो कैंसर होता है या ट्यूमर होता है ये हमारे बॉडी खुद ही इसको धीरे धीरे डेवलप करती है और डेवलप करके उसको क्रिएट करती है।
1: सर ये क्या जो कैंसर है जो हमारी बॉडी डेवलप कर सकती है तो ख़त्म क्यों नहीं कर सकती?
0: देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा बहुत ही इनोसेंट सा भी सवाल है, बट देखिए आप इसको समझिए कि जैसे हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस तो करती है बट वो उसको खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करती लाइक दैट कि मतलब जैसे अगर सेल्स वगैरह की बात करें, ब्लड सेल्स वगैरह की बात करें तो उसको छोड़ देते हैं, बट देखिए हमारे दांत बॉडी खुद से उगाती है बट वो खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती उसको। बोन्स हम जब पैदा होते हैं छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे बोन्स स्ट्रेच होती है बॉडी उसको, बट
1: एक्सपेंड होती है लेकिन वो शॉर्ट नहीं हो पाती है,
0: ठीक है। और देखिए बीमारियां कई बार हमारी बॉडी फाइट करने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी फाइट नहीं करती है, बट अब जिन बीमारियों से फाइट नहीं कर पाती है उसके लिए हमें मेडिकल असिस्टेंस लेनी पड़ती है। आप इस चीज को समझिए कि प्रतिदिन लाखों की मात्रा में बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं
1: डेली,
0: बट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करने के लिए मतलब कैपेबल होता है, उसके बावजूद भी कुछ विशेष तरह के, जैसे कभी टाइफॉइड हो गया या डेंगू हो गया या चिकन पॉक्स जैसी होगी, कोई भी बीमारी हो गई, उसका बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो उससे हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाती और तब हमें मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है।
1: ऑल राइट, तो भाई कैंसर की बीमारी की एक नई दवा आई है, आइए वो भी जान लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैंसर या ट्यूमर ये हर बार किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, और कैंसर या ट्यूमर बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता,
1: ये हमारी बॉडी का ही,
0: ये हमारे बॉडी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो जब एबनॉर्मल तरीके से होने लगती है तो वो कंडीशन कहलाती है। बट कुछ बैक्टीरिया या वायरस ये कैंसर का कारण ज़रूर बनते हैं। अब जैसे जो आपका प्रश्न था शुरुआत का कि कितने टाइप के वो होते हैं HPVs, तो वैसे तो बेसिकली HPVs के 200 से भी ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं, HPV के 200 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, बट इसमें से कुछ जो होते हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल HPV 16 और 18 जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हाई रिस्क का होता है, जो कि ऑन्कोजेनिक यानी कि कैंसर को प्रमोट करता है। सारे HPVs कैंसर का कॉज नहीं करते हैं
1: जी,
0: ये भी है, ठीक है। तो HPV 16 और 18 जो होता है ये बहुत हाईली रिस्की होता है। इसके अलावा जो जो HPV 31, 33, 45, 52 और 58, HPV 31, 33, 45, 52 और 58 जो होते हैं ये सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
1: मतलब HPV के नंबर भी होते हैं
0: जी, 200 से ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं। HPV 6 और 11 जो होता है और HPV 42, 43, 44 जो होता है ये मतलब थोड़ा लो रिस्क के HPVs में आते हैं, जो कि बहुत मेजर समस्याएं कॉज नहीं करते हैं। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये था कि कुछ विशेष तरह के बैक्टीरियाज या वायरस ऐसे होते हैं जो आगे चल के, मतलब वो खुद तो कैंसर का कारण नहीं बनते लेकिन वो शरीर में जो भी डेवलपमेंट करते हैं, जो भी समस्याएं क्रिएट करते हैं, वो समस्याएं आगे चल के कैंसर बन जाती हैं। इन्हीं में से ट्यूबरकुलोसिस भी एक बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो खुद तो कैंसर का कारण नहीं बनती है, बट ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट धीरे धीरे आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ये जरूर होता है।
1: Alright.
0: अब मैं आपको चाहें तो जरूर मैं कैंसर की नई दवा के बारे में बता सकता हूं।
1: चेहरे पे हंसी आपको दिख रही होगी मेरे।
0: जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको ये जानकर के खुशी होगी। देखिए, अभी रिसेंटली विद इन एक हफ्ते के अंदर का मामला है और मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्नति मैम इतना एक्साइट है इसको जानने के लिए और हमारे लिसनर्स भी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, हमारे शो पे आपके जो अपने पसंदीदा वाला शो है क्लिनिक ज्ञानस्थली, इस पे हम लोग बहुत दूर दूर से बहुत ढेर सारी जानकारियां कलेक्ट करके लाते हैं। मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्नति मैम करती हैं, इनको भी एक मतलब थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए। कैंसर की एक नई दवा जो कि अभी पिछले एक हफ्ते पहले इसको मतलब क्लिनिकल ट्रायल के आगे का अप्रूवल मिल गया है, उस दवा का नाम डॉक्सॉनरेसिब है, DOXONRASIB। और ये दवा जो है काफ़ी एक नया माइलस्टोन मानी जा रही है कैंसर के ट्रीटमेंट में, एज एन ऑन्को ट्रीटमेंट में। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो कैंसर की, अब चूंकि कैंसर पे हम लोग बात कर चुके हैं, ऑन्को सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, टारगेट थेरेपी होती है, तो मतलब जो कैंसर का ट्रीटमेंट हम करते हैं, जो दवा चलाते हैं कैंसर की, जो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या जो भी हम चलाते हैं, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसरस सेल्स होती हैं, वो बहुत ही तेज़ी से कैंसर के मेडिसिंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं
1: जी।
0: मतलब जो भी दवा चलाते हैं विद इन कुछ दिनों के अंदर उस दवा के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, कि मतलब वो दवा अब उस कैंसरस सेल्स पर काम नहीं कर रही हैं, बाकी बॉडी में काम कर रही हैं बट वो कैंसरस सेल्स पे काम नहीं कर रही हैं। डॉक्सॉनरेसिब ये एक दवा बनाई गई है जो कि जो ये कैंसर सेल्स की रेजिस्टेंस है, मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता वो डेवलप कर लेता है कैंसर दवाइयों के अगेंस्ट, उस प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने से बचाएगा, उस प्रतिरोधक क्षमता को, उस रेजिस्टेंस को होने से ये दवा रोकेगी, जिस दवा का नाम है डॉक्सॉनरेसिब। और ये अपने नेक्स्ट फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी है और मोर देन 10,000 डॉक्टर्स, 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने इसके जब वो इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो उसमें इन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी और खड़े होकर के तालियां बजाई हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही तगड़ा और नया माइलस्टोन आने वाला है कैंसर की बीमारी के लिए।
1: क्या बात है, और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, प्लस मेरा मन कर रहा है आपको बधाई दे दूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बधाई देने के लिए, और ये अच्छी चीज़ है। देखिए, मेडिकल साइंस की सुंदरता यही है कि वो निरंतर अपना सब कुछ लगा के, सर्वस्व लगा करके मरीजों के, बीमारियों के, इन सभी चीज़ों के मतलब कल्याण में लगा देते हैं।
1: और मेरे पास भी एक न्यूज़ है।
0: और देखिए, इस फील्ड की सबसे अच्छी बात यही है कि जो इस फील्ड का नहीं भी है वो भी कितना खुश हो रहा है इस चीज को लेकर के।
1: जी
0: ठीक है, जिसको भगवान ना करे ये बीमारी है भी नहीं और हो भी ना, वो भी कितना खुश हो रहा है, ये सुंदरता है इस फील्ड की।
1: और मैंने हाल फिलहाल में न्यूज भी पढ़ी थी कि जापानी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो डीएनए की वजह से होती हैं, तो डीएनए मॉडिफिकेशन करके उस बीमारी को जो जेनेटिकली हो रही है उसमें से वो जीन्स ही हटा दिए जाए।
0: बिल्कुल, और मैं इस पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चाइना में चूँकि जो जीन मॉडिफिकेशन है, डीएनए मॉडिफिकेशन में चाइना बहुत एडवांस है।
1: जी
0: तो अच्छा, इसीलिए नहीं बहुत एडवांस तरह की बीमारियाँ भी वो देता है संसार को कि वो उस बीमारी का जल्दी इलाज भी ना ढूंढ पाया जाए, तो कहीं ना कहीं डीएनए मॉडिफिकेशन में चाइना बहुत एडवांस है। चाइना ने सक्सेसफुली एक पेशेंट पे इसका ट्रायल कर भी लिया है, एक पेशेंट जिनकी कई हिस्ट्री से मतलब एक बीमारी चली आ रही थी, आई थिंक वो पार्किंसंस था या कोई एक बीमारी थी जो मुझे, या एडिसन्स डिसीज था, कोई एक बीमारी थी जो मुझे ठीक से याद नहीं है। उस बीमारी में अगले जो पीढ़ी थी, अगली पीढ़ी, उन्होंने बेबी प्लान किया और वहीं से उन्होंने मतलब डीएनए को चेंज करके, मॉडिफाई करके वो जीन ही डिलीट कर दी जो उस बीमारी का कारण था। फिर उसके आगे मतलब उस डीएनए से फिर आगे बच्चा भी पैदा किया गया है और दावा किया जा रहा है कि उसको ये बीमारी नहीं होगी। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने ये हासिल कर लिया है कि उस बीमारी को डिलीट कर दिया है। अब आगे ये देखना है, आगे आने वाले 15-20 वर्षों में ये पता चल जाएगा कि उस बच्चे को वो बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है।
1: ऑल राइट, तो भाई मेडिकल साइंस जहाँ अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है, आपके डीएनए तक को बदलने को तैयार है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, वहीं पर आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको करना है अपनी आदतों को बदलना है, क्योंकि बीमारियां जो जेनेटिक नहीं हो रही हैं वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से जरूर हो सकती है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप ही के हाथ में है। तो अपनी आदतें बदलिए, अपना खानपान बदलिए, अपनी डाइट को सुधारिए, और वो कीजिए जो आपको इस ज़माने में ज़रूरत है, ना कि वो जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। अब आप कार्ब्स खा रहे हैं और चेयर पर बैठे हैं तो फिर डायबिटिक होना स्वाभाविक है, फिर ये मत कहिएगा कि मैं तो मीठा भी नहीं खाता था।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बीमारियां जो है, जैसे डायबिटीज़ की बात मैडम ने की, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत मीठा खाने वालों को ही शुगर हो जाए। एक्चुअली जेनेटिकली कई बार ऐसा भी पाया गया है कि बहुत जो कंजर्व रहते हैं, जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आई थिंक आज के शो में आपको मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए डॉक्टर साहब नमस्कार, उन्नति मैम नमस्कार, नमस्कार आपको भी, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में। एंड घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी आशुनति और अपने हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यही गोला शहर की धड़कन पर। ख्याल रखिएगा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: राम राम चाची,
2: राम राम चाची,
3: राम राम, राम राम बहनी है। बहनी कुछ जाने हो
1: का चाची,
3: तो तुहरे लोग कुछ नहीं जानी है
1: का होएगा है।
3: अरे अब परे भवानी दादा, जो अपन चटपटी चाची नहीं ही
1: हाँ।
3: तो एकदम चटपटाए गई
1: का होएगा, तबियत तबियत ना खराब है
3: ना ही बहनी। वो जानत हूँ कहाँ टहरे गई रहा ये छुट्टियाँ,
1: कहाँ लोटन चाचा गए रहा।
3: लोटन चाचा के साथे बहनी वह दिल्ली गई रहा पैंट बुशर्ट पहिर कर। हाँ इतना दूर, हाँ दिल्लिया गई रहा, और हम देखें पैंट और बूसट पहरे रही वह।
1: पर चाची सही,
3: हाँ पूरे कहीं
1: तो सुनो, कोई और का तो ना देख ले।
3: सुनो सुनो, ऐसा करो कि तुम्हारे लोग खाली हो।
1: हाँ चाची,
3: खाली हो।
1: हाँ चाची,
3: तो सुनो तो चली चाची घरे, देखी कौन सकल बगल बगल बनाए के आ रहा है।
1: चलो चलो चलो, पहचानबो करे कि
3: ना। हाँ हाँ चलो चलो
2: चलो चलो, साथ में चले गए तो पता नहीं पहचान।
3: हाँ हाँ हाँ, खोलो।
1: ओ चाची,
3: ओ चाची
2: है, कौन है,
1: के बोलते बहनी चाची, बुलाओ।
3: बोलिया बदल गए। हे चाची, हम वही चटपटी चाची के घर में घुसगा।
2: अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग?
3: ये कौन मेरे के बोला था बहनी, के इनके घर में आए हो आप?
1: चाची दिल्ली से कोई लड़के आए हैं।
3: हाँ महू को लागत है कि कोनो आवा है साथ है।
2: अरे अरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते भाई बहन।
1: चाची
3: क्या हो, है क्या हो?
2: अरे मैं चटपटी चाची हूँ, मैं दिल्ली गए थे ना।
3: हाय रे मोरी मैया, अब बनाई बाकी चाची कौन मेरे बगद गई।
2: मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली गई थी
1: चाची।
3: हाँ देखो
1: चाची, देखो सड़िया से,
3: सड़िया से सुठो हम आई, और बरवा जैसे भैंसिया पूछिया।
2: देखो मेरे बालों को कुछ मत कहो, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना
1: चाची।
3: कौन और चाची बोले लागू?
2: अरे मैं दिल्ली होके आए हैं।
3: तो दिल्ली में गए रहा तभी काहे मेरे के बोले लागू? बोलिया
2: दिल्ली में ऐसे ही बोलते हैं?
3: तो दिल्ली में हाँ बकरी बहुत ही मैं कराती ही।
2: नहीं
3: झगड़िए हैं कुल,
2: दिल्ली में तो मुझे एक भी बकरी नहीं मिले।
3: तो ये पार की मैं लगाए हो, मैं दिल्ली मैं ये का होता है?
2: मैं दिल्ली गए थे,
3: दिल्ली गए थे।
1: छोड़ो चाची, चाची बदल गए हैं।
3: चाची भैया बौराई गई चटपटी चाची कौन में?
2: अरे ये बौराई गई क्या होता है?
3: चाची
2: अच्छे से बोले आप लोग।
3: ये चाची हो क्योंकि भूत परियत हो।
2: अच्छे से बोले, अच्छे से दिल्ली से आए हैं
3: रचना। ये चाची हो क्योंकि भूत परियत।
1: एक मिनट चाची रुको, चटपटी चाची के तो नहीं परीक्षा ले लिया चाची?
2: हाँ
1: हमार नुआ जानते हो?
2: क्यों नहीं जानते हैं?
1: क्या नाम है?
2: अर्चना हो।
1: अरे चाची अर्चना तो हम हुई।
3: अच्छा अच्छा,
1: चाची भूल गई,
3: चाची, चाची ना हुए।
2: ये शिवानी है, शिवानी।
1: हाँ चाची शिवानी तो ये हो,
3: ये है रचना बहनी। चाची ये चाची ना हुए, उनके भूत परेत हुए।
1: चाची भुलाई गई उनमें सबका,
3: चाची ना हुए।
1: ए चाची,
3: अरे दैया हमार चाची का चली गई।
1: रुको रुको एक चक्कर,
2: चाची रो ना रो
1: ना। अब पूरा नाम बताओ अपन।
2: अरे मेरा नाम भूल गए आप लोग?
1: नहीं चाची, हमें लागत है कहूँ चाची को ना हंसकल हंसकल तो
2: मैं तुम्हारी चटपटी चाची हूँ।
3: नहीं नहीं नहीं, हमारी चटपटी चाची नहीं।
1: कौन सबूत है चाची की?
2: अरे मैं तुम्हार चटपटी चाची हूँ।
3: नहीं नहीं, हमारी चटपटी चाची
1: हूँ। थोड़ा थोड़ा हमारे लोग के भाषा जाना थी अपने चाची।
2: नहीं हम ऐसा नहीं, सब भूल गए,
3: बगदी है, बगद गई है दिल्ली जाए।
2: जब जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे सब ऐसे ही बोल रहे थे, तो मैंने भी सीखा, मैं भी बोलने लगी ऐसे।
1: अच्छा चाची जान नहीं हूँ, हाई स्कूल फेल नहीं।
3: हाँ तो वहाँ अंग्रेजिया भूखा थी, वहाँ अंग्रेजिया।
2: और मैं तो कहूँगी तुम सब भी दिल्ली घूम के आओ, दिल्ली बहुत अच्छी जगह है।
3: नहीं दादा, जब तुम्हारे बगदेख हुई तो दिल्ली क्यों ना जाई?
1: सही कह हो चाची, हम तारे साथ हैं।
3: हाँ यही मेरे भागा दी बताओ, यही मेरे के
1: निकला
3: बहनी अर्चना।
1: हाँ चाची,
3: इनके बरवा देख लो, घोड़ा पूछ या सोई गवाह है मेरे भैंसिया पूछ
1: पहले मौका देख।
3: ये क्या होते बहनी,
2: ये वहाँ की जो लेडीज लोग होती है ना, वो ऐसे ही बनी घूमती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आई हैं वहाँ से गांव से, हमारे बीच में आप कैसे रहेंगी, तो थोड़े से बाल आपके मैं सेट कर देती हूँ। तो उन्होंने हमारे बाल सेट कर दिए,
3: तो बरवा कुकरवा में देखे सीटी मार दी।
2: अरे ये दुलारी तो अभी भी वैसी की वैसी ही रहेंगी।
1: तो हमें लगता है दिल्ली तो आप गए रहा, हमसे
3: हम बहनी जो जाबो कर अब दिल्ली बिल्ली, तब इनके यहाँ हम बगद के ना आई पे, ये बगदी है।
1: चाची कोनो रिश्तेदार रिश्तेदार के गयो रहा?
2: हाँ वो हमारी जो है छोटी बहन की देवरानी वहाँ पे है ना, तो उन्होंने बुलाया था, बहुत बड़ा फंक्शन किया था वहाँ पे, तो कहें कि चाची जी आप आइएगा, तो फिर हम हो के आए हैं।
3: ये बहनी कहते दिल्ली में फंगस लाग गा रहा, ये फंगस का होते बहनी?
1: फफूंदी होता चाची, फंगस माने फफूंदी।
3: तो ये फफूंदी में गई रहा खाए?
2: नहीं भाई, फंक्शन होते हैं वहाँ बड़े बड़े।
3: क्या होते
1: अच्छा,
3: बहनी?
1: जसन चाची, जसन कहा?
3: हाँ, जसन मेलवा लागत है, मेलवा जसन। हाँ,
1: अरे जसन, अरे मैंने जैसे कि कोनो समारोह घरे
4: समारोह। अरे चाची शादी ब्याह मुंडन और यह बरही
3: वरही
4: कोनो भी चीज करो का फंक्शन।
3: वहाँ आयुष खाए बलावत है, वहाँ खाए के बगदी है ये।
2: वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पार्टीज करते हैं मालूम है तुमको बच्चों, बहुत ज्यादा पार्टी होती है वहाँ पे।
4: हम लोग देखे थे।
3: हे सुनो
1: पिक्चर
3: हे बहनी, ऐसा करो कि चाची बेराम हो गई, डॉक्टर बुला लाओ, इनके हम तनी पिछवरवा चार ठो सुई लगवा दिए, बैठ गए जाए
1: सहन चाची जाई।
3: हाँ ये भगत गई हैं।
2: अरे दुलारी तुम्हें क्या हो गया है?
3: हमें कुछ नहीं भा चाची,
1: जाई चाची चौरसिया
3: जाओ वहाँ चौरसिया बुला
2: लो। बोलने लगी हूँ मैं, अच्छा बोलने लगी हूँ, अच्छे से रहने लगी हूँ, उसमें क्या दिक्कत है?
3: नहीं चाची सुई आई लगवाई दे, तू ठिकाए जाओ।
2: अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है,
3: मैं
2: तुम्हारी चटपटी चाची। अरे यार अब ठीक हो कि नहीं ठीक हो?
3: हाँ
1: सही चाची,
3: मजा आएगा, ताली बजाए तो चाची आ गई, चाची आ गई,
1: चाची
3: चटपटी चाची आ गई, जाओ चाची डरवाए दी हम सबका।
2: सुनो तो हम फुआ की नकल करित रहे, फुआ सब ऐसे बोला थी,
3: अब मैं तो हम सुई लगवाई दे चाची जान लियो,
1: सुई डर के मारे
3: बोल दी डराई गई, सुई डराई गई।
2: नहीं नहीं हम सब तो हर परीक्षा लेते रहे, तो लोग देखो कस रिएक्शन दे तो हम
3: आओ
1: तो देखा
3: हम डरा गए बहनी की हमारे चटपटी चाची अब बिलाई गई।
2: नहीं का
3: अब हम कस के चाची से मिलबे बताओ, हम तो मर जाए बहनी।
2: नहीं चटपटी चाची कब्बो ना बिलई है, बस ये है कि कब्बो कब्बो जाए।
3: हाँ दुलारी चाची है जमीनिया छोड़ देती हूँ, अंते चली जाए कहूँ गाँव आऊँ।
2: अब दुलारी अब तू कब बताए हुआ कौन रंग ढंग हुए?
3: हाँ
2: हम तो सब देखा ना हुआ, जो बतुआत रहे मेहरुए।
3: हाँ अंग्रेजी खूब बोले,
2: खूब बोलत रहे, और हुआ तो बताए अस अस बातें कि हमें तो बड़ा ताज्जुब हुए, हमार गवा बहुत नीक हुए, बहुत नीक हुए।
3: पूरे कहूँ
2: कहा के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कही तो सारे जहाँ से अच्छा अपना गवा।
3: हाँ अपना गवा हमारा। सही कहा तो चाची,
1: चाची सब आजमाए लीन, बार बार देख लीन, पैंट शर्ट पहन के देख लीन, बोल
3: चाची
2: दस देश बस भेज
3: चाची। ये बुसटा क्या पहरे रहे हूँ?
2: वो सब वहाँ पहना था, ऐसे पहना था, ऊँच ऊँच बुसट पहना था, नीचे जींसिया पहना था, आधा
3: पेटवा दिखा।
2: हाँ
3: अरे भवानी दादा,
2: आधा पेटवा दिखात है, ढूंढी होड़ी सब दिखात है।
3: हाँ
2: हाँ तो हमको पहनाए तो फोटो तो देखो खींच लेन।
3: अच्छा
2: तो हमो का भाई जस ये लोग कहा थी थोड़े दिन वैसे ही रह ले।
3: हाँ
2: कौन बेजा हुए है
3: जैसे ठीक
2: जैसे देश
3: वैसे भी ऐसा बहनी,
2: और उनके बीच में उनके जैसे ना ही रहते ना। हाँ, तो वो लोग हमका तनिक को मान सम्मान ना देते।
1: हाँ, चाची तब यही कहते गांव से
2: बदल गए ना, हम जाते जाते
1: तो यही तो चाची फायदा हुआ पड़े। गांव की बेइज्जती हो तो जान तो गए कि गांवों के लोग शहरी बन सकत हैं।
2: और का
3: हम तो
2: शहरी बने,
3: हम कहा ना बन पाए,
2: हम तो उसे कम ना ही है।
3: तो चाची कब्बो हम चली तो हम तो ना बन पाए,
2: ना ही बन जाइयो बन जाइयो हुआ रंग ढंग कौन बहुत हम देखो सीखे
3: बूसट पहले पड़ी
2: अरे इसको जरूरी ना है कि बूसट पहनो,
1: पहनाए तो पहन लिया, रखबो पहन सकते सुटबो पहन सकते,
2: अपन दाम तो लगा ना ही, कहीं नहीं चाची जी पहनिए खलरिया तो हम पहन लिया।
3: अच्छा
2: हाँ, खलरिया पहन के मामू कहा चलो तोरे रंग में रंगे है,
1: और कहाँ कहाँ घूमे गए रहा चाची?
2: अब भैया हमें नौवा तो कौन मालूम नहीं है,
1: खूब लंबा है अरे भूरा कलर के,
2: दिल्ली तो बहुत बड़ा हो
1: ना चाची,
3: कुतुबिदार कुतुबिदार
2: कुतुबिदार ना कुतुब मीनार,
3: वहाँ कुतुबिदार वहाँ वहाँ कुकुर लौटे थे हुआ
2: नहीं अस नहीं जगह तो बहुत नीक हो।
3: हाँ
2: हाँ जगह अस ये ना कहो हम इनका गांव वाली भाषा हमेशा बोलिए कुकर लौटते हुआ।
3: हाँ तो एक मेला हमें बताओ तो रहा कि एक हुआ कुतुब बिदार है
2: नहीं हुआ, बहुत मेला लागत है।
3: हाँ।
2: और एक से एक सब मनाई हुआ रहा था, तरह तरह सामान ले ले बैठे थे बेचे थे।
3: हाँ।
2: और सब बढ़िया बढ़िया सामान नीक नीक सामान,
3: तू का लाए चाची, तू का लाए?
2: अरे हम बहुत सामान लाए ना, अब दिखाई दे
1: हम लोग का खाए वाला जो लाए हुए खवाई।
2: अच्छा तू लोग खाली खाए पे ध्यान,
1: हम पूछे थे चाची हमने लिए कौन कपड़ा लाए हूँ?
2: कपड़ा बहुत नीक नीक लाए हैं, बर्तन वो लाए हैं, खाए वाला सामान लाए, जहाँ गए हम खूब खरीदारी करा, लोटन चाचा घाए गए हमको ले
1: चाची आयु कैसे हुआ, जब ट्रेन में आऊ तो जितना ज्यादा सामान रहा था उतना ज्यादा रुपया लागत है,
2: कुछ ना ही एक ये सब पता नहीं कहाँ से सीखे,
3: कहाँ से सीख के आए?
1: सुना ना चाची एक जगह हम
2: कौन रुपया लागी कह की हिम्मत चाची से रुपया ले ले।
3: हाँ चाची हमारे मार गिरा दे हैं,
1: बतावत रही मतलब अपने सहेली के चाची, हमने सहेली बताए तो हमारी सहेली एक बतावत रही
2: देखो अगर तुम जब विमान से जइयो हवाई जहाज से जइयो
3: उड़े वाले से
2: तब लागी
3: जगह पखनवा
2: रनिया में चाहे जितना माल भर लो टर्निया तो लागत हमरे बाप की हो
3: और का
2: हाँ टर्निया जाओ बढ़िया रहा थे नीक रहा। देखो टर्निया में कौन फायदा, घर से बना के ले जाओ और विमान में जइयो तो वहाँ सब तहकीकात करिए काका ले जा रही हो कि ना ले जाए, अचरुआ ना ले जाओ, खटैया ना ले जाओ, सब बहुत हुआ चलत है लेकिन टर्नियम चाहे नमक बूक के धर लो चाहे बेसन हाँ, की रोटी बना
3: चाहे भैंसियों बांध लो।
1: हाँ चाची
3: कुछ भैंसियों बांध लो
1: टर्नियम नहीं चाची भैंसियों दौरे पड़े थे ना उन जगह ना रही
5: चाची ऊपर बांध दियो चाची
1: पकड़ ले जी हैं तुमका
3: चाहे को
1: जेली बंद कर दे
3: काहे बहनी
1: भैंस का सफर करा
5: नहीं चाची
3: ऊपर
5: ट्रेनों को ऊपर बैठा दियो बांध
3: नहीं बहनी गिरी मर जाई भैंसिया हमारा
1: ना गिरी
3: हां
1: ना
3: गिरी
2: टाओ तो लोग और बच्ची लोग तो का कुछ नहीं मालूम है दुनिया जहान की बातें और तनी सीखो और तनी समझो
3: तो चाची रे बताओ।
2: हाँ
3: हमारे तमखुआ के डब्बा कहूँ देखियो है
2: अरे हम का जानिए कदरतिया मायनो तुहार टप तम आपका हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ क्यों का
3: नहीं चाची हमारा डब्बा है कोनो चुराए लगा ए बहनी तोरे लोग कहूँ देखियो हमारा डब्बा
1: हम लोग तो ना देखे ना चाची ए चाची कौन में रहा था डब्बा
3: ये सफेद का चुनौतिया जमन तमकुआ दारे रातन चुनौवा तमकुआ
1: हमको एक लगे देखे रुको रुको याद करके बताई थे
3: क्या करे लगे बहन बताओ
1: मार ए चाची
3: हाँ
1: त्योरान के लगे देखे है
3: देख लो चाची
2: तेवराइन उठाई ले गई
3: देखो चुरा ले गई
1: अब मतलब वही हुआ कि नहीं नहीं जाने थे लेकिन सेम चाची तना डिब्बिया रहा
3: देख लो चाची
1: देख भरा रहा ना चाची चुनवा से
5: हियो चाची लोगे
3: ले आएगी
2: हां है कहां कौन है भाई
5: अरे सुनन है दिल्ली गई रहा
2: हाँ भाई
3: कहा तेवराइन हाल
5: आओ सब ठीक है अपने बताओ
3: हम ठीक है तो ये बताओ तेवराइन
5: हाँ
3: वही दिन जब आयु रहा
5: अब हम कुछ सुनन है अपन नाव तो है हम सोचन हमरे बारे में लाते
3: तुहरन बारे में बतुआत रहे तेवराइन आज हम बहुत रिसियान हैं तू से
2: तो सुना है कि तुहरे पास तम्बाकू डिब्बी हो कौन
5: हाँ रे राम हम तम्बाकू खाते ही ना
3: बहनी हम बताई सुनो तेवराइन हम मैं कुल बतावत रही बुहार के बिटी भाई हमारे डिबोया गायब है हमारी चुनौतिया
5: तो हम क्या जाने
3: और सबे कहा कि तेवराइन उठाई ले गई है
5: हाँ रे राम जहाँ जहाँ जहाँ कहो जहाँ कसम खाई ली चाची
3: ई बिटीवा कहती इकरे भूख लागे खायक मांगा थी चाची से लेकिन तेवराइन नहीं तू हमार डिब्बा दे दो नहीं बहुत बुरा
5: हुई हम ना लेने चाची
3: हमार चुनौती दे दो तू
2: अरे दे दो अमल लगा था हाँ मजाक थोड़े किया करो जरूरी चीज दे दो इनका वापस
3: वो बहनी पितरी केयर हुआ और हमरे पाने लायक हमें दीन
5: ना पितरी को चाहे सोनक हम लेबे नहीं करे तो कहाँ से दे
3: तू हिन ले गयी है
4: अब झगड़ा तू झगड़ासी हो चाची।
3: अब देख लो हंसत ही है। हमार दे दो तू, हमार चुनौतियां दे दो।
2: अरे दे दो दे दो दे दो, ना परेशान करो, ले दे दो, उठा दो,
3: हमार चुनौतियां दे दो, हम जाए से चून खाए तमाकू।
4: हम ना रखन हम सब कोई ना मत
3: बे भाई ले गए रहा इनके अचरवा तन देखो गांठ का बांधिए चरों का बांधा तन देखो।
4: अरे ओकर है दो बे नहीं ओकर
3: देखो देखो चाची
4: धनजान देखो चाची यही सब है ना।
3: अब आज तू हमारा दई के तब जाबो नहीं, हम दान लोग की आतू है बहुत गिर रहा मारा।
4: अपने कॉलेज में साइड था रस्तवा मिल था तरह खतन दूसरा ले बे
3: नहीं हमें वह है चाही।
4: अरे ये चरम तो वो हुआ है। अरे उनके यहाँ प्रसाद पहनना तो ही बांधे है।
3: दिखाओ खोलो दिखाओ
4: तो प्रसाद प्रसाद प्रसाद हुआ था।
3: नहीं प्रसाद ए बहनी तेरी टो तो टो देखो तेरी मोट मोट लागत है टो
4: नहीं नहीं
3: बहनी देख लो देख ना बहनी देख जो प्रसादी हो तो ये काती लो टोए लो
4: प्रसाद सबका दिन जाते जाची लो खाई
3: खा के मुंह में खाई
4: मेल मेल धोती है बहनी का एक
3: बस याहे चुराई चाची हमार दवाई तो नहीं तो हम आज इनका मार गिरा दे।
2: अरे दई दे तेवराइन का झगड़ा लगाए
4: तेवराइन
2: भाई जाए नहीं
4: तेवराइन चाची
2: दई दे तेवराइन
4: हमारे चटपटी चाची दिल्ली से आए नहीं तो उन्हें चुनौती दे दो चाची।
2: हमारी का करे तनी खुशखबरी ले कि का भवा हुआ कुछ प्रसाद और साल ले चाची से तो यहाँ झगड़ा बैठान सब बैठ जाती
3: तब झगड़वा तू ही तो ठाने हो हमारे समन में चोरा ली हूँ चौटेन कहूँ के चुनवा नहीं कितना दिन से हम लिया तमाकू नहीं खाए ने
4: तो हम तमाकू मखू नहीं खाए थे यहाँ जान ली हो
3: हम
4: करे चोराई चाचा तू खाते है चाची का जानी चाचा खुद खरीद के खात हुई है
3: देख लो चाची ये लेके गई
4: का करे चोराई
3: यही लेके गई चाची कोई रहा नहीं इतना जहाँ हम चुनौतियाँ ही यही ढाई दिन नाम है जॉब
2: चलो जाए दो अब हम फिर जाए ना लखनऊ जाए वाली हैं
4: चाची
2: तो तोहरे लिए ले आई
4: हम चराए नहीं रहा वैसे परा पाए ना तनी भर
3: लियो देखो
4: सबका परेशान करा धन लियो
3: देखियो चाची देखियो
2: हम कहा रहे दई दे हैं दई ऐसी नहीं है त्योराइन बहुत नीको है।
3: हाँ
2: हाँ ये है कि बेकार है वो तो लोग बेकार बनाए
3: बनाए अब देख लो त्योराइन हाँ अब तुहार हमारा झगड़ा झपट हो जा अब तू कहा तो हम नाई लिया नल
4: चाची कहा करी तनी भाई परेशान हम कह दी थे
3: आई तो परेशान कर तू चुनवा तम
4: मकवा चोर नाई हन चाची
3: तब तू कह दी तू हम धरे हन ना देव तू कहा तू हम ना देव हमरे लगे नाई है अब बहनी हम चुनवा नाई खाई थे तमकवा नाई खाई थे मत जीव लाग रहा थे वही में
4: हम कहूँ कहूँ खा ली थे चाची।
3: अच्छा
2: अरे तू समझ नहीं दिल्ली का हाल सुनियो कि बस अब अपने बकर बकर लगाइयो हम दिल्ली से आए ना तो
4: अरे चाची बेटी वक बतिया तो नहीं सुनो हमें का कहा कि हे तेवराइन।
3: हाँ ये बहनी नाई दादा काकी हुए काकी तो हार काकी बोला उनका
2: ये सब गलत बात है देखो हाँ हियाँ रहे तो बहुत मर्यादा में रहे हो
4: ठीक है चाची चाची ने कहा
2: हाँ सॉरी बोलो सॉरी बोलो सारी बोलो
4: महीने का तेरे कोलक हुआ तू
3: सुनो है ये कहा थी कि इनका साड़ी दो अब इनका साड़ी देख पड़ी
4: हम क्या करें घर का हुआ महीने हम चाचिन के घर आना खोए रिश्ता
2: नहीं नहीं अपन पता बताओ कहाँ खो क्या करे घर बताओ पहुंच जाइए उनके घर
4: नहीं बताओ
2: चाची
3: बताओ बताओ देवराइन छोड़ी है ना तो हर पीछा बताओ
4: घर के नमो नहीं पता है
3: लियो अब ना बताई मारे डर के तेवराइन तो रहे जाने
4: अच्छा,
3: तो
4: चाची सॉरी बोल रहे हैं बोलो आई एम सॉरी बहनी कुल हम ना जाने
3: हे बहनी जान तू का कैसी ये तेवराइन जान तू का कैसी तू है सारी दे आई लाइक
4: अच्छा
3: हां
4: सारी अरे नहीं नहीं चाची बताओ काजल हिंदी में बताओ तेवराइन चाची जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं
2: देखो कितना बढ़िया हिंदी बोली
4: आज से हमसे यस ना बोले हो।
3: हाँ बहनी तो हाँ चाची हूँ ये मैं नहीं कहे चाहिए
4: त्योराइन त्योराइन कोई मजाल ना है कि हम ऐसे बोले
3: अब त्योराइन हम सबे कही हमारे सबके उम्र के बराबर ही तो हम सबे त्योराइन कही थी अब तू समझ ना बोला करो त्योराइन तो लाओ दिल्ली के कुछ खवाओ चाची।
4: हाँ चाची हम वही पाए आए हैं
3: तब तब तो रेनियो खाए ले
2: चलो अब मगाई थे तनी पतोहिया आराम करे थे ना
3: अब हमारी चुनौतियों दे दी नहीं है
4: और बताओ चाची कहाँ कहाँ गए रहा
2: अरे तो पूछो ना
4: तो चाची दे
2: कबहु इनके घर कबहु उनके घर सब बुलावे अपने घर और एक जनी घर गए तनी रिश्ते में लागत रही भैया उनकी पतोहिया तो देखे ना जौन बात हुई बताई ना हमने कहा ये 100% ठीक है कहा थी का है आजकल की बिटिया वन का बेचारी रोवत रही
3: का है क्या
2: देखो जैसे शादी भाई
3: हाँ
2: तुरंत जौन है खुशखबरी सुनाई दीन
3: हाँ
2: अब तुरंत खुशखबरी भाई
3: हाँ।
2: तो डॉक्टर के यहाँ भागे लगी
3: ये का है
2: अब हुआ रिवाज हो
3: अरे
2: डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर कह दीन बस काम धाम मत तीन चार महीने का रेस्ट कीजिए। अब तीन चार महीना बिस्तर पे पड़ी
3: हो? ये कहे बहनी बिस्तर पर कहीं पड़ी गई है, बुखार चढ़ गया?
2: डॉक्टर कही कि अब हिले डुलक नहीं है, तीन महीना चार महीना लेटी रहो।
4: बेड रेस्ट चाची,
2: बेड रेस्ट। हाँ ये का हो, तुम सही कहे हो
4: चाची। बने की कौनो काम धाम नहीं, खाली लेटे लेटे खाओ।
2: अब बेचारो रोवे कहे, बताओ बिस्तर पे चाय दे नाश्ता दे,
3: तो ये बिटिया बर्बाद है।
2: अब चार महीना पाँच महीना कौनो मेल कटी है
4: चाची? हमारे पता तो हम का काट डाली
2: देख लो। हाँ और सुनो, तो फिर कौनो लड़का बच्चा हुईगा है तब फिर छुट्टी, और हाँ। तब फिर दो चार महीना बिस्तर पे चाय नाश्ता दे
3: नहीं ठीक है ससुए मर
2: तो बेचारी रोवत रही हुआ दिल्ली में हमका हमारा गाँव फिर ठीक है कि तुरंत तो अगर खुशखबरी है तो और झुक झुक के काम करे लागत
3: है। हाँ, हाँ, हाँ, कि बहनी बच्चा
2: और से हो जाए। जब आएगा टाइम ना तब भैया उनका पेट फाड़े पड़ी
3: रही पड़ी। हाँ। जब बिस्तर में लेटी रही है, हिली है डुली है ना, हमारे सबके इतना लड़के भाई हैं, बताओ कतना काम गिन गा है। हाँ। कंडा पाथेन भाई जो ने बांधे भाई जो ने लगाए कुल की हन कमवा।
2: अरे टहल कुल टहल नख रही आजकल की बिटेवा, बहुत नख रही बहुत नख रही, और जितना कही उतना
3: यही मेर नाई करे चाहिए चाची। हाँ। बहुत बेकार।
2: अब देखो हम बताए थे कि अब जैसे ही खुशखबरी हो और काम करे चाहिए, शरीर का बिल्कुल एकदम सही रखे चाहे, चुस्त दुरुस्त
3: खूब खाए और खूब दम लगाए काम
2: करे, और आखिरी में फिर ये नौबत ना आए कि पेट फारक पड़े।
3: हाँ
4: तो चाची पर से दे दो हम जाई।
2: काहे तुम सही बात नहीं
3: जब आवत थी तब इनका जो है डोला उठाए रहा था जब आवे तब।
4: अरे बहुत काम है घर।
3: अरे तो सबके काम है बहनी, कबो कबो तो आवत
4: लो ऐसे खड़ी हुई है।
3: अरे तो हमारा भैंसी खड़ी ही का गई सब्जी लावे
4: तो फाड़ रहा थे बहनी।
2: हंसी ये बात पे लागत है कि हम दिल्ली हुई के आए हन। हाँ। तो कौन सा प्रसाद हुआ दिल्ली वाला, कौन सा
4: प्रसाद
2: खाबा
4: चाची?
2: हाँ तो ये
3: खाए के मांगा थी चाची,
2: तो प्रसाद
4: हुआ मंदिर वंदिर पर।
2: अरे मंदिर पे गए तो प्रसाद और साथ नहीं चढ़ाते, मंदिर वंदिर में हुआ फूल नहीं चढ़ावे देते है
4: खाली मिला।
2: हाँ बस दूर से मूर्ति देख लो, यहाँ गोडक न्याय नहीं कि हम रच दे बिल्कुल भगवान के ऊपर से नीचे दिन नहवा दे और खूब सेंदूर चढ़ाए दे, असुआ नाई है हुआ, दूर तो से देखो मूर्ति।
4: चाची कुछ रखे हो तो वहाँ दे दियो, भला इतना दूर से आई हो कुछ मुंह मीठा कराए दियो।
3: हाँ मुहा तो मीठ कराओ चाहिए चाची।
2: हाँ तो कराए
3: गाय हुआ है, अंग्रेजी सीखी हुई अंग्रेजी बोली बारवा नीक कराए के आयु है, ये कपड़ा लेके आयु है।
2: हाँ तो खैर
4: बहुत जन से
2: मजा आवा यह तो मजा आवा तो यार जिंदगी मजा हो।
3: क्या बतावा थे रही तुम्हें क्या दिल्ली गई रहा?
4: मेहरा रुए बतवा रही है तो हम सुन ली हन।
3: हाँ
4: तो हम सचिन जाई प्रसाद और साल ले आई।
3: हाँ
2: तो चलो तनिक ब्रेक ब्रेक ले लिया जाए और इनका खवाए पिया दे।
4: हमार
3: काम नाम है बहनी बताओ क्या
4: नाम है? यादव। हाँ आप ठीक है तहन नवा जान गए बस से है जाना
3: है तो तनी ब्रेक ले लो तो कुछ खाए पी ली जाए।
2: हाँ हाँ ब्रेक ले लो।
3: चलो सब जने ब्रेक ले
4: ठीक है जाई चाची भाभी का बुला ले। हाँ। कुछ मदद कर दी।
3: हाँ हाँ जाओ जाओ बहनी जाओ।
6: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यू नो यू बीन माय बेस्ट बडी सिंस फॉरएवर राइट?

0: बहुत विटामिन हाँ विटामिन बहुत बढ़िया होता है
1: उनसे लड़े।
2: हाँ अब हम तमकुआ खावे तब भाई भूसिया रोटियां खा ले पिछवाए बस हमारे कैंसर
1: तमकुआ ना खाई हो जाती है। अब कहू रहा
2: हाँ बकर बकर बंदी का जाने का कहू रहा
1: निकोटिन गम।
2: हाँ वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ
0: हाँ तो इका नाय खाए चाहिए सब ये निकोटिन गम पिंगम सब बेकार है।
2: तो चाची बताओ पहले हमें कि कहा तू कि बाल्टी भर ले और जाके वहाँ जल्दी जल्दी खा लो।
0: फास्ट फूड का मतलब यार मैदा वैदा बना हुआ सामान उनका फास्ट फूड का
1: जापान के डिश कोनो चाइना के डिश
0: हाँ इटली की डिश यहाँ सब रहा।
2: तो मैंने कहा है हम दूसरे के डिश खाई
0: अब खाए पड़ा था भाई फैशन महना दुनिया हमारे भारत में
2: हम अपन डिश खाए ले हम का डिश बना रहे
0: हैं। भारत और पीछे थोड़े ना है हमरे एक महरारू वहाँ से ही आगे हैं।
1: हाँ चाची हमारे सबके लिट्टी चोखा बेटर है।
0: हाँ और का लिट्टी चोखा खाओ बढ़िया एकदम स्वस्थ रहो।
2: लिट्टी चोखा है बहनी हाँ। मोटकी मोटकी रोटियां बनाओ
1: सगवा
0: जाए दो टाइम नहीं है लेकिन इस समय जो है मक्का उही की रोटी बनाओ मिलौनी रोटी
2: चना गेहूं और बाजरा ले लो
0: हाँ
2: मिला दो कुल मिला के
0: बढ़िया चटनी बनाओ इस समय। हाँ, हाँ आम इतना ज्यादा है बाजार में और बगिया में तो है खूब बढ़िया आम की चटनी बना लो उनके साथ खूब जी भर के खाओ।
1: चटनी से हमें बात याद आवा
0: का
1: अरे कलिया उनके यहाँ वो रहा अरे बरही रहा एक जन के
0: हाँ।
1: तो आप ना रहे दिल्ली गयो रहा तो ये दुलारी चाची एक चटनी वाला कोनो गाना गायना कर सुनाए
2: बहुत नीक लागो पूरे पूरे पूरे गायना कलिया गाय
0: तो हम बहुत सुनाए
1: सुनाए ना चाची बहुत नीक लागो।
2: आज चाची हम बिना ढोलक ना गाय
1: ढोलिया ले आई चाची
2: ढोलिया लाओ
1: रुको
2: जा चाची घर में धरा ढोलिया ले आओ चाची बहुत नाई नाई करत थी जा ले
3: ढोलिया बजाई
2: धरेंगे पांच छह और देत नहीं एक को हां ले आओ बहनी ले आओ इनका चिल्ला दो बोला दो इनका।
0: अब भाई हमें कहियो कि बजाओ
2: ले बजाओ चाची
0: देखो है हम जाने तो रहे कि हमें कहियो कि बजाओ इका
2: हां तब जब बजाओ थी नीक एक बजाओ थी नीक लागत है बहनी ऐसे पकड़ लो तो ढोलिया
0: चलो गाय लो
1: सही।

0: चाची
1: चटनी खाए
0: चाची घरम भूखी लाओ
2: चाची
3: सुनाए देखो
2: अब ढुलिया मंगाए हो तो जरा दो चार गाय लो
3: चाची आप
0: हमारे तो गटैया खराब खोखी आवत है
2: कहाँ गटैया खराब
0: हाँ खोखी मेरे बहुत आवत है चाची
2: तो वो पियो ना काढ़ा
0: हाँ तो पीते हैं लेकिन तब गटैया खराब हो जाती देखो कितना मोट मोट गटैया हो जाती तेरी बहनी तू गाओ तो
3: ना चाची भले एक आप गाओ
2: अरे नहीं गाय लो बहनी थका लगा है
0: गाओ गाओ गाओ कोनो गाजो
3: रुको चाची तनी सोच ली
2: सोचो ना
0: सोच ली
3: याद आएगा चाची याद आएगा।

0: मजा आएगा भाई।
1: चाची कतना नहीं ढोलिया
2: बजाओ,
1: चाची
2: एकदम एनर्जी फुल बजाएंगी
1: आज, गमगमाऊआ ढोल बजाएंगी
3: भाई। तो हर गाना इतना नीक रहा है तो हम कहा तनी
1: मजा आए।
2: चाची हमारा गाना आपके ढोल के वजह से नीक लागा,
1: बहुत नीक गायो आज चाची, गमगमाए दिन ढल गए, बहुत नीक बजायो भाई बहुत नीक। और का कहा जाए चाची?
2: चाची आप तो गाओ।
3: हाँ काहे नहीं गाती हो भाई?
1: हे अर्चना तुम तो आवत है गौ नहीं बहनी।
2: चाची ऐसा ही थम्मे ना आए याद आवत है।
1: ये कहे दादा तेवरन के घरे गयो रहा?
2: ना ये मार मूड पे रात है चाची,
3: बुलाए दे
2: तो रात है।
1: तो तेवरनिया मारिस वारिस तो नहीं है तू अर्चना?
3: चला अर्चना गाय दो एक ठो।
1: तेवरनिया मारिस वारिस तो नहीं है?
2: नहीं चाची मारी ना है।
1: तो एक ठो गाय दो बहनी, ढोलिया
2: ले आ। तो चाची हम गाली वाला गाना जाने थे।
1: गाय दो गाय दो, चलो गरिया दो हम में सबका हाथ तू, चलो गरिया दो
3: गाय दो गाय दो
1: गाओ गाओ गाओ गा सके गाय लो गाय लो गाय लो।

0: भाई बहुत
1: है चाची
2: चाची आपो गाओ।
0: अरे तू लोग गाए वहाँ हमार गाना है।
1: बड़ा नीक बहनी गावत हूँ अर्चना, बड़ा नीक गावत हूँ। ये क्या तू सिखावा है
2: चाची? मोबाइल सीखन रहा। अच्छा। और हमार बुआ गावत थी ना बहुत ज्यादा।
1: बुआ गावत थी
3: चाची? गुजर दिल्ली वाला सुना दो चटपटी चाची।
0: दिल्ली वाला
2: ढोलक वोलक तो दिल्ली में
0: वहाँ गावा नहीं जाते है, वहाँ डीजे बाजत है और वह सब नाचा करती
1: है। अब ना उनका चटवाओ करे चटवाओ ना उनका। अब मैं कहीं कि मैं दिल्ली गया तो
3: चाची एक कौन डीजे वाला सुनाए दे हम सुन ले कौन मेरे होता है दिल्ली में।
0: अरे भाई वो डीजे बाजा कर म्यूजिक होता है, खाली म्यूजिक बाजत है
1: ये डीजे का होता है।
0: अब कमर मटकई है ऐसे ऐसे ऐसे
3: तेज तेज बाजत है बिहार में गम्मक गम्मक कहते चाची बरतिया बरतिया सब चमका
1: था। डीजे
0: डीजे
1: डीजे ये कौन नाम है?
0: अब उसका सब डीजे कहा था हम ना जानी थे।
1: तो एक मिना गाँव रहा डीजे वाला बाबू जा रहा गाना सुना दो कोनो मिला गावत
3: हाँ, तो
1: सुने ना बहनी एक लड़का गावत रहा डीजे वाले
0: डीजे वाले बाबू जरा गाना सुना दे गाना सुना दो जरा गाना सुना दो
1: यह गनवा सुना सुनत रहे हमरा याद आएगा वाह।
0: तो चलो भाई बहुत बातचीत हुई बहुत मजा हुआ आज।
3: हाँ चाची काजल के तो आज खैर ना है घरे
1: काजल आज मारी जी तेवरनिया जाई।
3: काजल तब से हम सब गान है लेकिन चुप्पन बैठी
1: तो तेवरनिया जाई आज इनके घर जो कहीं नहीं होगा तेवराई।
3: अब काजल जवान तो समान
1: तेवरनिया बड़ी बेकार ही बहुत लड़ाई
3: चाची पहले ये इज्जत से रहा कहती है तेवराई
1: बस आज ये मारी गई घर माँ। अब जब इनके घरे पहुंची तेवरनिया बहुत बेकार औरत थी
0: पता नहीं काका लगाई तोहरी महतारी से।
3: काजल तू एक काम करो पिछवाए वाले दरवाजे से पहले जाओ और चुप्पा पहले खाली मम्मी से मिल लियो कि मम्मी तेवराइन घरे आई रहा कि ना।
2: हम बताए तुम्हें कोनो दूसरे काजल का कहा
0: गाँव गाँव गाँव भर सबके तो बिटिया है काजल वो काजल है
1: घर का जाबो
0: रानी बिटिया नाम काजल
1: अमावा नहीं तुरबा।
3: अरे ना चाची पेपर चलते है हमारे सबके
1: ये का होते है।
3: अरे एक इम्तिहान चाची एग्जाम चलता है।
1: अच्छा इम्तिहान जो इन पढ़ी लिखी हुआ है लिखा हाँ, जाए
3: जी। अरे बहुत इस समय परेशान
2: हो चाची जबानी कुछ मतलब देख के ना
1: वैसे लिखा
3: मुड़ियो ना हिलावे देते चाची।
1: अरे मोरी मैया ये तोरे स्कूलिया माँ
3: सब जगह होते
0: सब जगह इससे होते हैं
1: तो सब जगह होते तो मुड़ ना हलाओ जुआ खजुआ लगे तब क्या करो
3: मोड़ हिलावे माने कि एहर ओहर देख के कोई से इशारे बाजी ना करो कोनो चीज पूछो ना चाची
1: खजवाए लियो
3: चाची जो एबीसीडी सीखा थी आप आपो के कहो टेस्ट लिया जाए सभी
1: CBA
3: की कितना सीखे हो
1: CBA हाँ। ई सीखे ना और बी से बिलार
3: हाँ तो चाची टेस्ट ले हैं आपके
1: बी से बिलार और सी से कुकुर
0: हाँ चाची बढ़िया पढ़ी खूब बढ़िया पढ़े हो
1: चाची पढ़ाई नहीं बी से हाँ। बिलार और सी से कुकुर
0: तब कहा करी यह पढ़े तो आज मन कर रहा था तो हम वह पढ़ाई दे थे कुकुर बिलार में रही हो तो कुकुर बिलार पढ़े
1: चाची बा से भैंसियों होती
0: हाँ भा से भैंसिया होत है
1: भा से भैंसिया
0: हाँ
1: भा से भैंसिया
0: हाँ
1: अच्छा
0: जानियो कि ना जानियो
1: जाने बा से बिलार सी से कुकुर और भा से भैंसिया
0: और गा से गैया
1: गा से गैया
0: और पी से पांडे जी
3: और चा से चाची
1: पा से पांडे जी
0: हाँ और चा से चटपटी चाची
1: और चा से चटपटी
3: चाची जा से जाए थे हम राम राम चाची
1: जाती बनी
0: हाँ
1: तो हमहू सब चली तो चलो निकला जाए बहुत घाम होएगा बनी मूड और बांध लियो
0: यहाँ बार बार हम कहें हाँ, तुम लोगों का कि खूब बांध बूंद के घर से निकलो इस समय गर्मी बहुत बेटा बहुत
3: कलिया चाची लिए ना गुलाब सतना बड़ा के है जाबा पहन लीन जाता है इतना बड़ा
1: जाबा मुहक ले ली है
3: मुहक लिए ना एक तो हथवक लिए ना
1: तब बनी मुँह जाबा लगाओ तू तो कस के चलत खात क्यों
3: अरे
1: हाँ
0: रस्तवा में वैसे जब मुँह तो तनी के ढका रहे करिया ना
1: हाँ बहनी बांधे तो रहा
0: बांधे रहो तो रही हो
1: गर्मी से बचाओ और सुनो और खूब जो है बढ़िया अमवा जो चोरावत हूँ सबके बगे में जा जाए वो है अमवा घरे ले जाए उसे गारो और कोई गुदवा निकाल के हम झर्रा लगा लो पी जाओ
3: चाची जन इतना चटपटी चाची बताए ना पुदीना के पियो अमो अमो डाई के बहुत नीक लग रहा हम बनाए ना चाची
1: अच्छा
0: खूब पियो है वह गर्मी अर्मी सब शांत रही।
1: हाँ तो चाची
0: कपड़े जो है बांधे रहो बहनी कपड़ा पड़ा।
1: तो सुने लो चाची सतुआ हमो बना जा रहे नहीं, जब अब हम आप फिर जब आई तू से मिले तो सतुया ले तो बैठ के घर के
0: पातर वाला मट्ठो ले आयो।
1: अच्छा ठीक है पातर
2: चाची काजल हड़बड़ान ही
1: काजल मारी जई है जान
0: लो। चाची के संगत में हो सुन ले काजल चाची के संगत में हो कि नहीं हो तो डरे कोई जरूरत नहीं।
1: चाची से कमाल दिया दे
0: चाची कोस नहीं डरा
2: चाची आंती हूँ काहे शांति रे भूख बहुत तेज लाग।
0: हाय रे दादा मैं तो खाए हो
2: क्रीम रोलर्स इनके पेट ना भरा।
0: चलो दाल चावल अस भोजन हो वहाँ पेट भरी
1: ये का खवाई दे। हाँ।
2: चाची अपन भारतीय
1: दाल भात तरकारी खाए ले
0: भारतीय भोजन सबसे नीक दाल चावल तरकारी।
1: एक थरिया भर भात दे दो अब एक कटोरा दाल दे दो बैठ के खाई ले।
2: चाची दाल
0: जाओ अपने भाभी लगे जाओ भाभी परस दे खाई ले।
2: नहीं पसंद है
1: तब बहनी का खाती तू
2: बेलपुरी पसंद है
1: तब बेलपुरी से पेट भरा था
2: एनर्जी मिला था
0: तब जाओ भेलपुरी अब घर में बना लिया करो बहनी।
1: हाँ का
0: भेलपुरी तो घर में बन जाता है
2: नहीं बना पाई था चाची भैया देखे टेस्टी रहा।
0: अरे सुनो तो लैया
2: चाची बनाओ तो बताओ बनाओ नहीं
0: लैया तो घर में धरे हुई है मूंगफली दनवा हुई है।
2: हाँ।
0: हाँ। अब बढ़िया जो है चटनी बना लो इस समय अमुआ खूब है।
2: हाँ।
0: और एक मीठी चटनी बना लो खट्टी चटनी बना लो।
2: हाँ।
0: और प्याज काट लो टमाटर काट लो हरी मिर्चा काट लो अदरक तनिक काट लो सब वह लैया मिला दो चटनी मिला दो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे खूब गबर दो माँ और खूब बढ़िया खाओ। अच्छा। देखो कितनी बढ़िया लगी भेलपूरी।
1: बहरे के समनवा ना खावा
0: ना खाओ भैया हम दिल्ली हुई के आज हमार पेट जौन बुरी हालत में हुई
1: सब पार्टी में गई है और पार्टी में खाना भर के जल्दी जल्दी खाई
2: खूब मटाए गयी चाची।
1: हाँ अच्छा तो हम हो चलते बहनी हम घर का जाई दादा हमारे भैंसिया
0: चलो चलो
1: सबका राम राम भैया
0: सबका राम राम। तो ये रहा है 89.6 FM रेडियो स्टेशन में सब आप लोगन का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग सुनत हो प्रोग्राम बहुत मन लगाए के सुना है और ऊपर कमेंट्स भी बढ़िया बढ़िया दिया करो। कमेंट्स ना ही आवत है यह से जो है मन तनिक हाँ बुझ जात है और हम कही थे आप लोगों से कि खूब बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दो तो हम लोग बढ़िया बढ़िया किस्सा कहानी सुनाए सुनाए आप लोगन का मनोरंजन करब।
1: हाँ हमारे चाची एक हमें सिखाई नहीं तो सुन लो ज्ञान स्थली 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन
2: धक धक।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

0: फल से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। एक बार पुनः आप सभी को, और आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। तो भाई, इस ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट में आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आइए, चैट बॉक्स जो सुना पड़ा है इसको भर दीजिए भाई, जरा जरा आपसे शाम का सलाम हो जाए, आदाब हो जाए, नमस्कार हो जाए। और जी, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता श्रीमती सविता शास्त्री जी जुड़ी हुई हैं। शुभ संध्या सर जी, नाइस सॉन्ग जी, हाँ गीत हम अच्छे बजाने की कोशिश करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, और वास्तव में जो ओल्ड है वो गोल्ड होता है। जो पुराने गीत हैं उनको सुनने का एक अपना अलग आनंद है, एक अपना अलग मज़ा है, और उसमें अगर आप शरीक हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जी हाँ, आपके संदेश की रहती है प्रतीक्षा, ताकि हम जान पाएँ कि भाई हमको सुन कौन रहा है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तुम मुझे आजमाने की कोशिश न कर। बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने एंजॉय किया। जी हाँ, अब ले चलते हैं आपको बहुत ही प्यारा सा गीत, और यह गीत तब होगा जब हम आपसे ये कहेंगे कि भाई हम और तुम, हम और आप, अगर एक दूसरे का साथ देने का वादा करें तो शाम बहुत खूबसूरत हो सकती है। जी हाँ, तो आपके साथ की प्रतीक्षा है, और साथ की प्रतीक्षा के साथ साथ आइए आपको सुनाते हैं ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्या बात है, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां घबरा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से शर्मा गए। क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा गीत भाई आपने सुना। और अब चलते हैं भाई आपके, क्या बात है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारे साथ चैट बॉक्स में। और अनिल शास्त्री जी हैं, गुड इवनिंग मनु जी, शुभ संध्या आपको भाई। अनिल जी कैसे हैं दादा, थोड़ा स्पर्श, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जी, आंखों के बारे में बहुत सी बात कही गई, नैनों में कई बातें हैं। कहा जाता है कि जो इंसान जुबान से नहीं बोल पाता वो आंखों से कह देता है। बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, बहुत गजलें सुनी होंगी जो आंखों पर है। आइए आपको एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं जो आंखों के ऊपर है। हो सकता है ये नगमा आपके दिल को और छू जाए। सुनकर बताइए कि ये नगमा आपको आंखों वाला कैसा लगा। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, आंखों की बात हो गई और परदेसियों से ना आंखियां मिलाना परदेसियों को है एक दिन जाना। शायर ने कहा कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है, दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है, दिल किसी का भी हो दुखने से बचा रखा है, दर्द का नाम मोहब्बत ने दवा रखा है। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत में वहीं देखने के लिए, लौट जाए न कहीं तेरी जसारत में वहीं, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है, आप कुछ देर के साथी हैं हमेशा के नहीं, आप कुछ देर के साथी हैं हमेशा के नहीं, मैंने पहले सी से अंदाजा लगा रखा है, मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई, मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई, तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। जी हाँ, ये महफिल आपकी है, इसमें हम भी हैं और आप भी हैं, तो भाई आपकी शिरकत भी होनी चाहिए, तो आइए शिरकत फरमाइए। और नैनों की बात चली है तो आइए नैनों के नाम एक प्यारा सा नगमा और सुनाते हैं आप।

जी वो घड़ी आ गई भाई, आपकी परीक्षा की घड़ियाँ हो गई समाप्त, और अब जो गीत बजेंगे वो बजेंगे जो चाहेंगे आप। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का, और चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रीना शर्मा जी से, जो हमको सुनती हैं रुड़की उत्तराखंड से। चलिए पहली फरमाइश उनकी और इसके पश्चात अब फरमाइशों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ इस गीत के साथ। मन गाए जो तराना, फिल्म का नाम चला, आवाज सुमन कल्याणपुर।

जी हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अब हो चुका है प्रारंभ। और दूसरी फरमाइश है हमारे पास अनु जी की बेलसर से, ओए सोड़िए दिल जानिए इसे खेल न समझो सनम जी, ओ मैंने तुझे प्यार किया। जी हाँ, अनु जी की फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ बिल्कुल, प्यार किया और प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता। अगली फरमाइश हमारे पास जहान की है और उन्होंने कहा है, चली आना तू पान की दुकान पर, ये गीत उन्होंने डेडिकेट किया है कायनात जी को। तो जहान की फरमाइश पर ये गीत है, डेडिकेट है कायनात जी को, चली आना तू पान की दुकान पर। और समय भी बता दिया है, बहरहाल वो समय आज तो निकल चुका है लेकिन कल आ सकता है।
1: टोपी लंदन।

जी हाँ, इस प्यारी फरमाइश के मतलब चलते हैं भाई। हमारी अगली फरमाइश है जी, बहुत ही प्यारी फरमाइश मुस्तफ़ा सऊदी जी ने की है। चलिए अब पूरी करते हैं मुस्तफ़ा सऊदी जी की ये प्यारी सी फरमाइश।

0: जी हाँ, विवाह के बाद पत्नियां जो यही कहती हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पहले जमाती थी, बाद में कहती हैं कि अब दही सीधे ले आइएगा, जमाएंगे नहीं। जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश। अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता श्री राजेश सिंह मालवीय नगर जी की फरमाइश है। और उनकी फरमाइश है, क्या फरमाइश है भाई, ज़रा मुड़ के तो देख कुड़ी है। तो जी हाँ, कुड़ी ने मुड़ कर देख लिया है और राजेश सिंह जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।
1: ओ चन जी, जरा मुड़ के तो देख लो।

0: जाते जाते ओ जरा जाते जाते।
1: जी हाँ, देख लो कुड़िए भाई, राजेश सिंह जी आवाज दे रहे हैं और इसके पश्चात चलते हैं श्रीमती शशि सिंह की फरमाइश है, और फरमाइश है कितना मजा आ रहा है, आवाज है जी लता मंगेशकर जी की। तो चलिए चलते हैं श्रीमती शशि सिंह की ये प्यारी सी फरमाइश।

जी हाँ, कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। और इसी बीच अब चलते हैं भाई, विजय पाल यादव जी की फरमाइश है हमारे साथ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्री विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर।

0: जी हाँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, क्या बढ़िया संदेश दिया भाई। और अब चलते हैं हमारी बहन जी प्रीति शुक्ला जी की तरफ, और उनकी आवाज़ है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। जी हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें खुशियाँ लुटाती रहें। जी हाँ, ये अब ये फरमाइश पूरी करते हैं प्रीति शुक्ला जी की प्यारी सी फरमाइश।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के

0: मैं कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाए।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तो मैं अंधेरे में ही रहना होगा।

क्या गीत भेजा आपने, तू जहाँ भी रहे। और इसके पश्चात चलते अपने बहुत ही प्यारे श्रोता कमल नयन जी की फरमाइश, और उनकी फरमाइश है जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, बहुत प्यारा गीत ये। जी हाँ, इसके पश्चात आइए चलते हैं अब सीधे कमल नयन जी की फरमाइश पर।

जी हाँ बिल्कुल बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो प्यार गहरा ही हुआ है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता कमल नयन जी की फरमाइश पर अब चलते हैं, अपने दर्द कुमार जी की फरमाइश है भाई, और उनकी फरमाइश है, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती तो खुदा की कसम ये खुदाई न होती। बेटी बेटे का ये प्यारा सा गीत इंजॉय करते हैं हम अपने दर्द कुमार उर्फ सुरेश कुमार जी की प्यारी सी फरमाइश पर।

जी हाँ बिल्कुल, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। और इसके पश्चात चलते हैं भाई हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। जी हाँ, दिल तोड़ दिया है लेकिन फिर भी ढूंढ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये धर्मेंद्र मोहन जी, जिसने आपका दिल तोड़ा आप उसे ढूंढिए, बहुत अच्छी बात है। उसे ढूंढने में हम आपकी सहायता भी करेंगे।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रो ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार।
8: शिमारू फिल्मी गाने के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।

जी हाँ, और ये मनमोहक प्रस्तुति जो आप सुन रहे हैं ये श्री प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश है, उनके बचपन के दिनों की याद ताज़ा कर रही है। जी हाँ, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रबल जी आप।

सिया भाई, तो पवन मिश्रा जी की प्यारी सी फरमाइश की तरफ चलते हैं भाई, रईस जी की फरमाइश की तरफ। छल्ला वल्ला क्या बात है भाई, कौन सा छल्ला और कौन सा वल्ला, फिलहाल देखते हैं।

जी हाँ, इस प्यारे से गीत के बाद आइए अब चलते हैं रितिन सिंह जी की फरमाइश है, एक तो कम जिंदगी, और इसके बाद भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता मनी सिंह जी की फरमाइश है, मनीष शर्मा जी की फरमाइश है, खैरियत।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। और चलते हैं, मोहिनी तिवारी जी की फरमाइश है, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस के ऊपर, और बहुत ही प्यारी आवाज़, और दर्द में डूबा हुआ।

भूले जी हाँ, वास्तव में इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन प्यार नहीं भूल पाता। और अब चलते हैं राजू सलमानी जी की फरमाइश से, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल।

0: आइस्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ क्वालिटी स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
0: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आराम आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणसली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास, सुकून का ये पल। अब जब पल आता है, लम्हा आता है, तो शाम याद आती है, लोरियां गजलें गीत, क्या बात है। जो बातें रास की है उनको भी ये आम कर देगी, जो बातें राज की है उनको भी ये आम कर देगी, तुम्हारी दोस्ती एक दिन मुझे बदनाम कर देगी। जी हाँ, कभी कभी दोस्ती में बदनामी आती है। हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनु सर जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपांशी जी हैं, शुभ संध्या सर जी, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी। नीना जी हैं, नमस्कार सदा आदाब आपको। और अब ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके पश्चात, अरे गुड नाइट, अरे नहीं साहब, अरे अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं नहीं साहब, गुड नाइट बोलने का अधिकार है ही नहीं। ये बहारे गजल में गुड नाइट हम ही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। और जी गजल अच्छी लगी आपको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता शास्त्री जी, बहुत अच्छी गजल, क्या बात है भाई। और सचिन शुक्ला जी, हेलो एवरीवन, जी हाँ हेलो। और सुकून की तलाश में जी, ज़रा नज़रों से कह दो जी, ये तो हमको सुन रहे थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और होता भी है साहब जिंदगी में ना, जहाँ पर कभी कभी जो रिश्ते होते हैं, वो उन रिश्तों से हम कभी कभी सोचते हैं कि जहाँ से हमने रिश्ता शुरू किया था, एक बार पुनः वहीं से रिश्ते शुरू किए जाए तो बहुत अच्छा है। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। उन्होंने लिखा कि हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें, और प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कहकर तो देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें, दर्द मंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, दर्द मंदी के सभी रिश्ते धरे रह जाएंगे, आंसुओं का बोझ अगर पलके उठाना छोड़ दें। और अंत में बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या, बारिशें दीवार धो देने की आदि है तो क्या, हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। जी हाँ, अगर अच्छाई रुक गई कहीं और बुराई हार गई, तो इसका मतलब बुराई की विजय हो जाएगी। एक घटना मुझको याद आती है कि एक संत जो है वो नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी की धार में बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने सोचा कि भी आगे जाएगा तो मर जाएगा, तो उन्होंने क्या क्या किया कि अपनी अंजुली से बिच्छू को लिया और बाहर फेंकने की कोशिश की। बिच्छू ने डंक मार दिया,
साधु ने फिर कोशिश की, लाओ बाहर फेंक दें, जान बच जाए। फिर उसने डंक मार दिया। तीसरी बार फिर कोशिश की और बिच्छू डंक मारता रहा। किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने उस संत से कहा कि आप जानते हैं कि आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको बार बार डंक मार रहा है, और बावजूद इसके आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डूबने दीजिए उसे। संत ने कहा, मित्र बात इसमें बिच्छू की और मेरी नहीं है, बात इसमें अच्छाई और बुराई की है। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, वो डंक ही मारेगा, उसकी जान पे बनाई है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है। मैं संत हूं, मेरा काम है जीवन को बचाना। मेरे सामने कोई अगर मर गया तो ये मेरे जीवन की तौहीन होगी, अपमान होगा। तो अगर बुरा अपनी बुराई से नहीं बाज आ रहा है तो अच्छा अपनी अच्छाई से क्यों बाज आ जाए। यहां पर बिच्छू और मैं महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर महत्वपूर्ण है कि बुराई क्या है और सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अगर आज ये बिच्छू डूब के मर गया तो इसका मतलब मेरे सामने बुराई जीत जाएगी और अच्छाई हार जाएगी। हम बुराई को जीतने नहीं देंगे, इसलिए हम इसको बार बार बचाते रहेंगे जब तक हमारे श्वास में श्वास है। यही होता है, अक्सर हम लोगों के साथ कुछ नेगेटिव बात, अगर नकारात्मक बात एक या दो बार हो जाती है तो फिर क्या होता है हम सभी के साथ। हम सभी दिन भर में आपको 10 चीजें सकारात्मक मिली हो और कहीं कुछ नकारात्मक मिल जाए तो क्या करते हैं आप। हमारे पास जो सकारात्मक चीजें मिली उनको, उनकी तरफ हमारी निगाह नहीं जाती, बल्कि हमारी निगाह जाती है उन 10 सेकंड की नकारात्मक चीजों पर कि उसने आज हमको ऐसा कह दिया। होता होगा आप सभी के साथ। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अगर 86,400 रुपए आपके पास है और 86,400 रुपए में आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाए, कहीं छूट जाए आपसे, ध्यान न रह जाए, पर्स से गिर जाए, जेब से गिर जाए, तो 86,400 रुपए आपके पास थे, अगर 10 रुपए गिर जाएंगे तो क्या उस 10 रुपए के गिरने का गम होना चाहिए आपको, या आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि 10 रुपया गिरा, 86,390 हमारे पास हैं। अब अगर कोई व्यक्ति उस 10 रुपए के लिए रो रहा है तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि मूर्ख है, 86,390 नहीं दिखाई पड़ रहा है इसको, इसको वो 10 दिखाई पड़ रहा है जो चला गया। निसंदेह हम सभी ऐसा ही सोचेंगे। मित्रों, वो 86,400 रुपए हमारे एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, गुणा करके देख लीजिएगा 86,400 आएगा। 10 सेकंड के लिए हमको किसी ने कुछ खराब बोल दिया, क्या होता है हमारे साथ। हम 10 सेकंड की खराब बात को सुनने के बाद अपना 86,390 सेकंड बर्बाद कर देते हैं उस दिन को, और अच्छा काम नहीं कर पाते। तो जरा सोचिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या समझदार हैं? जी नहीं। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने 10 सेकंड की कोई खराब बात सुनी, एक कान से सुनी और निकाली, और बाकी 86,390 सेकंड को खुशी के साथ जिया। जी हाँ, बात रिश्तों की कर रहे हैं तो कभी कभी रिश्ते ऐसे मुकाम पर आते हैं साहब, कभी सोचिएगा जिंदगी में कि आज आपकी लाइफ जहां पर है, जो व्यक्ति आपके साथ है, जब आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी उस व्यक्ति के साथ तो कैसा था। अभी मोहब्बत नई नई है, क्या चाहत थी, क्या खुशबू थी, कितना देख लेने का, कितनी बार देख लें,
ये चिंता लगी रहती थी, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तबीयत खराब हो गई, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, दवाई करा दें। और वही व्यक्ति जब धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है तो हम उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि करूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। मेरे जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनकी रखवाली ऐसे करता हूं जैसे माता अपने बच्चे की देखभाल करती है। लेकिन प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछल बाता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता उतनी परवाह नहीं करती, क्योंकि माँ को पता होता है कि उसका बच्चा समझदार हो चुका है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो दो चीजों से उनको बहुत लगाव होता है, एक आग से और एक सांप से। अगर जाड़े में आपने कभी आग जलाई होगी, कोयला जला होगा, तो बच्चे आग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और माँ जल्दी आती है, अरे कहती है नहीं नहीं बाबू तत्ता है, समझाती है। और जब बच्चा कभी आग को छू लेता है तब उसके सोन में आ जाता है, तत्ता है, मम्मी मना कर रही थी। तो प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछल बाता। बच्चा बड़ा हो गया तो माँ की परवाह कम होती है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे लिए चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मैं तब भी उसकी उतनी ही देखभाल करता हूँ जब वो छोटा होता है, मैं उतनी ही देखभाल उसकी तब भी करता हूँ जब वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा होता है। मेरे लिए बचपन और जरावस्था वृद्धावस्था में कोई अंतर नहीं, बस वो अगर मेरा है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है साहब। जिन रिश्तों को आपने जहाँ से शुरू किया था, आज जहाँ पर रिश्ते हैं, अगर कितना ही अच्छा हो, अगर वो रिश्ते फिर से वहीं से शुरू हो जाए तो सोचिए आपकी ज़िंदगी में रौनक कितनी आ जाएगी, कितनी रौनक आ सकती है। तो कभी कभी मन करता है कि क्या काम करे, वहीं से शुरू करे ज़िंदगी जहाँ हम पहली बार मिले थे और एक दूसरे से अजनबी थे। तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, एक बार भूल जाते हैं कि हम आपको जानते हैं और आप हमको जानते हैं, और शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी। जी हाँ, तो इस पहली मुलाकात के नाम ये प्यारी सी गज़ल महेंद्र कपूर की आवाज़ में, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। पर्दे पर सुनील दत्त के साथ किशोर कुमार भी उपस्थित हैं और गज़ल आपके हृदय को छू कर निकलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सुनते रहिए और रेडियो गणेश स्लेट 9.6 एफएम है कोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए उसके पहले। क्या गजल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वास्तव में कहीं कहीं रिश्ते ऐसे होते हैं और हम चाहते भी हैं कि शुरुआत वहीं से करें, कितना ही अच्छा हो। जी हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, एच कुमार जी आ चुके हैं। क्या बात है भाई आपका, खैर मकदम है। ये जो रिश्ते हैं ना, नासमझी के बीच यहीं पिसते हैं। और गुड नाइट मत बोलिए भाई। ये सचिन शुक्ला जी हैं, वंडरफुल मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद। 86,400 86,390 जी जो आप गुड़ा करके देख लीजिए, 24×60×60 आपको सही मिलेगा। और इसमार जी ने कहा राइट भाई, मनीष शर्मा जी ने भी बात का समर्थन किया है। क्या बात है भाई, बहुत खूब जी। जिंदगी में बिखराव है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान बाहर से आपको दिखाई पड़ता है कि बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं हल्का सा टूटा हुआ है। और इसी टूटने से अपने आप को बचाने का नाम शायद खूबसूरत जिंदगी है। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि कि अब पैरों में चुभा कांटा निकाला नहीं जाता मुझसे। जी हाँ,

और जिंदगी साहब, वसीम अली साहब कहते हैं कि कैसा दरिया है कि प्यासा तो न मरने देगा, कैसा दरिया है कि प्यासा तो न मरने देगा, अपनी गहराई का अंदाजा न करने देगा। खा के पाहो मिलो जिससे मिलो फिर देखो, यानी आप कामयाब होकर मिलिए किसी से, इस बुलंदी से तुम्हें कौन उतरने देगा। डूब जाने को जो तकदीर समझ बैठे हो, डूब जाने को जो तकदीर समझ बैठे हो, ऐसे लोगों में मुझे कौन उभरने देगा। सबसे जीती भी रहे, सबकी चहेती भी रहे। आप अगर ये चाहते हैं कि आप सबसे जीतें और सब लोग आपको प्यार करें, तो शायद ये दोनों चीजें एक साथ नहीं संभव है। जिसे आप हराएंगे वो आपका अच्छा साथी नहीं हो पाएगा। सबसे जीती भी रहे, सबकी चहेती भी रहे, जिंदगी ऐसे तुझे कौन गुजरने देगा, मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी साहब ने कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चराग जला दूं जहां अंधेरा है। और उनकी यह पंक्ति भी बहुत वायरल हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अनमज लालपुरी ने इस चीज पर कहा कि मैं एक चराग हूं, दीवार है न छत मेरी, मैं एक चराग हूं, दीवार है न छत मेरी, हवाएं फिर भी करती हैं मुखालिफत मेरी, मैं बादशाह हूं गुजरे हुए जमाने का, मैं बादशाह हूं गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई ये घर में सल्तनत मेरी। जिंदगी पर वसीम रजी साहब ने कहा कि कौन सी बात, तीन चीजें कही, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। इस दुनिया में गम से कोई खाली नहीं है साहब, हर व्यक्ति के पास अपने अपने दर्द हैं। अफसोस कुछ लोगों के पास हमदर्द है जिसके साथ वो अपना गम बांट सकते हैं, और कुछ लोगों के पास हमदर्द नहीं है, वो अपना गम भी किसी से कह नहीं सकते। इस भरी दुनिया में वो अपने गम को किसी से नहीं कह पाते, तो फिर भरी महफिल में इस बात का अलल ऐलान करते हैं, ऐलान करते हैं कि गम बहुत हैं लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। मुझे उम्मीद है कि आप इस गज़ल को भी पसंद करेंगे। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से गीत इंसान के जीवन को टटोलते हैं। कभी कभी परिस्थितियां कहती हैं तो ये कहा जाता है कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, थीम है। कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाले के विचार व्यवहार, मजबूरियां और परिस्थितियां सब इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। सही बात है। और वेरी थिंग सुनियल किसी कमेंट्री की है, क्या बात है भाई। और आप लोगों के साथ ये 6:30 से 10:30 कब बज गया समय का अंदाज़ा नहीं लगा। चलिए, अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बाहर एक गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: उन्नति उठो वहां से।
2: अरे भाई क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो?
1: अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उठो जल्दी वहां से।
2: क्यों, सुबह से थक गई हूँ यार, अभी आकर बैठी हूँ, क्यों उठूं?
1: अरे यार इस कुर्सी पे नहीं बैठना होता, ये मौत की कुर्सी है।
2: मौत की कुर्सी?
1: और क्या, जो बैठता है ना वो सीधा यमराज के पास।
2: भाई ऐसा मत बोलो।
1: और अब तुम कितने दिन की मेहमान हो आए? दोनों
2: यार ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी पॉलिसी के पैसे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं।
1: लेकिन देखो कितने ही दिन की मेहमान हो।
2: वैसे ये बताओ, ये हमारी ये घूमने वाली कुर्सी मौत की कुर्सी बनी कब?
1: देखो यही तो बात है, देखो ऐसे ही लोग डर जाते हैं। लेकिन ये जो मौत की कुर्सी है ना, ये नहीं है, लेकिन एक कुर्सी है जिसपे जो भी बैठता है वो सीधा ऊपर।
2: कितना ऊपर?
1: भगवान के पास।
2: कोई पहचान है उस कुर्सी की? मतलब स्टील की है, लकड़ी की है, किस चीज की बनी है? मतलब मैं देख के पहचानूंगी कैसे?
1: एक कुर्सी जो कि श्राप से बनी है।
3: नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं पर्दा, वो पॉडकास्ट जहां हम वो पर्दे उठाते हैं जो लोग उठाना नहीं चाहते। मैं हूं उन्नति।
1: और मैं आयुषी। और आज का किस्सा एक ऐसी कुर्सी का है जो कि आम सी दिखने वाली कुर्सी है, लकड़ी की, लेकिन बनी हुई है श्राप से। एक पुरानी कुर्सी जिसके बारे में बहुत सी बातें हैं, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में लोग आज भी सुनते हैं तो खौफ खा जाते हैं कुर्सियों से। ये कोई फिल्मी बात नहीं, ये सच में हुआ था। इतना सच कि एक म्यूजियम ने इसको जमीन से उठाकर छत पे लटका दिया ताकि कोई उस पे बैठ ना सके कभी भी।
2: एक कुर्सी को छत से लटकाया? यार ये बहुत अजीब नहीं है, कोई म्यूजियम ऐसा क्यों करेगा?
1: करेगा, वो तो मैं आगे समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर पहले इस स्टोरी को समझते हैं। पहले थोड़ी दूर पीछे चलते हैं, इंग्लैंड में। साल था 1702 और एक आदमी जिसका नाम था थॉमस बस्बी।
2: तो ये थॉमस बस्बी कौन था और क्या करता था?
1: यॉर्कशायर था, इंग्लैंड का एक हिस्सा। वहाँ पे एक सुनसान, एक खामोश इलाका, वहाँ थॉमस बस्बी रहता था। बाहर से एक आम आदमी लगता था लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने ससुर डेनियल ऑटी के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाता था, मतलब धोखा करता था।
2: तो दोनों पार्टनर्स थे, ससुर और दामाद?
1: हाँ, वो पार्टनर्स तो थे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अंदर ही अंदर एक दूसरे को देख के खूब जलते थे। और बस्बी को एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी थी जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी, अपने पास के एक पब में रखी एक बहुत ही प्यारी सी कुर्सी। एक ऐसी कुर्सी जो कि कहीं ना कहीं सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। वो कुर्सी सिर्फ उसी की थी, कोई और नहीं बैठ पाता था उसपे। हर कोई जानता था कि बस्बी की कुर्सी पर नहीं बैठना है।
2: कुर्सी के लिए इतना लगाव क्यों?
1: देखो कुछ लोगों को ऐसी चीजें बहुत अजीज होती हैं, कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, और वो कुर्सी बस्बी के लिए वही थी।
2: ठीक है, बट आगे क्या हुआ?
1: एक रात बस्बी वापस आया पब में और उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था जिसका नाम था डेनियल ऑटी, उसका ससुर। बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
2: ओह नो, और मुझे लगता है किसी की पसंदीदा चीज लेना खतरनाक है। फिलहाल बस्बी ने क्या किया?
1: बस्बी ने फिर वो किया जो कि एक बहुत ही खौफनाक कहानी हुई। ऑफ कोर्स किसी की चीज को लेगा तो इंसान तो अपनी असली रूप में आएगा ही। देखो पहले लड़ाई हुई, फिर बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हुई। पैसे का गुस्सा, सालों का गुस्सा, और अब ये यानी कि कुर्सी का गुस्सा, और सब एक साथ हुआ। और उस रात बस्बी ने अपने ससुर को मार डाला, वो भी हथौड़े से।
2: मार डाला, वो भी सिर्फ एक कुर्सी की वजह से?
1: सिर्फ एक कुर्सी की वजह से।
2: तो फिर बस्बी को पकड़ा गया होगा?
1: हाँ, मुकदमा हुआ, सजा मिली, और सजा थी मौत यानी कि फांसी। 1702 में यही होता था इंग्लैंड में, जब भी कुछ क्राइम होता था तो कोई माफी नहीं होता था और कोई भी दोबारा मौका भी नहीं दिया जाता था।
2: और उस तरह का आदमी चुप तो बिल्कुल नहीं रहता होगा, और मुझे लगता है कि बस्बी ने मरने से पहले जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा।
1: सही पकड़ा, जब उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो उसने एक मांग की, बोला कि मुझे एक बार बस अपनी कुर्सी पर बैठ

0: चौराहे पे, वहां एक खंभे पर फांसी दी। लाश को वहीं लटका दिया गया घंटों तक ताकि लोग उसे देखें और डरें। पब का नाम बाद में उसी खंभे के नाम पर रख दिया गया, यानी कि बस भी स्टोपिन। और अंदर अंदर वो कुर्सी वहीं रखी थी, एक कोने में, खामोशी में और इंतजार में।
1: इंतजार किसका?
0: यही आगे पता चलेगा।
1: तो बसबी के मरने के बाद कुर्सी का क्या हुआ? किसी ने उसे हटाया नहीं?
0: नहीं हटाया, कोई छूता ही नहीं था उसको। पब चलती रही, लोग आते रहे, लोग पीते रहे, लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा। बिना किसी के बताए सब जान गए कि वो कुर्सी अलग है, एक कुर्सी जिस पे सिर्फ और सिर्फ बसबी का हक है।
1: बसबी के ना रहने के बाद भी इतने सालों तक कोई नहीं बैठा?
0: कुछ सालों तक तो नहीं, लेकिन इंसान का दिमाग भी अजीब होता है, धीरे धीरे भूलने लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो डर को चैलेंज करना चाहते हैं। वो लोग पब में आए और एक रात किस्मत ने पलटा खाया।
1: कैसे, क्या हुआ?
0: अभी बताती हूँ, पहले एकदम गहरी सांस ले लो।
1: तो उस चेयर पे कौन बैठा?
0: बहुत सालों बाद की बात है, 1800 के आखिर में एक चिमनी वाला आया, मतलब जो लोगों के घर में चिमनी साफ करता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। सब खुश थे और उस पब में बैठ के पी रहे थे, हंसे जा रहे थे। किसी ने उसे डराया कि चल बैठा जाए उस कुर्सी पर, या शायद वो खुद ही बैठ गया। ठीक से ये किसी को पता नहीं है कि आखिर उन दोस्तों में क्या बात हुई, लेकिन वो बैठ गया। सबने तालियां बजाई उसके बैठने पर, सब हंसे और वो चुपचाप अपने घर चला गया।
1: फिर कुछ हुआ उसे?
0: अगली सुबह वो मिला उसी जगह पे जहाँ पे बसबी को फांसी दी गई थी, उसी खंभे के पास लटका हुआ, मरा हुआ।
1: वही जगह? वो वहाँ खुद गया था या कोई लेकर गया था?
0: ये तो आज भी मिस्ट्री है कि वो आखिर वहां पे कैसे पहुंचा, और ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, न तब न आज। वो वहां था, बस इतना ही सबको पता चला।
1: और ये बात बड़ी मिस्टीरियस है।
0: और ये एक शुरुआत थी, अभी तो मरने का काफिला शुरू ही हुआ था।
1: मतलब उसके मरने के बाद फिर कोई और बैठा?
0: 1940s में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यॉर्कशायर के पास एक कनाडा वाली सेना की जगह थी जहां पे जवान रहते थे। वहां के जवान लड़के मिशन पर जाते थे, हवाई जहाज से दुश्मन की धरती पर। ये लड़के बसबी स्टूप इन में आते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे, और उस कुर्सी को सिर्फ दूर से देखते रहते थे।
1: और उन्हें पता था क्या कि ये कुर्सी क्या है?
0: पता था, इसीलिए तो खेल शुरू हुआ उनके बीच। सब एक दूसरे को कहने लग गए, चल बैठ उस पर, अरे हिम्मत तो कर। कोई कहता था कि मैं बैठूंगा, कोई डर जाता था, लेकिन कुछ लोग हिम्मती थे जो हंसते थे और कहते थे बैठ जाते हैं, और वो मिशन पर चले जाते।
1: और क्या फिर वो वापस आए?
0: नहीं, लोग बात करते थे, धीरे धीरे जो भी उस कुर्सी पर बैठता था वो जिंदा नहीं बचता था, उसकी मौत हो जाती थी। जो भी आता उस कुर्सी पर बैठता, उसका जहाज कभी नहीं लौटता। बार बार पूरा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो भी उस पे बैठा वो नहीं था।
1: लेकिन युद्ध में तो मौत होती है ना, ये इत्तफाक भी तो हो सकता है।
0: हो सकता है, लेकिन आगे भी सुनो, फिर तुम खुद सोचना कि ये इत्तफाक था या कोई श्राप। फिर आया साल 1967, और
1: 1967 क्या हुआ था?
0: युद्ध खत्म हो चुका था, पब में एक नया मालिक आ गया था जिसका नाम था टोनी अर्नशॉ। एक रात दो सेना के जवान उस पब में आए, हंसते हुए, बातें करते हुए। टोनी ने उन्हें उस कुर्सी के बारे में बताया और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया, बारी बारी उस पर बैठने का, और सब ठाके मार के हंसने लग गए।
1: टोनी ने उन्हें रोका नहीं?
0: रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन जवान लोग मानते कब हैं। वो हंसते हुए निकल गए रात को, अपने हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे और कुछ ही दूरी पे उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई।
1: दोनों टोनी ने क्या ये देखा अपनी आंखों से?
0: नहीं, देखा नहीं, लेकिन सुना, और वो ये बात कभी भी नहीं भूला। उसने कई लोगों को बताई ये बात, और तब से उसने ठान लिया कि इस कुर्सी का कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा।
1: तो क्या किया टोनी ने, क्या किया उस कुर्सी के साथ?
0: पहले उसने उस कुर्सी को नीचे बेसमेंट में रखवा दिया, अंधेरों में, लोगों की नजर से बिल्कुल दूर। लेकिन पहले 1970s में तीन और घटनाएं हुईं।

0: तीन, एक के बाद एक।
1: हाँ, अब तुम थोड़ा गौर से सुनो। पहला, एक राजमिस्त्री कुछ काम कर रहा था वहीं पास में बैठकर। लोगों ने उसके बारे में उसको सब चीज बताई कि आखिर ये क्या कुर्सी है, और फिर सबने उसे वहां पे बैठने को कहा। वो बैठा, हंसा और चुपचाप वहां से चला गया। पर कुछ घंटों बाद एक छत से सीधा नीचे गिर गया और वापस कभी नहीं उठा।
0: छत से गिरा सीधा?
1: हाँ, सीधा।
0: और दूसरा?
1: दूसरी थी सफाई करने वाली एक औरत, पब में पोछा लगा रही थी, उसका पांव फिसला और सीधा जाकर वो उस कुर्सी पर गिर गई। एक हफ्ते बाद जाके पता चला कि उसके दिमाग में कुछ हो गया और वो बच नहीं पाई।
0: उसको तो पता भी नहीं था, वो जानती भी नहीं थी और ना वो जानकर उस कुर्सी पर बैठी थी, फिर भी?
1: फिर भी।
0: ओके, अब तीसरा कौन था?
1: तीसरा सबसे अजीब था। कुर्सी बेसमेंट में थी और वहां पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। एक सामान पहुंचाने वाला आदमी आया, नीचे गया और बार बार वो ऊपर से सामान नीचे लेकर आ रहा था। बहुत ज्यादा थक गया। एक कोने में उसने एक कुर्सी देखी और वो वहां पे जाकर बैठ गया सिर्फ आराम करने के लिए।
0: और उस बेचारे को पता भी नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस पर बैठ रहा है वो क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा होगा उसने। एक घंटे बाद बाहर गया अपना सामान लाने और वहां पे काम करने। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और वो भी गया।
0: बेसमेंट में भी, अंधेरों में भी कुर्सी ने अपना वही काम किया।
1: हाँ, कुर्सी को दिखावट की जरूरत नहीं थी, कोई नाटक नहीं, बस बैठना ही काफी था।
0: फिर टोनी ने क्या किया? इतनी सारी मौतें देख ली थी उसने तो।
1: साल था 1987 और 1987 में टोनी ने थ्रिस्क म्यूजियम को बुलाया। यहाँ एक म्यूजियम है इंग्लैंड में और उसने उनको बुलाकर कहा कि ये कुर्सी को ले जाओ, मैं इसे नहीं रखना चाहता, ये मेरे यहाँ नहीं रहनी चाहिए बस। और फिर म्यूजियम वालों ने उस कुर्सी को ले लिया।
0: म्यूजियम वालों ने उसे रख लिया और उसे पूछा नहीं क्या? फिलहाल वो डरे नहीं?
1: शायद वो डरे, इसीलिए उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया। कुर्सी को जमीन पर नहीं रखा बल्कि छत से ऊपर लटका दिया। पांच हाथ ऊपर उसने इस कुर्सी को लटका दिया और ये सोचा कि इसको ऐसी जगह रखे जहां पे बैठना मुमकिन ही ना हो।
0: पांच हाथ ऊपर, ये तो बहुत अजीब बात है म्यूजियम के लिए।
1: और एक रूल बना दिया गया सफाई करने वालों के लिए, देखभाल करने वालों के लिए, कि कोई भी उस कुर्सी को नीचे नहीं उतारेगा और कभी भी उस पर बैठेगा नहीं।
0: मतलब म्यूजियम वालों ने भी मान लिया था कि ये श्राप सच है।
1: उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर नहीं मानते तो कुर्सी को जमीन पर ही नहीं रख देते, छत पे लटकाए क्यों? और आज भी, यानी कि 2026 में भी, वो कुर्सी वहीं लटकी हुई है। एक छोटी सी तख्ती पर लिख दिया, मौत वाली कुर्सी, थॉमस बस्बी, बैठना मना है।
0: और इसके बाद कोई नहीं बैठा है ना?
1: कोई नहीं, वो लटकी ही रही और बस लटकी। देखती सबको थी लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पाता था।
0: वो वही कुर्सी थी ना सच में जिसपे बस्बी का हक था, जिसपे वो बैठा करता था?
1: यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक पुरानी चीज जांचने वाले डॉक्टर एडम बॉविट, उन्होंने इस कुर्सी को गौर से देखा और कुछ अजीब पाया।
0: क्या?
1: कुर्सी के पीछे एक पतली लकड़ी थी, वो मशीन से बनी हुई थी, लेकिन 1700 में मशीन की कुर्सी बनाई ही नहीं जाती थी, तब हाथ से ही कुर्सियां बना करती थी। बॉविट साहब का कहना था कि ये कुर्सी 1840 से पहले बन ही नहीं सकती।
0: और बस्बी की मौत कब हुई थी?
1: 1702 में। मतलब ये कुर्सी बस्बी के मरने के 138 साल बाद बनी। ये वो कुर्सी है ही नहीं जिस पे बस्बी कभी बैठा करता था।
0: तो मतलब ये अभी तक सब झूठ था। पब ने नई कुर्सी ली, उसकी एक लंबी चौड़ी और बड़ी सी कहानी बना दी।
1: ये एक बात हो सकती है, कहानी से लोग आते थे, लोग बैठते थे और उसका पब भी बहुत चलता था।
0: लेकिन फिर वो मौतें, बिल्डर, सफाई वाली, डिलीवरी वाला, वो सब तो सच था ना?
1: वो सच थे, मौतें हुई, लेकिन कुर्सी की वजह से हुई या वैसे ही, ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया। हम जो चीज पे यकीन करते हैं वो हमारी नजर बदल देती है। जो डर के कुर्सी पर बैठा, शायद वो घबरा के गाड़ी चलाया, शायद वो ध्यान नहीं दे पाया और एक्सीडेंट हो गया। लोग फिर बोलते कि कुर्सी ने मारा।
0: और सफाई वाली, वो डिलीवरी वाला, उन्हें तो पता भी नहीं था।
1: वो एक अलग बात हुई, उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है।
0: आयुषी, तुम खुद क्या मानती हो?
1: मैं सोचती हूँ कि डर बहुत बड़ा होता है। बस भी एक बहुत बुरा आदमी था, लेकिन मरते वक्त उसने एक काम किया, उसने अपनी याद छोड़ने की कोशिश की और वो काम हो गई। 100 सालों बाद भी लोग उस कुर्सी को जानते हैं, बस भी को जानते हैं, और 300 साल बाद भी। यही तो हकीकत है ना।
0: मतलब डर ने ही श्राप को जीवित रखा है।
1: जो सच में डरता है वो घबरा के काम भी करता है, ध्यान नहीं रखता और गलती हो जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि श्राप था। डर खुद ही एक श्राप है।
0: लेकिन फिर वही सवाल आता है कि डिलीवरी वाले को तो पता भी नहीं था, वो तो नहीं डरा था ना।
1: हाँ, और यही बात मुझे भी सोचने पर मजबूर करती है। शायद कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती, और शायद उन्हें समझना जरूरी भी नहीं है। कुछ चीजें वैसे ही रहने देनी चाहिए जैसे वो है।
0: मतलब हर एक चीज से पर्दा उठाना जरूरी नहीं है।
1: हाँ,
0: मतलब वो कुर्सी तो म्यूजियम में है अब, लेकिन वो जगह, वो चौराहा जहाँ फांसी दी गई थी बसवी को, वहाँ कुछ होता है अब भी?
1: लोग रात को वहाँ से गुजरते हैं, कहते हैं कि एक साया दिखा, कोई खड़ा हुआ दिखा, कोई पास से गुजरता हुआ दिखा, और कोई कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है।
0: मैं उस चौराहे से कभी नहीं गुजरने वाली हूँ।
1: हाँ, और वो पब बसवी स्टूप इन 2012 में ही बंद हो गया। अब वहाँ एक खाना घर है, इंडियन खाना मिलता है वहाँ पे, वो भी जयपुर स्पाइस के नाम से।
0: हॉन्टेड पब में आप बिरयानी बेची जा रही है?
1: हाँ, जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन कुर्सी वहाँ नहीं है अब, कुर्सी थ्रिस्ट म्यूजियम में ही है। आज भी वो वहाँ पे लटकी हुई है, 5 हाथ ऊपर।
0: आयुषी यार, मैंने सोचा था कि ये कहानी थोड़ी सीधी होगी, डरावनी होगी, लेकिन ये तो बहुत सोचने पे मजबूर करती है।
1: यही तो अच्छी कहानियों की खासियत है, वो सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, वो अंदर तक उतर जाती हैं। ये सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं है, ये एक आदमी के गुस्से की कहानी है जो मरने के बाद भी कायम रहा। ये एक डर की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और यहाँ एक सवाल है जो हम आज भी मानते हैं, वो कितना असर करता है, कितना हमारे पे काम करता है, और कितना हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
0: और एक बात बताओ, अगर वो कुर्सी जमीन पर हो तो तुम बैठोगी?
1: पहले तुम बताओ।
0: मैं तो पहले से कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं।
1: हाँ हाँ, ठीक जवाब। तो सो आप बताओ, और ये चीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि क्या आप उस कुर्सी पर बैठते अगर वो जमीन पर होती, या फिर उसे इंडिया ले आया जाए और इंडिया के म्यूजियम में रखा जाए।
0: फिलहाल इसी सवाल के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, रात को अकेले मत जाना, और किसी की भी पुरानी कुर्सी पे बैठने से पहले 2 दफा जरूर सोचना।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कोई नहीं था, कोई नहीं था।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आज की कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर की जिसकी खूबसूरती जगमगाई सिल्वर स्क्रीन पर, जिसने बतौर गायिका भी अपनी आवाज का जादू हम सब पर बिखेरा। वो कौन है, उनकी जिंदगी कैसी रही, ये सब बताऊंगी मैं, यानी आरजे अनोखी, जो लेकर आई है आपका पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारे आज के अंक के सुपरस्टार पर बातें ढेर सारी होंगी आपसे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले उन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

दोस्तों, इस खूबसूरत आवाज की मल्लिका का नाम है सुलक्षणा प्रताप नारायण पंडित, जिन्हें हम सुलक्षणा पंडित के नाम से भी जानते हैं। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 में हुआ। सुलक्षणा पंडित दरअसल हिसार से ताल्लुक रखती हैं, जिसे अब फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये जिला हरियाणा में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक बड़े ही जाने माने शास्त्रीय गायक रहे हैं और हमारे देश के मेस्ट्रो क्लासिक सिंगर पंडित जसराज इनके अंकल हैं। इनके पारिवारिक बैकग्राउंड पर और भी बातें जारी रहेंगी आपके फेवरेट शो भूले बिसरे गीत में आरजे अनोखी के साथ, पर उससे पहले ये सॉन्ग जो अपनी बारी का वेट कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 एफएम पर शो भूले बिसरे गीत, जिसमें आज के अंक की नायिका हैं सुलक्षणा, जो एक बेहद रौनक हुस्न की मल्लिका, अदाकारा व हिंदी सिनेमा जगत की पार्श्व गायिका भी रही हैं। इनके तीन भाई हैं, मनधीर, जतिन और ललित। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही पहचाना आपने, वही जतिन ललित जो कि संगीतकार जोड़ी के रूप में बड़े मशहूर हुए। छोटी बहनें हैं माया और अभिनेत्री विजया पंडित। इनकी तीसरी बहन संध्या सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो आप सभी जान ही चुके हैं कि हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री और म्यूजिक से इनका कैसा नाता है। अब बात इनके म्यूजिक करियर की, पर उससे पहले इन्हीं पर फिल्माया गया इन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

सुलक्षणा पंडित जब मात्र 9 वर्ष की थी तो इन्होंने एज अ प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया था। इनका पहला सॉन्ग था सात समुंदर पार से गुड़ियों के संसार से, जिसमें लता मंगेशकर के साथ ये सुनाई दी थी। मूवी का नाम था तकदीर 1967 में। आइए एंजॉय करते हैं इसी गीत को।

किशोर दा और रफी साहब के साथ भी इन्होंने कई सारे कॉन्सर्ट्स में भाग लिया। दूर कराही जो 1971 में आई, इन्होंने इसमें गाया था बेकरार दिल तो गाए जा। अभी ये बतौर सिंगर ही काम कर रही थी कि 1975 में इन्हें एज एन एक्ट्रेस भी ब्रेक मिला। इसके बारे में जानेंगे इस म्यूजिकल सॉन्ग को एंजॉय करने के बाद। सॉन्ग वही है बेकरार।

दोस्तों, इनकी पहली फिल्म थी उलझन, जो कि रघुनाथ झलानी की फिल्म थी। इस मूवी में इन्हें पहला ब्रेक मिला। इसमें इनके हीरो थे संजीव कुमार। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने गाने जरूर गाए थे, लेकिन सुलक्षणा ने भी एक दो सॉन्ग्स गाया था। उन्हीं में से एक सॉन्ग के बोल हैं, आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप।

दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि सुलक्षणा जी ने दूसरी ही फिल्म संकोच जो कि आई थी 1976 में ऐसा किरदार निभाया उसमें कि इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। हाँ जी, खाली नॉमिनेटेड ही होके रह गई, लेकिन सोचने की बात है कि दूसरी फिल्म में ऐसी अदाकारी की गई इनके द्वारा कि इनका नाम फिल्म फेयर की लिस्ट तक पहुंच गया। इसमें इनके साथ एज अ हीरो थे जितेंद्र कपूर, फिर विनोद खन्ना के साथ प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी में दिखी सुलक्षणा पंडित। यानी अब तो आप समझ गए होंगे कि इनके फिल्मी सफर में रफ्तार आ गई थी। तो आइए एक और सॉन्ग का लेते हैं आनंद और फिर इनके लाइफ का क्लाइमेक्स बताती हूँ आपको। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 एफएम पर अपना पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत इस सॉन्ग के साथ।

दोस्तों, इस सॉन्ग से पहले मैंने आपको सुलक्षणा की लाइफ के क्लाइमेक्स के बारे में बताने को कहा था, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इनकी कुछ खास उपलब्धियों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुलक्षणा का करियर बहुत छोटा था, पर बहुत वर्सेटाइल था। इन्होंने लता मंगेशकर, किशोर दा, मोहम्मद रफी के साथ कई सॉन्ग्स गाए। और हाँ, ये बात भी बहुत हैरान करती है कि सुलक्षणा पंडित को कैफी आजमी और खयाम साहब के लिखे गीतों के लिए गाने पर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा अदाकारी की बात करें तो सुलक्षणा ने अनिल गोस्वामी की फिल्म खानदान में, जो कि 1979 में आई थी, जितेंद्र और बिंदिया गोस्वामी के साथ काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर वेदी और भी अन्य नायकों के साथ ये काम कर रही थी, पर संजीव कुमार के साथ इनका रोमांस काफी चर्चा में रहा। ऐसा क्यों और इनके लाइफ का क्लाइमैक्स, यानी सुलक्षणा की लाइफ का क्लाइमैक्स क्या रहा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे सुलक्षणा जी की ही आवाज में ये प्यारा सा नगमा।

इन्होंने बंगाली फिल्म में भी काम किया। इनकी आवाज पद्मिनी कोल्हापुरी, रेखा, सबाना आजमी के साथ में भी खूब चमकी। ये आवाज चली तो बड़े धूम से, पर उतनी तेज से ही धुंधली भी पड़ गई। और वो क्लाइमैक्स क्या था जिसके बारे में मैंने इतनी देर से आपसे चर्चा की थी? जी श्रोताओं, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया। 7 काम करते करते सुलक्षणा संजीव कुमार से प्यार करने लगी, पर संजीव कुमार का दिल टूट गया था जब इन्होंने हेमा मालिनी को अपना प्रस्ताव भेजा था और हेमा जी ने इन्हें मना कर दिया था। धीरे धीरे संजीव कुमार शराब में डूबते गए और हार्ट पेशेंट हो गए। अमेरिका जाकर हार्ट सर्जरी भी कराई, पर 6 नवंबर 1985 को मात्र 47 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार की मृत्यु ने सुलक्षणा पंडित को तोड़ दिया और इस तरह से ये गहरे सदमे यानी डिप्रेशन में चली गईं और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने एक उभरते हुए सितारे को कहीं अंधेरे की धुंध में खो दिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना सुलक्षणा पंडित के बारे में, जो कि एक प्लेबैक सिंगर के साथ साथ एक खूबसूरत और वर्सेटाइल एक्ट्रेस भी थी। अब अपनी आरजे अनोखी को दें अनुमति, मिलते हैं आपसे आपके पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत के अगले अंक में। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, जाते जाते अपना तोहफा कबूल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये प्यारा सा नगमा। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।